0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: 14 जुलाई 2026 के प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और नमस्कार। शुरू करते हैं हम स्थानीय खबरों के साथ। आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बस्ती किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुई है। और फ्रांस में बसे मॉरिशस के लोगों ने नए अफसरों के साथ बनाई नई पहचान लेकिन मातृभूमि से जुड़ाव आज भी कायम है। मॉरिशस में बढ़ती युवा बेरोजगारी के बीच बेहतर अवसरों की तलाश में युवा विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। इस पर हम अपने आने वाली बुलेटिनों में ज़्यादा जानकारी देंगे। और बात करें राष्ट्रीय सभा के बारे में, राष्ट्रीय सभा का सत्र सुबह 11:30 बजे शुरू हो रहा है। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जाएगा। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूटकेस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या कैसे जैसे मुद्दे शामिल होंगे। तथा मॉरिशस की संसद में आज मंगलवार के सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष फिर भड़का है। होमुज जल मार्ग को लेकर तनाव और गहरा हो गया है। इसी के चलते अमेरिका होमुज जल मार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। मौसम का हाल, आम हालत। पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और कुछ बारिश होगी। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना होगा, पर दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल विकसित होंगे और थोड़ी बारिश होगी। रात के दौरान पूर्वी और ऊंचाई वाले इलाकों में बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के जुआर उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:46 पर। इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज़ पर से आप हमें सुन पा रहे हैं। मंगलवार का दिन है, 14 तारीख 2026 का साल, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05:10 आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सुप्रीम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। आशा करते हैं जहां से भी जुड़ेंगे दिल से हमारा साथ देंगे, और आज का दिन आप सभी के लिए सकारात्मक रहे, मन भावन रहे। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते चले आज की सूची में कि अभी थोड़ी ही देर में हम मानस मोती कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये कार्यक्रम रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर वीनू अरुण सदाबहार गीतों के साथ। उसके तुरंत बाद जुड़ेंगे और बिल्कुल 6:30 हम पुनः सुनेंगे समाचार बुलेटिन। समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम, जहां पुराने गीतों के साथ आपकी सुबह को और भी सुरीली बनाने का हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। तो आइए आज के इस दिन की शुरुआत हम करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। श्रोताओं, जो था अच्छा था, जो है वो बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन होगा, इसीलिए सदा सकारात्मक रहें। आइए इसी के साथ डॉक्टर वीनू अरुण का स्वागत करते हैं मानस मोती कार्यक्रम में।
1: सुनिए मानस मोती रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मोती कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, आज कुछ ऐसी चौपाइयाँ मैं रामचरितमानस से चुनकर लाई हूँ जिनमें बहुत ही गहरी नीति शिक्षा दी गई है। वे चौपाइयाँ इस प्रकार हैं, नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तुलसीदास जी यहाँ मनुष्य के स्वभाव का एक महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं कि सज्जन का झुकना विनम्रता होता है, लेकिन दुष्ट का झुकना अक्सर किसी छल या आक्रमण की तैयारी होता है। और इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मीठी वाणी भी हमेशा शुभ नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे कोई गहरा स्वार्थ छिपा

हो सकता है या होता है। तुलसीदास जी अपनी बात की पुष्टि के लिए चार उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण वे अंकुश का देते हैं। अंकुश क्या है? हाथी को नियंत्रित करने के लिए जो महावत होता है, यानी जो हाथी पर बैठ करके हाथी की सवारी करता है, उसके हाथ में एक अंकुश होता है। उसी से वो हाथी को नियंत्रित करता है, उससे मार करके या उसको इधर उधर करके वो उसको अपने नियंत्रण में लाता है। तो जब महावत हाथी को नियंत्रित करता है तो अंकुश को झुका कर ही हाथी के शरीर में वो चुभाता है। अर्थात अंकुश का झुकना करुणा नहीं बल्कि चोट की तैयारी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुष्ट व्यक्ति भी पहले नम्रता दिखाता है और फिर अवसर देख करके चोट करता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति यदि बड़ा विनम्र बन जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो स्वभाव से ही विनम्र है, स्वभाव से ही मृदु है, स्वभाव से ही कोमल है। नहीं, बल्कि उसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, वो किसी बहुत बड़े दुर्घटना की तैयारी है, किसी बहुत बड़े नुकसान की तैयारी है। दूसरा उदाहरण वे धनुष का देते हैं। धनुष को जितना अधिक झुकाया जाता है उतना ही अधिक वेग से तीर निकलता है। इसका झुकना वास्तव में आक्रमण की तैयारी है। और इसका संकेत, इसके माध्यम से तुलसीदास जी क्या देना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग बहुत विनम्रता दिखाते हैं लेकिन उनका उद्देश्य केवल अवसर प्राप्त करना होता है। तीसरा उदाहरण वे सर्प का दे रहे हैं। सांप जब कुंडली मारकर झुकता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब वो विश्राम कर रहा है, अब उसने जो आक्रमण की तैयारी है उसे छोड़ दिया है, वो तो अब कुंडली मारकर झुक करके बैठ गया है। नहीं, बल्कि उल्टे वो क्या करता है, प्रहार करने के लिए शक्ति एकत्र कर रहा होता है ताकि जो उसका शत्रु है वो समझे कि अब तो ये बिल्कुल शांत हो गया है, अब इसकी ओर से निश्चिंत हो जाओ। और जब दूसरा निश्चिंत होता है तो वो सर्प जो है, जो कुंडली मारकर बैठा हुआ है, वो तुरंत जाकर उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो ये प्रकृति के कितने सुंदर उदाहरण हैं जो तुलसीदास जी दे करके हमें अपनी बात समझा रहे हैं। इसी प्रकार वे एक उदाहरण दे रहे हैं बिल्ली का। बिल्ली जब चुपचाप झुक कर बैठती है तो वह शिकार पर झपटने की तैयारी कर रही होती है। उस समय वो बड़ी शांत दिखाई देती है लेकिन अगले ही क्षण हमला कर देती है। तो ये दुष्ट व्यक्ति की रणनीति का प्रतीक है। दुष्ट व्यक्ति भी इसी प्रकार अवसर देख करके झपट्टा मारता है, दूसरे पर आक्रमण करता है, दूसरे का अहित करता है। जब दूसरे को लगे कि ये व्यक्ति तो मेरा जो शत्रु है वो शांत हो गया है, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो वो जो दुष्ट व्यक्ति है उस समय आक्रमण करता है। इस प्रकार तुलसीदास जी इन चार उदाहरणों के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई दुष्ट, जब कोई नीच व्यक्ति शांत दिखाई दे, विनम्र दिखाई दे, तो उसकी विनम्रता को, उसकी सहिष्णुता या उसके स्वभाव की मृदुता नहीं समझना चाहिए बल्कि उससे और अधिक सावधान हो जाना चाहिए। इसी प्रकार जो दूसरी चौपाइयाँ हैं उनमें कहा जा रहा है कि भयदायक खल के प्रिय बानी जीमी अकाल के कुसुम भवानी। शिव जी ये पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। क्यों दुष्ट व्यक्ति की मीठी वाणी भी भय उत्पन्न करती है? क्योंकि वह स्वाभाविक नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति तो कड़वा बोलता है, दुष्ट व्यक्ति तो क्रोध में बोलता है, दुष्ट व्यक्ति तो दूसरों का दिल दुखाने के लिए बोलता है। और यदि वही दुष्ट व्यक्ति मीठी मीठी वाणी बोलने लगे तो उससे तुरंत व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, भयभीत हो जाना चाहिए
कि जरूर इसके मन में कोई बुरी बात है, तभी इतना मीठा बोल रहा है। और इस

0: बात को उन्होंने एक उदाहरण से समझाया है कि जैसे बिना मौसम का फूल, यदि किसी पेड़ पर बिना ऋतु के ही फूल आ जाएं तो किसान चिंतित हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋतुएं बनी हैं, ऋतुएं मतलब जो मौसम बने हैं, जैसे गर्मी है, बरसात है, वसंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, इन सारी ऋतुओं की अपनी विशेषता होती है और इन ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, अलग अलग प्रकार की खेती लहलहाती है। तो हर एक फूल, हर एक पत्ते, हर एक फल, हर एक वनस्पति का हमारे ऋतुओं से बहुत गहरा संबंध है और ये निर्धारित है कि किस ऋतु में कौन सा फूल खिलेगा, कौन सा फल पक जाएगा, कौन सा फल तैयार हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि किसी पेड़ पर बिना मौसम के ही फूल आ जाएं, तो किसान परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि मौसम का संतुलन बिगड़ गया है और आगे कोई विपत्ति आ सकती है। इसी प्रकार दुष्ट की मधुर वाणी भी स्वाभाविक नहीं होती और इसे हम इतिहास के कुछ उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। महाभारत में शकुनी हमेशा मीठी वाणी बोलता था और स्वयं को पांडवों का भी शुभचिंतक दिखाता था, लेकिन उसी ने धीरे धीरे कौरवों के मन में विष भरकर पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बना दिया। ये दुष्ट की मीठी वाणी का एक उदाहरण है। इसी प्रकार हम रावण का उदाहरण ले सकते हैं कि लंका में रावण ने कई बार छलपूर्ण नीति अपनाई। सीता जी को वह कभी मीठे शब्दों से समझाने का प्रयास करता था और कभी प्रताड़ना देता था, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अपनी इच्छा पूरी करना था, इसलिए उसकी वाणी जब मधुर थी तब भी वह भयावह थी। तो इस प्रकार तुलसीदास जी इन उदाहरणों के माध्यम से हम सबको एक संदेश दे रहे हैं कि हमें दुष्ट व्यक्ति की विनम्रता से और दुष्ट व्यक्ति के मीठे मीठे शब्दों से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई खतरा छुपा होता है, कहीं ना कहीं कोई हमारा अहित छुपा होता है। और श्रोताओं, आज इन्हीं चौपाइयों के द्वारा इस कार्यक्रम को मैं संपन्न करती हूँ। आप सबके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और शुभ दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

श्रोताओं, आज के समय में जो सेहतमंद है वही सबसे बड़ा धनी है, और अच्छी सेहत के लिए सबसे अच्छी दवा है आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट। तो बस जीवन में हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनों के साथ बस आप दूसरों को भी सेहतमंद रखने का ये प्रयास करते रहे, और बिल्कुल हंसी मजाक के साथ बिताया हुआ हर पल कितना यादगार हो जाता है। तो चलिए इस अनमोल जीवन को इन अनमोल उपहारों के साथ सजाते हैं, और आपके लिए ये प्यारा सा अगला गाना फिल्म जिंदगी से लिया हुआ मन्ना डे साहब की आवाज में।

दोस्तों कहते हैं ना, जिद चाहे जितनी हो पर प्यार वो जादू है जो बड़े से बड़ी अकड़ को झुका ही देता है। तो जीवन में धैर्य रखते हुए, प्यार को मन में बसाए हुए, आगे बढ़ने का हौसला मन में बढ़ाते हुए चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और बस जुड़ेंगे अभी थोड़ी ही देर में समाचारों के साथ। तब तक के लिए ये प्यारा सा गीत आपके नाम करते हैं और ये जो गाना है 1964 की मूवी जिद्दी का गीत है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत, यही गाना हमें जोड़ेगा सुबह के 6:30 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर। तो हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी समाचारों के बाद। कहीं मत जाइएगा, बस यूं ही हमारे हम सफर बने रहिएगा। आते हैं समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखने के लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। मंगलवार 14 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फीफा विश्व कप सेमीफाइनल के रोमांच ने पोर्टरीज की सड़कों पर उत्साह, जश्न और भावनाओं का माहौल बना दिया है। फ्रांस के राष्ट्र दिवस के अवसर पर मॉरिशस और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक एवं बहुआयामी संबंधों को किया जा रहा है याद। फ्रांस में बसे मॉरिशस के लोगों ने नए अवसरों के साथ बनाई नई पहचान, लेकिन मातृभूमि से जुड़ाव आज भी कायम है। मॉरिशस में बढ़ती युवा बेरोजगारी के बीच बेहतर अवसरों की तलाश में युवा विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। राष्ट्रीय सभा में आज प्रधानमंत्री के प्रश्नकाल, पीएमक्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार, नशा, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रसभा में ही जल सुरक्षा, मेट्रो एक्सप्रेस के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं और खिलाड़ियों के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा जैसे मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत देखभाल और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष फिर भड़का, होमोज जलमार्ग को लेकर तनाव और गहरा। अमेरिका होमोज जलमार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले के मौके पर उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। पोर्ट लुइस की सड़कों पर मॉरिशस के समर्थकों और पर्यटकों ने इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का पूरे जुनून के साथ आनंद लिया। खुशी, निराशा और जीत को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग रहीं। कुछ लोगों ने स्पेन की जीत का स्वागत किया, जबकि कुछ अन्य चाहते थे कि फ्रांस फाइनल में अपनी जगह बनाए। हमारी पत्रकार निर्माण नारायण रेड्डी राजधानी की सड़कों पर लोगों से मिली और इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर उनकी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं जानी। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
2: I don't know exactly, but I think that the France will win. The big emotions for me.
3: Bonjour la France. Comment allez-vous dans ce mois?
4: Mais la France, 2-1. Ben là, comme nous ici en vacances, nous sommes regardés hier à l'hôtel là-bas. Enfin, je me profite pour faire un petit coucou à l'hôtel Coin de Mire.
5: Sûr. DN peut-être? Un petit chose pour la France aussi, mais l'Espagne de préférence. Aïe, super. Un joli moment de famille. Nous passons un bon moment. Toujours, belle qui y était, un petit thé, café, un petit gâteau, entier la famille.
6: La France est une meilleure équipe, mais c'est bon. L'Espagne ne piège pas. La France, il faut jouer. Il y a des prolongations, il y a l'extra time, il y a des pénalties. Mais je crois que la France va sur la finale.
7: Non, tu étais de mon équipe 50-50. Je ne sais pas si c'est un monde qui est là. Non, moi, je suis le meilleur, je suis le football là. Je suis content de l'Espagne.

0: आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बास्टिल किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रही है। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट जॉन फ्रांसवा लेकनी की तैयार किया हुआ और विवरण यात्रा मिश्रा का है।
1: पूर्व में इल दे फ्रांस के नाम से जाने जाने वाला मॉरिशस साल 1715 से 1810 तक एक फ्रांसीसी उपनिवेश रहा। इस अवधि ने मॉरिशस की संस्कृति, कानूनी व्यवस्था, भाषा पर आज तक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इसीलिए जब मॉरिशस ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो फ्रांस के साथ उसके राजनयिक संबंध बहुत जल्द ही स्थापित हो गए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कई समझौतों और पहलों के माध्यम से संचालित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र शामिल हैं। पिछले साल फ्रांस मॉरिशस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक और पांचवा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। इसके अलावा 200 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां मॉरिशस में स्थापित हैं। वहीं फ्रांस मॉरिशस में आने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत भी है, जहां कुल पर्यटन आगमन में उसका हिस्सा लगभग 25% का है। भाषा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है। हालांकि फ्रेंच मॉरिशस की औपचारिक भाषा नहीं है, फिर भी इसका व्यापक उपयोग दैनिक जीवन, स्कूलों और विशेष रूप से मीडिया में किया जाता है। मॉरिशस की भौगोलिक निकटता फ्रांस के अधीन रियूनियन टापू से होने के कारण हिंद महासागर में रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग विकसित हुआ है। इस क्षेत्र में नवीनतम सहयोग समझौते पर साल 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। लोगों की आवाजाही के मामले में मॉरिशस में लगभग 11,000 फ्रांसीसी नागरिक वाणिज्य दूतावास के रजिस्टर में पंजीकृत हैं। वही मॉरिशस के नागरिकों को शेंगेन क्षेत्र में अल्पकालिक यात्रा के लिए वीजा से छूट प्राप्त होती है। हालांकि दोनों देशों के संबंधों में एक मुद्दा अब भी लंबित है, तोमले टापू। लंबे समय तक दोनों देशों ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया और साल 2010 में इसके संयुक्त प्रबंधन को लेकर एक समझौता तय हुआ, लेकिन इस समझौते का अनुमोदन अब भी प्रतीक्षित है।
0: राष्ट्रीय दिवस के उत्सवों से आगे बढ़कर फ्रांस आज भी अनेक मॉरिशनों के लिए अवसरों की धरती बना हुआ है। पढ़ाई, करियर और विवाह के बाद फ्रांस का रुख करने वाले कई मॉरिशन आज वहां अपनी नई पहचान और सफल जीवन बना चुके हैं। इसके बावजूद उनका अपनी मातृभूमि मॉरिशस से गहरा भावनात्मक जुड़ाव आज भी बरकरार है। उनकी जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि फ्रांस ने उन्हें रेस्टोरेंट व्यवसाय, संस्कृति, मीडिया और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने और नई संभावनाओं को साकार करने का अवसर दिया है। आज मंगलवार सुबह 11:30 राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही फिर शुरू होगी। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जाएगा। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूटकेस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या जैसे शामिल है। राजमिला स्तमनी, यशा मिश्रा।
1: सांसद अरविंद बाबाजी एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच से जुड़े सवाल उठाकर सत्र की शुरुआत करेंगे। विपक्ष सांसद चेतन बाबूलाल प्लास्टिक बोतलों पर लगाए गए 2 रुपए के उत्पाद शुल्क को लेकर सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या इससे प्राप्त राशि पर्यावरण कोष यानी एनवायरनमेंट फंड में जमा की जाएगी और क्या स्थानीय निर्माताओं को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग या रिसाइकलिंग की ओर बढ़ने में सहायता

0: देने के लिए कोई योजना बनाई गई है। रविराज बिचुक पिछले 5 वर्षों में मॉरिशस और विदेशों में सामने आए फर्जी पासपोर्ट मामले का विवरण मांगते हुए इस मुद्दे को उठाएंगे। गुमना दोहियाओं प्रधानमंत्री से ऑनलाइन नस्लीय घृणा फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सवाल करेंगी, साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने पर भी चर्चा होगी। अन्य मुद्दों में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध, तयहोश में जब्त किए गए 114 मिलियन रुपए मामले की जांच, भूमिगत मार्गों की सुरक्षा, जेल प्रहरी बल की संख्या, बैंकिंग डेटा की सुरक्षा और पूर्व सांसदों को आवंटित सरकारी वाहनों का विषय भी शामिल हैं।
1: मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा में आज मंगलवार के सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे, जिनमें जल आपूर्ति की सुरक्षा, अवैध पानी कनेक्शन, SSO अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो एक्सप्रेस के संभावित विस्तार, सामी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना जैसे विषय शामिल हैं। जेनी यलापा, रजनी बेकर।
2: आज जल क्षेत्र से जुड़े कई सवालों पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। सांसद जोआना ब्यांजे, ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन से सरकार की जल सुरक्षा रणनीति के बारे में जानकारी मांगेंगे। वे ये जानना चाहेंगे कि क्या समुद्री जल के डिसैलिनाइजेशन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर जल वितरण नेटवर्क में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसी क्षेत्र से जुड़े एक अन्य सवाल में मंत्री से जनवरी 2025 से अब तक सामने आए अवैध पानी कनेक्शनों की जानकारी मांगी जाएंगी। सांसद खुशा लुबिन अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई और वसूले गए जुर्माने से प्राप्त आय का विवरण जानना चाहेंगे। जल भंडारों की स्थिति भी चर्चा में रहेगी। सांसद अनाबेल सभावादी जलाशयों में वर्तमान जल स्तर, आने वाले महीनों में मांग पूरी करने की क्षमता और निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर स्पष्टीकरण मांगेंगी। परिवहन क्षेत्र में सांसद मनोज सरसागर रामगोलान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और देश के दक्षिणी हिस्से तक मेट्रो एक्सप्रेस के संभावित विस्तार से जुड़ा सवाल उठाएंगे। भूमि परिवहन मंत्री से इस परियोजना की स्थिति पर जानकारी देने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री से सामूहिक आपातकालीन सेवा के संचालन, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या, उनकी कार्यशैली स्थिति, जनवरी 2025 से हुए रखरखाव खर्च और इमरजेंसी कॉल पर औसत प्रतिक्रिया समय की जानकारी मांगी जाएंगी। खेल के क्षेत्र भी संसद के एजेंडा में शामिल रहेगा। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए मुफ्त चिकित्सा कवरेज सहित बीमा योजना के कार्यान्वयन पर सवाल उठाया जाएगा। युवा एवं खेल मंत्री देवेन्द्र नागालिंगम से इस योजना की प्रगति के बारे में जानकारी देने की उम्मीद है। इन सभी मुद्दों के चलते मंगलवार का संसदीय सत्र महत्वपूर्ण बहसों और चर्चाओं का केंद्र रहने वाला है।
1: कुछ बच्चों में दिखाई देने वाले व्यवहार संबंधी विकारों के पीछे अक्सर ऐसे कारण होते हैं जिन्हें पहचानना और उचित तरीके से संभालना आवश्यक होता है। सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए एक विशेष केंद्र स्थापित करने की योजना के बीच क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों के मूल्यांकन पर आधारित एक उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। संचार में कठिनाई, संवेदात्मक समस्याएं या विकास से जुड़े अन्य कारण कुछ बच्चों में ऐसे व्यवहार के पीछे हो सकती है। बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के साथ काम करने वाली स्पीच थेरापिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट सत्यावानी वियाबदन ने मौजूदा संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने और किसी भी प्रकार के अलगाव या भेदभाव से बचने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। Anjali Poulchan qui report.
3: Il y a différentes raisons. Par exemple, un retard de langage grave exhibe des problèmes de comportement, des problèmes de la lecture.
1: कई कारण हो सकते हैं, जैसे बोलने में देरी से व्यवहारिक संकेत देख सकते हैं, पढ़ने में मुश्किल हो सकती है तथा इसके साथ भाषाओं को समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। सेंसोरियल मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। संस्थान को पूर्ण रूप से इसके

0: लिए तैयार होना चाहिए जिससे ऐसे प्रभावित बच्चों का इलाज हो सके। यहाँ उनका मूल्यांकन करना भी जरूरी है जिससे पता लगाया जा सके कि किन कारणों से ऐसे व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई कारण हो सकते हैं। इसके बाद सकारात्मक अनुशासन स्थापित करना चाहिए जिससे पेशेवर वैज्ञानिक व सबूतों के आधार पर हस्तक्षेप कर पाएं और इन बच्चों की सहायता कर पाएंगे। बहुत सतर्क भी होना चाहिए कि ये संस्थान किन उपकरणों से लैस हो जिससे बच्चों को वर्गीकृत व सेग्रीगेट नहीं बल्कि सम्मिलित किया जा सके।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार होर्मुज जलमार्ग में ईरान द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने और कुछ जहाज़ों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अमेरिका ने हवाई हमलों और समुद्री ड्रोन अभियानों की नई श्रृंखला शुरू की है। वहीं दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने कल सोमवार को होर्मुज जलमार्ग में दो तेल टैंकरों पर हुए हमले के लिए ईरान पर बेहद दुस्साहसिक हमला करने का आरोप लगाया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका होर्मुज जलमार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच लगातार तीसरी रात भी हमले किए गए। बते मौसम के हाल की ओर। आम हालत, पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और थोड़ी वर्षा होगी। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा सिवाय पश्चिमी क्षेत्रों में बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। रात के दौरान पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:46 पर। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार और फ्रेंच डेस्क का सहयोग मिला है जिन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी कादर हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर। विवेकानंदा स्ट्रीट लाफ्लोरा में 52 साल के 52 years old के श्री अजीत सिंह रंगलाल जिन्हें मुन्नू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी मां रजनी रंगलाल के घर लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ट्रिया 3 PM। सिरतन रोड बॉशेरी में 24 साल के 24 years old के श्री दूषण रानसू जिन्हें बोन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके पिता मनोज रामदास के घर बौशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ट्री एट 4 PM। न्यू रोड रोशनो में 70 साल की 70 years old की श्रीमती इंदिरा प्रयाग जिन्हें पोम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके भाई आनंद प्रयाग के घर रोशनों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 1 PM। नंबर 61 टेन क्वेन स्ट्रीट पोर्टविस में 82 साल के 82 years old की श्री उपेंद्र नार बीतल

जिन्हें उपेन के नाम से मृगजाता जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर पोर्टविस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालेन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 1 PM। जफाजुल्लेन पृथ्वी वर्ष सैंप में की 86 साल की श्रीमती ज्ञानती लाला पैदाशी नाम रामधोनी और जिन्हें नानी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी बेटी संध्या मंगर की घर पृथ्वी वर्ष सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों सौ सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 10 AM। मोंजेलाओ रोड रॉसबेल में 73 साल के 73 years old की श्री नित्यानंद बिहारी जिन्हें सत्यम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागेजानी की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM। रॉय रोड आमोरी में 71 साल के 71 years old के जनाब आमिर अमजा दाऊ जिन्हें आज़ाद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10:30 इनके मकान आमोगी से उठाकर दफनाने के लिए वहीं का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। लिटो रोड रॉसबेल में 56 साल के 56 years old के श्री कविराज सिंह उजागिया जिन्हें रवि के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी लाला शर्मिला राय गोबिंद उजागिया के घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिजानी रॉसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मकाउलेन थ्वाबुचिक यूनियनवेल में 81 साल की 81 years old की श्रीमती सुबामा मुतुसामी पैदाश नाम सावरी और जिन्हें सिंधा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 उनके घर थ्वाबुचिक यूनियनवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाबुचिक की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। इसकी रोड पाई में 72 साल की 72 years old की श्रीमती देवंती अकू पैदाशाम लुफा जिन्हें मदम गौजा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 उनकी बेटी महादेव अकू के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ऋषि की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM। ये शुभ समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। नंबर 14 नाथ बिल्डिंग बोबासा में 80 साल की 80 years old की श्रीमती कमला देवी चरितर पैदाश्रम रामदीन और जिन्हें सकुन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 लाशा पेलाओ दौतिलियन स्वयं बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। सीते उदेसी नंबर 22 पीतो में 58 साल के 58 years old की श्री सनासी रासी जिन्हें रामैन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 उनकी बेटी पल्लवी एस्मियत के घर पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्पेरांस पीतों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। पेटी कॉन ग्रांगोब में 55 साल की 55 years old की श्रीमती सीता चतुरी जिन्हें सीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के घर ग्रांगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। एपास उजिया बॉशेरी में 73 साल की 73 years old की फरीदा उजिया पैदाश नाम गुलाम हुसैन और जिन्हें फरीदा के नाम से ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा कल रात उनके शोहर फिरोज उजिया के मकान बॉशरी से उठाकर गौबा का कब्रस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल लॉस्ट नाइट एट 10 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की

0: सूचनाएं।
1: मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन गर्व के साथ सूचित करती है कि मॉरिशस को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC में 111वां सदस्य मनोनीत किया गया है।

0: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रांस और स्पेन में से एक टीम आज रात वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जाएगी। पहला सेमीफाइनल आज। यूरोप के दो दिग्गज, दो हैवीवेट्स आमने सामने दला स्टेडियम में। ये एक वर्ल्ड क्लब क्लासिक से कम नहीं। फ्रांस की टीम में टॉप स्कोरर गोल्डन बूट चैलेंजर किलियन एम्बापे हैं, साथ में उस्मान देम्बेले, माइकल ओलिजे, वाकोला दुए और चर्की भी है। जानलेवा अटैकिंग लाइनअप फ्रांस में। यूरो 2024 में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराया था सेमीफाइनल में। स्पेन की टीम के बारे में कहा जा रहा है कि भले ही सेमीफाइनल में है पर द बेस्ट फुटबॉल इज येट टू कम, मतलब अभी तक लाहौरा अपने बेहतरीन खेल के करीब है। स्टार खिलाड़ी लामिन यमाल अभी तक अपना खास कमाल नहीं दिखा पाया है। कल वो 19 साल का हो जाएगा। अभी तक केवल 1 गोल स्कोर किया है पर 4 गोल स्कोर करने वाला मिकेल ओयोजाबाल फिर सब्स्टिट्यूट मिकेल मोरिनो भी है। फ्रांस के लिए 8th वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बैक टू बैक तीसरा। स्पेन की टीम 36 मैचों में अनडिफीटेड अपराजित है। इस वर्ल्ड कप में केवल 1 गोल कंसीड किया है। स्पेन वर्सेस फ्रांस क्लासिक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आज रात 11 बजे लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर भी। ट्रांसफर न्यूज। मैनचेस्टर यूनाइटेड

ने आंद्रे सांतोस को साइन कर लिया है। ब्राजील का इंटरनेशनल खिलाड़ी ओल्ड ट्रैफर्ड में आ गया, साथ में यूनाइटेड एस्टन विला से चेलेमांस के पीछे है। क्रिकेट, भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक जीत। लॉर्ड्स में खेले गए पहले वुमेन्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। स्नेह राणा 4 विकेट ले पाई। और जैसे कल हमने आप लोगों को बताया, मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सदस्य बन गया है। स्कॉटलैंड में मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन के प्रेसिडेंट सलीम भट्ट हैं वहां पर, और इस ऐतिहासिक कदम पर उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की। मॉरिशस के लिए क्रिकेट के विकास में एक नया पन्ना खोला गया। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 7 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर हम ये नजर डालते चलें। मोब्लॉ शामुनी के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 15 जुलाई को, जी हाँ, कल बुधवार 15 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। साथ ही साथ रियोंबेल, सूरीनाम, मौसलमदनपत और सॉलिस अस्यो मेयर रियोंबेल के निवासियों को भी सूचित किया जाता है कि गुरुवार 16 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति बिल्कुल जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए इसी के साथ आगे का कार्यक्रम दोबारा जारी रखते हैं।
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

0: सुबह का निजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम पुनः तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है और इसी के साथ रत्ना पुनः आप सभी की सेवा में उपस्थित हो चुकी है। आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत ही बढ़िया बीतेगा और आज का ये सफ़र एक बार फिर हम सजा रहे हैं कुछ पुराने हसीन गीतों के साथ, तो ज़रूर साथ दीजिएगा हमारा। बिल्कुल, सुबह का नजराना कार्यक्रम की शुरुआत होती है चिंतन के साथ और आज का ये चिंतन प्रस्तुत किया जा रहा है डॉक्टर लक्ष्मी दमन जमन द्वारा। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन प्रिय होता है, परंतु महान पुरुष को अपनी इज्जत जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान और प्रिय होती है।

सुबह का नजराना 7:07 हो चुके हैं और मंगलवार की सुबह है। बिल्कुल तरोताज़ा होकर स्फूर्ति के साथ जुड़ते हैं और ठंड के इस मौसम में लाजवाब गीतों के साथ सजा हुआ ये सफ़र। जी हाँ, शुरुआत हमने की एक बहुत ही मज़ेदार गीत के साथ। ये था अरब का सौदागर फिल्म से लिया हुआ गाना, 1956 के दौर का ये गीत, जिसमें संगीत था हेमंत मुखर्जी साहब का, आवाज़ भी उन्हीं की सजाई हुई गीतों के साथ थी, और बिल्कुल प्रदीप कुमार और स्मृति बिस्वास और साथ नजर आई थी शशिकला इस मूवी में। तो चलिए झलकियों के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज दिन भर में कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं रेडियो मॉरिशस पर आपके लिए। जी हाँ, इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखेंगे और 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ। 8:15 आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जो बस अभी जन्मदिन मना रही हैं अपना, और साथ ही साथ 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम में किरण जानकी का साथ होगा। एक भोजपुरी गीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 9 बजे जुड़ेंगे समाचारों के साथ। समाचारों के बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा, जहां इस कार्यक्रम में आज की चर्चा कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी सुमिता सरकार।

और अभिषेक, इस कार्यक्रम के आज की टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा इंटरनेशनल डे ऑफ होप। और आज के हमारे मेहमान होंगे श्रीमान अरुण जी, जो अभ्यास स्कूल ऑफ योगा के सदस्य हैं। तो चलिए, आशावादी रहने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर कार्यक्रम निर्धारित रहेगा 9 बजे से 10 बजे के बीच। और ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा MBC के तीसरे चैनल पर। इसी कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। फिलहाल 10 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 10 बजे के समाचारों के बाद मैं फिर आपका साथ दूंगी भक्ति धारा कार्यक्रम में। और भक्ति धारा कार्यक्रम के साथ हम बढ़ेंगे आगे, और इसी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। और जी हाँ, इसके तुरंत बाद यानी 11 बजे के समाचारों के बाद आपका मनोरंजन किया जाएगा विविध भाषाओं के कार्यक्रमों के साथ, जिसमें पहल होगी उर्दू कार्यक्रम के साथ। शम्मी फरोजा ये कार्यक्रम लेकर आएंगी, सैयदा सुबाई। ठीक 11 बजे के समाचारों के बाद 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सौंदर्य लहरी जो होगा 12 बजे वर्षा की प्रस्तुति में। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया लेकर आएंगे मराठी गीतों का कार्यक्रम। और ठीक 1 बजे मगलीर मत्तुम ये तमिल भाषा का कार्यक्रम चलेगा RSC की प्रस्तुति में। 1:45 बजे अमिता की प्रस्तुति में होगा रंगारंग कार्यक्रम जो होगा गुजराती भाषा में। 2:00 बजे डेविड लेकर आएंगे मैंडरीन का कार्यक्रम। 2:30 बजे आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसे प्रस्तुत करेंगे रोशनी। 4 बजे तक यानी शाम के 4 बजे तक ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके तुरंत बाद कलाईवानी आपका साथ देंगी तमिल भाषा के कार्यक्रम में। 7:00 बजे भूले बिसरे गीत उषा कौर की प्रस्तुति में। शाम के 6 बजे समाचार बुलेटिन के साथ हम जुड़ेंगे। समाचारों में होगी देश विदेश की खबरें और साथ ही साथ कुछ ऐसी विविध जानकारियां। और साथ ही साथ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे 6:30 बजे के समाचारों के बाद, 6 बजे के समाचारों के बाद 6:30 बजे आप सुन पाएंगे मैंडरीन का कार्यक्रम हांगकांग की प्रस्तुति में। 7 बजे युवरासन लेकर आएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में होगा तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 बजे पर श्री श्रामा की प्रस्तुति में गीत गंगा मराठी गीतों का कार्यक्रम चलाया जाएगा। 8:10 बजे पर भक्ति में यात्रा भजले प्रभु का नाम दिविना की प्रस्तुति में। 8:40 बजे पर महफिल शब निसार अख्तर की प्रस्तुति में। 9:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसे सजाया जाएगा प्रताप सिंह द्वारा। और 11:00 बजे से लेकर 12:00 बजे के बीच सुनहरे पल का कार्यक्रम होगा नीतूषा की प्रस्तुति में। 12:00 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ओवरनाइट प्लेलिस्ट सजाई जाएगी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। तो ये थी सूची हमारे रेडियो कार्यक्रमों की। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं पुराने गीतों के इस सफर में। भाई, जब तक हमारे भीतर प्यार है, हमें सारी दुनिया बहुत ही प्यारी नज़र आती है। सच्ची बात है या नहीं? और बिल्कुल प्यार को मन में बसाए हुए चलिए चलते हैं इस सफ़र पर और एक नई दुनिया बसाते हैं। फिल्म शेरू का ये गीत।

0: भाई जब मन में प्यार होता है ना तो जोश और उमंग का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो बस प्यार बसाए हुए जिंदगी के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। और अगर तनाव बढ़ता जाए, जी हाँ, स्ट्रेस, आज का जीवन जो है बहुत ज्यादा तनाव से भरा है, जब तनाव बढ़ता जाए तो सर भारी हो जाता है और हर कोई, पर अगर कोई हमारी चंपी कर दे, तेल मालिश कर दे, तो इससे बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है। सही कहा ना,
1: तेल मालिश चंपी।

कहते हैं ना, दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों का होना जरूरी नहीं है, बस वो जो खास होते हैं ना, एक या दो लोग, वही जिंदगी को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। और इसी के लिए कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को अपनी फेवरेट की लिस्ट में शामिल करें। वैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में लोग तो बस फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाई, दोस्ती ऐसी नहीं होती है, दोस्ती कांच के टुकड़ों जैसी नहीं होती है, दोस्ती जो होती है वो हीरे के समान होती है, बहुत ही बेशकीमती। चलिए इसी के साथ आपको पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ठंड का मौसम है, और ऐसे ठंड के मौसम में भाई ऐसा गाना तो चाहिए ही चाहिए। फिल्म है बनफूल, लता जी की प्यारी सी आवाज़।

रहा है और बस ऐसी ही तरोताजगी के साथ इस सुबह का हम स्वागत करते हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम के साथ। और इस वक्त 7:34 ठंड है, तो लाजवाब गीतों के साथ भाई जबान भी यहाँ वहाँ हो रही है, पर चलिए दिल से आप साथ निभा रहे हैं, इससे बढ़िया इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए लेते हैं एक और मज़ेदार सा गीत और उसके बाद आते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट को लेकर जो है छोटी सी बात। और ये गाना जो है फिल्म पतीता का लिया हुआ गीत है तलत महमूद की आवाज़ में।

भाई ठंड के मौसम में मेरी एक राय है, अगर दोस्तों का साथ हो तो सबसे बढ़िया चाय है, और चाय के साथ हर रिश्ता ताजगी भरा लगता है।

छुपी हुई होती है, समझ में जिसे आ जाता है बस उसका जीवन संवर जाता है। दोस्तों, आज के जीवन में हर कोई सुख की खोज में लगा हुआ है, दूर दूर तक चला जाता है। एक इंसान हमेशा सुख की तलाश में रहता है। वो सोचता है कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, लोगों की तारीफ, दौलत, शोहरत उसे खुश कर देगी और इसी तलाश में वो दिन रात भागता रहता है, लेकिन मन को कभी शांति नहीं मिलती। एक दिन काम के दबाव और उलझनों से थक कर वो शहर से दूर एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां ना कोई शोर था, ना कोई भागदौड़ थी, बस शांति और सुकून था। वहां पर एक साधु जी ध्यान में बैठे हुए थे और उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, बाबा जी मुझे बताइए सच्चा सुख कहाँ मिलता है? साधु ने कहा, साधु ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन तुमने बाहर ढूंढना बंद कर दिया उसी दिन सुख तुम्हें भीतर मिलेगा। उन्होंने उसे कुछ देर शांति से बैठने को कहा। पहली बार तो उस व्यक्ति के मन में बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगी, बिना किसी चाह, बिना किसी शिकायत के। उस पल उसे ऐसा लगा मानो बहुत दिनों का ये जो मन पर भारी एक बोझ था वो शायद कहीं उतर गया। बस वो समझ गया कि सुख कोई वस्तु नहीं है जो पाई जा सके, सुख तो वो शांति है जो मन को, मन के शांत होने पर ही अपने आप प्रकट होती है। और एक बार अगर आपको इस शांति की अनुभूति हो गई ना, उस दिन से उसने वही कहते ना कि जीवन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जिंदगी में अगर मन में शांति चाहते हैं तो जिंदगी की रफ्तार को कम कीजिए, अपने मन की रफ्तार को कम कीजिए। तब जाकर हमें वो शांति का अनुभव होता है। जिंदगी की भागदौड़ में हम सभी की चिंता करते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, नाम, दौलत, शोहरत, रुतबा, और इसी के पीछे, इसी के चक्कर में हम वो जो मन की शांति है, वो जो मन की खुशी है, वो खो देते हैं। और फिर बस जिंदगी के अंत तक जब हम पहुंचते हैं तब हमें लगता है कि इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी मन खुश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके जीवन की जो रफ्तार है वो इतनी ज्यादा तेज है कि आप उस सुख का आनंद ही नहीं ले पा रहे हो। जिंदगी के हर एक छोटे पल की खुशी का आनंद लेने के लिए कई बार हमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ब्रेक लेने से या वो मन को रफ्तार कम कर देने से वो सुख, वो शांति की अनुभूति अवश्य सभी को होती है। चलिए, देर से समझ में आती हैं कुछ जिंदगी की बातें, पर जागें तब से सवेरा। और इसी के साथ एक ऐसा प्यारा सा गीत है, तो नए जमाने का, पर इस संगीत, इस गीत का हर बोल बहुत गहराई से हमें समझाता है।

खजूर, बस अपने मन को खुश रखना, यही सबसे बड़ा टैलेंट। और इसी के साथ है, जी हाँ, आज की छोटी सी बात आपको पसंद आई, जानकर हमें बेहद खुशी हुई। और इतना ही नहीं, जिंदगी में कभी कभी रफ्तार कम करनी पड़े तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि जिंदगी का हर लम्हा बहुत ही कीमती है। चलिए इसी के साथ आपके नामों को आज के इस कार्यक्रम में शामिल करने का समय हो चला है, डेडिकेशन टाइम। और इसी के साथ है, जी हाँ, ये जो गाना हमने अभी भी चलाया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये फिल्म में हर एक लम्हा कितना खूबसूरती से दर्शाया गया है। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो शायद आपको पता होगा, हालांकि नई फिल्म है पर बहुत ही लाजवाब सी स्टोरी, लाजवाब सा मैसेज। और इसी के साथ आइए नामों को जोड़ते हुए, गौगुप से हमारे साथ श्यामा रघुनंदन हमेशा की तरह साथ देती हुई, उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी हैं नम्रता, केशव और युधीश साथ देते हुए, और उनकी प्यारी सखियां विश्वानी दुखी कौंदिमा से और वीना रामफल त्यागूश से। शोभा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वाकवा से, उनकी प्यारी बेटियां अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्णवी हमेशा की तरह साथ देते हुए, उनकी प्यारी बहन प्रेमिला जयमंगल मोचिदा से, और साथ है वीना जी और राधा बाल गोबिंद हमेशा हमारा साथ देती हैं, बहुत बहुत प्यार। और आप विश करना चाहती हैं आपकी प्यारी भतीजी आरती को और प्रीतम को शादी की सालगिरह, जो मनाएंगे 16 तारीख को, जी हाँ, यानी गुरुवार को। बिल्कुल, हमारी ओर से आरती और प्रीतम को शादी की बहुत बहुत शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पर नोवेल फॉन्स से गायत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेटा अजय, मामी कल्याणी मोहन और उनकी प्यारी सखी गीता बाई जो नोवेल फॉन्स से ही है, और उनके प्यारे बेटे शिवाजी, बहू है श्वेता बाई, साथ है बेटी सुधा बाई, दो प्यारी नातिन बिजवी बाई और दिया बाई, और प्यारा सा मल्हार। गौगुप से सुनीता जी भी हमारा साथ दे रही हैं, विमला जी, अमृता जी और वीना जी के साथ, और उनकी प्यारी बहन बिल्कुल कुंगुमा से आपके यहाँ आई हैं, तो आशा करते हैं कि उनका स्टे बहुत लाजवाब हो। और बिल्कुल मेबक से इस वक्त सुनीता देवी दीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मोताईलोंग से गीता जी भी साथ दे रही हैं, गीतों को बहुत ही पसंद करती हैं और गीतों का हर शब्द उनके मन में घर करता है। और आज के सेगमेंट में रखा हुआ पहला गाना जो हमने चलाया था मन्ना डे साहब की आवाज़ में, मुस्कुरा लाडले, ये गाना आपको बेहद पसंद आया, चलिए आपका दिल खुश हुआ, यही हमारे लिए बहुत ही बड़ा अवार्ड है, बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड है। और इसी के साथ यहाँ पर क्लाविद से हमेशा की तरह विजय बंदन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ दे रही हैं उनकी पत्नी रेखा, साथ है तीन बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी और उनके सभी दोस्त जो इस वक्त काम पर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौंदिमा से प्रेमिला सिंह गुलाम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनकी प्यारी बहनें साधना और रागिनी बेचू परिवार से रुकेश मौफलाक से साथ देती हैं, और त्रियोले से हैं अनसुया राम केलावन, और आपके प्यारे दामाद अविनाश और आपके नाती आयांश का जन्मदिन है, यानी पापा और बेटे का जन्मदिन एक ही दिन 18 तारीख यानी शनिवार को मनाया जाएगा, 18 जुलाई को। और बिल्कुल आपकी प्यारी पत्नी है रक्षा और बेटी आहना की ओर से अविनाश और आयांश को ढेर सारी बधाइयाँ। गौवा से शिवरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आपकी प्यारी नातिन उर्वशी रघुबाव का जन्मदिन है जो रहते हैं काठरबोन, और पापा देवदास रघुबाव साथ ही साथ नानी, जी हाँ, बहुत बहुत प्यार देती हैं। मामू सुधीर शर्मा सुनाही, साथ है मामी रोशनी, श्री शिखा शिवान और मामू, आपके मामू हैं राज और मामी है आरती, कज़न है यश और कबीर, भाभी है अंजलि, मौसी है शर्मिला सीचन और नानी माँ है कृष्णा कुमारी गौरी शंकर, और साथ ही साथ आपके प्यारे भैया प्रत्यूष का भी जन्मदिन है 12 तारीख को, यानी 12 तारीख को मना चुके हैं, रविवार को आपका जन्मदिन आपने मनाया, आपको भी कहेंगे जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ आपको भी।
नोवेल फॉन्स से मानती जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ है आपकी प्यारी बहनें अनंती, आरती, साथ है बहू अनुषा, उर्वशी,

लिखती हैं गिरिशा, मितिशा, नाती हैं आपके हितांशु, भव्य और पुष्कल हमेशा की तरह साथ देते हुए। मोडालबिया से इंदिरा लॉटन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ दे रहे हैं दीक्षा, कृष्णा, पेपे और गोपी, गोपी परिवार से जो है लंदन से, और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर विश्वानी दुमन का भी मैसेज आ चुका है, वाकवा से साथ दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बुबासन से माला जी भी हमारा साथ दे रही हैं और दयाल परिवार के साथ वे जुड़ चुकी हैं। और आपने कहा कि आपकी भी शादी की सालगिरह है, चलिए आपको भी ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बधाइयाँ। यहाँ पर हमारे साथ अनीता जी फ्लिकों फ्लाक से जुड़ चुकी हैं और वे लिखती हैं कि आंतीश, उनके प्यारे बेटे आंतीश और बहू मनीषा की शादी की सालगिरह है और ढेर सारा प्यार उनकी सासू माँ अनीता की ओर से। ससुर जी हैं राज, देवर अंकुश, देवरानी है आशिमा, बेटी है हिमेशा, बेटा है आंश, पापा सुनील, मामा लता और भाई आदर्श और सभी प्रियतब परिवार की ओर से और राम किशुन परिवार की ओर से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद उनके लिए। अनीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनीता लाल जी जो हमेशा साथ देती हैं मॉडल बेयर से, ईतू परिवार, गोगा परिवार, नागेश्वर परिवार के साथ। माला जरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आज आपकी प्यारी बेटी रेखा जरी का जन्मदिन है, पापा ईश्वर और भाई दीपक की ओर से। और रेखा जी आप नर्स का काम करती हैं तो आपकी सभी टीम की ओर से और परिवार की ओर से आपको बहुत सारा प्यार। अमृता गंगू वैद्य से साथ देती हैं और उषा जी जुड़ी हुई हैं हाईलैंड से कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ। और पतिता का गाना, तलत महमूद की आवाज़ में रखा हुआ गाना आपको आपके पापा की याद दिलाता है क्योंकि वे हमेशा ये गाना गुनगुनाया करते थे। थैंक यू सो मच, चलिए यादें ताज़ा हुई, हमें जानकर बहुत खुशी हुई। और त्रियोले से सूरज शर्मा सजादा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फ्लोरियाल से माधुरी जी भी साथ दे रही हैं, काटोबोन से है माला सुमारू जी और साथ है उनके पति सूर्यदेव। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर माला जरी जी हमसे कहती है मेरी बेटी का नाम रेखा नहीं रीमा है। ओहो, हमसे गलती हो गई, चलिए माफ़ कर दीजिए। रीमा जी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ आपको। और वाकवा से जुड़ी हुई हैं फुलवंती जी, बेटा देवानंद, बेटा है उषन, बेटी है भावना और पति देवानंद के साथ। क्योपिप से साथ दे रही हैं गीता जी, बॉशेरी से हैं लीला जी, काटरबोन से स्वस्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेटी लेखानी और बेटा सुमित के साथ। और पुद्गदो अमलेट से आप साथ दे रही हैं विश्वानी जी और आपकी प्यारी भगिनी पूनम का जन्मदिन है, उनके पति है विक्रम, बेटा रौनक और बेटी हिमांशी। साथ ही साथ आपकी और एक भगिनी दर्शिनी का भी जन्मदिन है, पापा सोहन, मामा रीटा और पुपू कमला की ओर से। कातकोको से कमला जी भी हमारा साथ दे रही हैं सभी रामन और सीपल परिवार के साथ। इक्वायो से है मून, आपने भी गाना पसंद किया बन फूल का, आपके पति चांद और सभी फुकियाचंद परिवार। लक्ष्मी जी बॉम्बू से जुड़ी हुई हैं बेटा अक्षय और आशनी के साथ। नलिनी जोखन साथ दे रही है वाकवा से, मुका से सुदेवी जी और लिस्पेरेंस त्रिबुशे से किरण बारोट और उनकी प्यारी पत्नी नम्रता। कवेजपुस से उदय जी, साथ है हमारे देवी जी और नीता खेदनी सेंट जूलियट विलाज से। चलिए इसी के साथ यहाँ पर बस कुछ ही पल में हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ और हमारा और आपका साथ बना रहेगा बिल्कुल 11 बजे तक। फिलहाल के लिए छोड़े जाते हैं ये गीत, रानी रूपमती का गाना, आज का दिन सभी के लिए बहुत ही प्यार से रहे। आते हैं अभी थोड़ी ही देर में समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरी मिला ले जा फजीर के 8 बजे तक। आठ बजे के समाचार में सब लोग के स्वागत करल जाता, सब कोई के नमस्ते या प्रणाम। सबसे आगे देश के बारे में बतियाओ अब जा। आज 14 जुलाई के फ्रांस के राष्ट्र दिवस मनावल जाता। आज के दिन 14 जुलाई 1789 के बरिस के भयल ऐतिहासिक बास्टी किला पर कब्जा के घटना के याद में ई दिन मनावल जाला, जोन फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत के प्रतीकात्मक पहल का कदम के रूप में मानल जाला। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से गहरा और बहुआयामी रहल बाटे। इस संबंध साझा इतिहास के नींव पर आधारित है और कई गो विभिन्न क्षेत्र में लगातार सहयोग के माध्यम से ई आर मजबूत होते जाता। गौरतलब बाटे कि दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंध कई गो समझौता आर पहल के माध्यम से संचालित बाटे, जेकर में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था आर व्यापार के क्षेत्र बाटे। पहले बरिस फ्रांस मॉरिशस के दूसर का सबसे बड़ा ग्राहक आर पांचवा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनल, यानी कि हुआ से सबसे जस्ती चीज मंगावल जाला। राष्ट्रीय दिवस के उत्सव से आगे बढ़ के फ्रांस आज भी कई गो मॉरिशन लोग खातिर अवसर की धरती बनल बा। पढ़ाई करिए आर यानी कि काम करे खातिर आर शादी करला के बाद फ्रांस के रुख करे होला कई गो मॉरिशन आज हुआ अपन पहचान आर सफल जीवन बना ले हवन जा। इकर बावजूद उ लोग अपन मातृभूमि मॉरिशस से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखेलन जा। लोग के जीवन यात्रा ई बात के प्रमाण है कि फ्रांस उलोग के रेस्टोरों, व्यवसाय, संस्कृति, मीडिया और उद्यमिता जैसन कई गो क्षेत्र में आगे बढ़े के आ नवा संभावना के साकार करे के अवसर देले बाटे। बात करी जा राष्ट्रीय सभा के बारे में, आज मंगल फजीर के 11 बज के आधा से राष्ट्रीय सभा के सत्र शुरू हुई और पारंपरिक तरीका से प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम PMQT लगी। ई के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 गो सवाल पूछल जाए। इस सवाल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जाँच, प्लास्टिक बोतल पर लगे होला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामला, मादक पदार्थ से जुड़ल गतिविधि, 114 मिलियन रुपया के रकम होला सूटकेस के मामला के जांच, 2014 से 2024 के बीच आगे के सांसद देने से इस्तेमाल कर गल वाहन की संख्या जैसन मुद्दा ई में शामिल बाटी। आर मॉरिशस के संसद में आज मंगल के सत्र के बखत कई गो मंत्री से लगभग 50 गो सवाल पूछल जाए। इस सत्र में कई गो महत्वपूर्ण मुद्दा पर भी चर्चा हुई, जेकर में जल आपूर्ति, पानी के जन आपूर्ति के सुरक्षा है, अवैध पानी कनेक्शन, SSO अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ले मेट्रो एक्सप्रेस के बनाई के यानी कि ओकर विस्तार करे के, सामी आपातकालीन चिकित्सा सेवा आर उच्च स्तरीय खिलाड़ी लोग खातिर मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना जैसन विषय शामिल बाटी। आर कई गो ऐसन लयिका में दिखल जाला व्यवहार से संबंध कई गो विकार के पाछे अक्सर कई गो कारण रहेला, जेकर पहचान आर उचित तरीका से संभाले के बहुत आवश्यकता रहेला। सरकार दिने से ई सब लयिका लोग खातिर एगो विशेष केंद्र स्थापित करे के योजना के बीच क्षेत्र के कई गो विशेषज्ञ ई बात पर जोर देवत हुआ जा कि हर एगो लयिका के व्यक्तिगत जरूरत के मूल्यांकन पर आधारित एगो उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाए के चाही। संचार में कठिनाई यानी कि बोले बतियाई में कठिनाई होएला या फिर विकास से जुड़ा दूसर कारण कुछ लयिका लोग में व्यवहार के पीछे एगो कारण हो सकेला। लयिका लोग में व्यवहार

0: संबंधी समस्या के संगे काम करे होला स्पीच थेरापी ऑडियोलॉजिस्ट सत्यावानी वीराभद्रन बोलन की मौजूदा संस्था में क्षमता के मजबूत करे के आर कोनो प्रकार के अलगाव या भेदभाव से बचे के महत्व पर ध्यान केंद्रित करे के जरूरी है। आर दूसर देश के समाचार में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गल बाटे। दोनों देश के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ल बाटे। रिपोर्ट के अनुसार होमूज जलमार्ग में ईरान देने ऐसे व्यापारिक जहाज पर हमला करला और कुछ जहाज के अपन नियंत्रण में लेला के बाद अमेरिका हवाई हमला और समुद्री ड्रोन अभियान के एगो नवा श्रृंखला शुरू कर ली बाटे। हुए परी दुबई संयुक्त अरब इमीरात कालेंदी के होमूज जलमार्ग में दूगो तेल टैंकर पर हमला खातिर ईरान पर बहुते दुस्साहिक हमला करे के आरोप लगैले बाटे। ई हमला में एक जना के मौत हो गल बाटे जबकि 8 जना के घाव लगल। ई बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करले बाटे कि अमरीका होमूज जलमार्ग से जुड़ल नवा नाकाबंदी उपाय के तहत 20% के शुल्क लगाए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलन कि अमरीका ईरान पर बहुत कड़ा कार्रवाई करता। दोनों देश के बीच बढ़त तनाव के बीच लगातार तीसरका रात के ई सब हमला भेल। तेही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भेल। ध्यान से साथ देना ओका खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: पढ़ने के समाचार सुना। पुलवेजनी स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 73 साल के 3 करोड़ 13 बरिस के अब्दुल मुस्लिम मौलाबक्स जनाब अब्दुल मुस्लिम मौलाबक्स जिनकरा मौसम बुमौसे के नाम से बेन में जिस जानथन जा इंतकाल कर गल हवन। इनका जनाजा आज दिन के 12 बजे इनकर घरे पोर्ट लुइस से उठा के दफनाए खातिर रिश्ते के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट नून 10 क्वेन स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 4 करोड़ 2 बरिस के 82 बरिस के श्री उपेन दरनार बीतल जिनका उपेन के नाम से वेद में जिस जहाँ जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनका घर है पोर्ट लुइस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वाली देपथ के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM विवेकानंदा स्ट्रीट ला फ्लोरा में 52 बरिस के 2 करोड़ 12 बरिस के श्री अजीत सिंह रंगलाल जिनकरा मुनु के नाम से बेदमी जिस जानते जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज सांझ के 3 बजे इनकर माँ रजनी रंगलाल के घरे लाफ्लोगा से उठा के अंतिम संस्कार का तीर घोंबा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM सीते उदय से नंबर 22 पीतों में 2 करोड़ 18 बरिस के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री सनासी राशि जिनकरा रामायण के नाम से बेन में जिस जहाँ जाकर मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज 1:15 इनकर बेटी पल्लवी इसमियत के घरे पीतों से उठा के अंतिम संस्कार का तीर लेस्पेरांस पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM नंबर 14 नाथ बिल्डिंग बोबासे में 4 करोड़ 20 बरिस के 80 बरिस के श्रीमती कमला देवी चरितर पैदाश्याम रामदीना जिनकरा सकून के नाम से बेदमी जिस जहाँ जाकर मृत्यु होकर बैठे। इनका अर्थी आज 2:15 लाशा पहला दौतेलियनसन बोबासे से उठा के अंतिम संस्कार का तीर शिवेल के शमशान भूमि ले जावा जाए। क्रिमेशन टूटी एट 1:30 PM इसकी रोड पाई में 72 साल के 3 करोड़ 12 बरिस के श्रीमती देवंती अकू पैदाशनाम लोफॉ जिनकरा मदम गौजा के नाम से वेद में जिस जहाँ जाके मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी आज फजर के 10:10 इनका बेटा महादेव अकू के घरे पाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिश्लियो के शमशान भूमि ले जावा जाए। क्रिमेशन टूडी एट 1:10 AM मकाओ लेन थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 81 बरिस के 4 करोड़ 1 बरिस के श्रीमती सुबामा मुतुस्वामी पैदाशाम सावरिया जिनकरा सिन्दा के नाम से बेद में जिससे जहाँ जाके मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज फजर के 10:10 इनका घरे थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थ्वाबुचिक के शमशान भूमि ले जावा जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1:10 AM लेटो रोड रोजबेल में 56 बरिस के 2 करोड़ 16 बरिस के श्री कविराज सिंह उजागिया जिनकरा रवि के नाम से बेन में जैसे जहाँ जाकर मृत्यु होकर बैठे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पत्नी लाला शर्मिला राय गोबी नुजागिया के घरे रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
2: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ, रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ, रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर। सुबह का नजराना कार्यक्रम के इस अगले सेगमेंट में एक बार फिर आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं एक बार फिर आपका साथ देने के लिए रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। एक छोटी सी मुलाकात जहां पर हम बात करते हैं एक ऐसे अदाकारा की या कलाकार की जो बहुत ही पॉपुलर है और बस आज का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा खास। फिलहाल आज तो हम 14 तारीख में हैं और 16 जुलाई को मनाया जाएगा जन्मदिन कैटरीना कैफ का। 1983 में पैदा हुई कैटरीना कैफ, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री है और ब्रितानी अभिनेत्री हम कहेंगे, और साथ ही साथ मॉडल, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म जगत में काम करती हैं और हालांकि उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्म भी की है। भारत की सबसे अधिक परिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक होने के साथ साथ कैटरीना कैफ को सबसे आकर्षक हस्तियों में एक रूप में मीडिया में घोषित किया गया है और उनका नाम सिलेक्ट किया गया है इस नॉमिनेशन लिस्ट में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एक सफल मॉडलिंग कैरियर के बाद 2003 में कैटरीना ने व्यावसायिक रूप से असफल फिल्म बूम में एक भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। फलस्वरूप वो एक तेलुगु हिट फिल्म रोमांटिक कॉमेडी मल्लीस्वारी में देखी गई थी और कैटरीना कैफ ने बाद में रोमांटिक कॉमेडी मूवी मैंने प्यार क्यों किया और नमस्ते लंदन के साथ बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता अर्जित की, और जिनमें से बाद वाली के लिए यानी जो फिल्में बाद में आई उनके अभिनय की प्रशंसा में भी उनका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसके बाद उनकी कुछ ऐसी फिल्में रही, सफल फिल्में रही पार्टनर, वेलकम और सिंग इज किंग। 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार का नामांकन यानी नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, उनके करियर को एक नया मोड़ दिया गया, नया मोड़ मिल गया और उसके बाद राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन और एक था टाइगर जैसी हिट फिल्मों में भी उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और वो धूम 3 में भी संक्षिप्त भूमिका में देखी गई है और जिसने भारतीय फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। अपने अभिनय कौशल के लिए समीक्षाएं उन्हें प्राप्त करने के बाद यानी उनको बहुत सारी क्रिटिक्स भी प्राप्त हुई, उन्होंने अपने आप को हिंदी फिल्मों में व्यावसायिक रूप से एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। अभिनय के अलावा कैटरीना कैफ ने स्टेज शो और अवार्ड कार्यक्रमों में भी भाग लिया है और विशेष रूप से अपने निजी जीवन के बारे में संरक्षित और जो व्यापक रूप से मीडिया जांच का विषय रहा है। और 2021 में कैटरीना अभिनेता विकी कौशल से उनका ब्याह हुआ, उनका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। इनके जिंदगी के बारे में अगर बताएं तो बिल्कुल, कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1984 को हांगकांग में तुर्कोटेकुल नाम के साथ हुआ था और

कैटरीना के मुताबिक उनके पिता मोहम्मद कैफ ब्रितानी कारोबारी थे और जिनके पूर्वज कश्मीर से आए थे और उनकी जो माँ है वे अंग्रेज वकील और दान कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर थी। उनके सात भाई बहन, तीन बड़ी बहन स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा और तीन छोटी बहन मेलिसा, सोनिया और इसाबेल और बड़े भैया का नाम माइकल। कैटरीना जब बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया, ऐसा कैटरीना ने खुद बताया था एक इंटरव्यू के दौरान, और उनके माता पिता अलग हुए। कैटरीना और उनके भाई बहन को उनकी माँ ने अकेले ही पाला और पढ़ाया। कैटरीना की माता जी सामाजिक कल्याण संस्थानों से जुड़ी हुई थी जिसके कारण उन्हें कई देशों में जाना पड़ता था। कैटरीना के जन्म के बाद उनका परिवार कुछ दिनों के लिए चीन में रहा, फिर जापान में, वहां से फिर फ्रांस, और जब वो 8 साल की थी फिर वो कुछ कुछ महीनों के लिए कभी कभी स्विट्जरलैंड तो कभी पोलैंड तो कभी बेल्जियम और अन्य यूरोप देश में रही हैं। बाद में वो अपने परिवार के साथ हवाई में रही जहाँ उनका पालन पोषण हुआ और अंत में अपनी माँ के साथ वे स्वदेश यानी इंग्लैंड जा पहुँची। वहाँ पर 3 साल रहने के बाद वो भारत आ गई और अपना कुल नाम और पापा का कर लिया, यानी क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय उनकी माँ का नाम ढंग से बोल नहीं पाएंगे और ब्रिटिश नागरिक के रूप में वो एक रोजगार वीजा पर भारत में काम करती थी। वैसे उनकी स्टोरी काफ़ी ही दिलचस्प है। कैटरीना ने 14 वर्ष की उम्र में हवाई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती थी और तभी से वे मॉडलिंग करती थी। बाद में उन्होंने मॉडल के रूप में अपना पहला काम किया, उन्हें काम मिला और एक ज्वेलरी कंपनी का उन्होंने विज्ञापन किया। फिर वे लंदन से पेशेवर मॉडलिंग करने के लिए वहां से स्वतंत्र मॉडल एजेंसियों के लिए काम करने लगी। यहीं पर एक फैशन शो में फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद की नज़र उन पर पड़ी और जिन्होंने उन्हें फिल्म बूम के किरदार में का प्रस्ताव दिया, जो टिकट खिड़की पर ओंधे मुँह गिरी और बिल्कुल ये फिल्म बहुत ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। भारत में शूटिंग के दौरान उन्हें अन्य कई प्रस्ताव मिलने लगे तो उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला ले लिया और वो जल्द ही एक सफल मॉडल बन गई और उन्होंने कई प्रमुख कंपनियों के विज्ञापन के लिए जैसे कोका कोला, LG, फेविकॉल और सैमसंग जैसी कंपनी के लिए उन्होंने मॉडलिंग की। और लेकिन फिल्म निर्माता भाषाई कमियों के कारण उसे काम देने से हिचकिचाते थे क्योंकि उनकी जो एक्सेंट थी वो भले ही हिंदी बोलती थी पर उनकी जो एक्सेंट थी वो काफ़ी हद तक ब्रिटिश लगती थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी कक्षाओं में के माध्यम से अपनी हिंदी को सुधारने पर बहुत काम किया। भाई अभिनेता हो अभिनेत्री हो, मेहनत तो करनी है, चाहे हुक चाहे क्रुक, कैसे भी करके अपना नाम बनाना था तो उन्होंने भी ये मोल ले लिया। और चलिए उसके बाद काफ़ी असफलता के बाद उन्होंने मल्ली स्वारी नामक एक तेलुगु मूवी में काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें कथित तौर पर 75 लाख रुपीस मिले और उस समय दक्षिण फिल्म उद्योग में किसी अभिनेत्री को इतना ज़्यादा मेहताना नहीं मिला था, पर कैटरीना कैफ को मिला और अपने अभिनय के लिए उन्हें नकारात्मक समीक्षाएं यानी नेगेटिव क्रिटिक्स का भी सामना करना पड़ा। हालांकि फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही। अगले ही साल रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की प्रेमिका बनी, जो काफ़ी छोटा रोल था। उसके बाद वो हिंदी फिल्मों में पहली बार के लिए मुख्य भूमिका में डेविड धवन की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में वे नजर आईं। सलमान खान, सुहेल खान और सुष्मिता सेन जैसे बड़े कलाकारों के साथ और इस फिल्म में भी प्रमुख भूमिकाओं में से वे थी। फिल्म सफल रही और कैटरीना कैफ को फिल्म उद्योग में पहचान मिली। इसके बाद वो

तेलुगु मूवी अल्लरी पिद्दुगु में भी उन्होंने एक छोटी सी भूमिका की। फिलहाल चलिए मैंने प्यार क्यों किया इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपके नाम करते हैं।

0: आज हम बात कर रहे हैं कैटरीना कैफ की जीवनी पर। जी हाँ, एक छोटी सी मुलाकात में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनसे।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: July 16, 1984 में जन्मी कैटरीना कैफ पर आज हम बातें कर रहे हैं और उन्हीं के कुछ हसीन गीतों को हम सजा रहे हैं सेगमेंट में। वैसे 2006 में कैटरीना कैफ की जोड़ी पैरअप की गई अक्षय कुमार के साथ, हमको दीवाना कर गए फिल्म बनाई गई जो आगे जाकर काफ़ी सफल रही। हालांकि फिल्म को टिकट खिड़की पर उतना कह सकते हैं कि उत्साहीन प्रतिक्रिया मिली, पर कैटरीना के अभिनय को समीक्षकों ने बहुत सराहा। फिर वो बलराम बनाम तारादास नामक मलयालम फिल्म में भी नजर आई जो आर्थिक रूप से सफल रही और उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। 2007 में आई मूवी, बहुत ही हिट मूवी, काफी अच्छा इसका रिस्पांस रहा, फिल्म थी नमस्ते लंदन। वैसे पहले हम आपको हमको दीवाना कर गए का ये छोटा सा मुखड़ा सुनाते हैं।

0: बिल्कुल, जो शिद्दत से काम करता है उसकी दीवानगी भाई उसके फैंस के दिलों में छाने तो लग ही जाती है।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ,
0: और ऐसा ही हुआ कटरीना कैफ की लाइफ के साथ भी। अपने फैंस की लिस्ट बढ़ती गई। 2007 में उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवी नमस्ते लंदन में काम किया और ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई, और उस साल उनकी 4 फिल्में आई थी जो बहुत ही हिट रही। और इस साल सबसे पहले विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म नमस्ते लंदन जो हिट रही और अभिनय के भी बहुत ही काबिले तारीफ रही, और कटरीना और अक्षय की जोड़ी को लोगों ने बेहद बेहद पसंद किया। उसी साल अगली फिल्म आई अपने। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और किरण खेर के साथ शिल्पा शेट्टी भी नजर आई थी। इस फिल्म में भी उनको महत्वपूर्ण भूमिका का रोल दिया गया था। और अपने के बाद वो फिर से डेविड धवन की मूवी पार्टनर में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने उनके साथ बिल्कुल सलमान खान, गोविंदा और लारा दत्ता भी नजर आए थे। और इस फिल्म ने 100 करोड़ की का रेवेन्यू किया और ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। कटरीना की साल की आखिरी फिल्म बहु अभिनीति नीत फिल्म वेलकम रही, जिसमें उनकी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ फिर एक बार पैरअप की गई थी, और नाना पाटेकर, मल्लिका शेरावत, अनिल कपूर और परेश रावल की भी एक प्रमुख रूप से भूमिकाएं रही इस फिल्म में।

और फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली। इस फिल्म ने दुनिया भर में 113 करोड़ की कमाई की। चलिए नमस्ते लंदन का ये मशहूर सा गाना

0: 2008 में उनकी फिल्म अब्बास मस्तान की फिल्म रेस में भी नजर आई थी, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, बिपाशा बासु, अनिल कपूर और समीरा रेड्डी के साथ, और रेस काफ़ी हिट रही और इसके बाद कैटरीना की सफल फिल्मों की जड़ी जारी रही। हालांकि उनको अपने अभिनय के लिए काफ़ी सारी क्रिटिक्स सुननी पड़ी। वो अगली बार अनीस बज़मी की मूवी सिंग इज़ किंग में भी नज़र आई और इसी फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में। और बिल्कुल ये गाना भी, ये फिल्म में भी अक्षय कुमार के साथ उनकी पेयरिंग की गई थी और दुनिया भर में 125 करोड़ का रेवेन्यू इस फिल्म ने कमाया और ये फिल्म काफ़ी हिट घोषित हुई और कैटरीना की लगातार छठी फिल्म टिकट खिड़की पर सफल दिखाई दी। उनकी साल की आखिरी फिल्म थी युवराज और ये फिल्म काफ़ी मतलब उतनी हिट नहीं रह पाई और उनके अभिनय को भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। समग्र रूप से फिल्म को मिली मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद उसकी पटकथा को कलात्मक योग्यता के कारण अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के पुस्तकालय में जोड़ा गया। इस अवधि के दौरान कैटरीना की आवाज अक्सर डबिंग कलाकारों द्वारा डब की जाती थी क्योंकि वो हिंदी भाषी उतना फ्लुएंट हिंदी नहीं बोल पाती थी और अन्य भारतीय भाषाओं में वे निपुण नहीं थी, इसीलिए उनकी आवाज़ को हमेशा डब किया जाता था। हालांकि कैटरीना इस चरण पर कई सफल फिल्मों के साथ का हिस्सा बन चुकी थी और पर फिल्मी कह सकते हैं कि क्रिटिक्स ने ध्यान दिया और इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि आगे चलकर उनको यही प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़े।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: जी हाँ, इन फिल्मों की लिस्ट के बाद जिनमें उन्हें महज अपनी खूबसूरती के लिए दर्शाया जाता था, कैटरीना द्वारा न्यूयॉर्क में निभाए गए किरदार में उन्होंने उस अभिनय के स्तर पर पहचान दिलाई और इस फिल्म में नजर आए थे जॉन अब्राहम, नील नितिन मुकेश और इरफान खान और कैटरीना के अभिनय को इस फिल्म में बहुत ही पसंद किया गया। और बेशक जैसे नमस्ते लंदन के साथ साथ न्यूयॉर्क भी ये फिल्म रही जहाँ पर उन्होंने अपनी ही आवाज़ में इस फिल्म को दर्शाया जहां पर उन्होंने किसी भी डबिंग आर्टिस्ट की सहायता नहीं ली थी। उन्होंने फिल्म ब्लू में भी कैमियो किया था। राजकुमार संतोषी

ये मूवी रही अजब प्रेम की गजब कहानी, और इस फिल्म में रणबीर कपूर, जी हाँ रणबीर कपूर के साथ उनकी पेयरिंग की गई थी, और इस फिल्म को भी काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया, और बेशक ये फिल्म भी काफ़ी सफल रही और कैटरीना कैफ के उनके अभिनय को भी बेहद सराहा गया। और उनकी साल की आखिरी फिल्म प्रियदर्शन की बहू अभिनेत्री दे दनादन में भी उनका जो रोल था वो लोगों को बेहद पसंद आया।

और बिल्कुल ये हाल रहा उनका, और साथ ही साथ बिल्कुल होने लगे उनके साथ विकी कौशल। बिल्कुल कोई नहीं जानता था कि विकी कौशल के साथ उनकी लाइफ की पेयरिंग हो जाएगी। वैसे लाजवाब कह सकते हैं कि एक ऐसी जोड़ी जो बहुत ही प्यार से उन्होंने इस बंधन में वे लोग बंधे। 9 दिसंबर 2021 को विकी कौशल के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका विवाह हुआ और ये कार्यक्रम यानी ये शादी माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में आयोजित किया गया था और कैटरीना और विकी की शादी व्यापक मीडिया कवरेज का विषय थी, जिससे उनकी आधिकारिक शादी की तस्वीरें जब तब तक भारत के इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट बन चुकी थी। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको मुलाकात करवाई एक छोटी सी मुलाकात में कैटरीना कैफ की जीवनी के साथ। और चलिए इसी के साथ आज के इस सेगमेंट को बस यहीं पर फुल स्टॉप लगाने का समय हो चला है। अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम के साथ, जहां किरण जानकी हमारा साथ देगी, तो जरूर आप भी हमारा साथ दीजिएगा।

0: Setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on, heal me.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। फ्रांस में बास्टी डे यानी राष्ट्रीय दिवस हर 14 जुलाई 14 जुए के मनावल जाला। 1779 के पेरिस के बास्टी कैदखाना जहां राजनीतिक कैदी लोग के रखल जात रहल, ओकर पर फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज फ्रांसीसी विद्रोही लोग द्वारा करा गल हमला के बाद ई दिन 1880 से औपचारिक तौर पर मनावल जाला। ई दिन फ्रांस भर में ब्लू ब्लॉ रूज यानी कि नीला सफ़ेद और लाल झंडा फहरावल जाला, साथ में पागाद उत्सव फुलझड़ी और कितने समारोह मनावल जाला। एफल टावर तूर एफेल जगमगा उठेला उ दिन लाल नीला और सफ़ेद रंग में। फ्रांसीसी बहुत ही गर्व से लिबर्टे एगालिते और फ्रेटर्निते के नारा लगावेलन से यानी स्वतंत्रता समानता और भाईचारा के नारा। शांज एलिजे के जन सड़क बा हुआ पर जन यूरोप के सबसे बड़ा सैनिक पराड वहाँ पर लगेला। और फ्रांस में जब भी उत्सव होवेला तो फ्रांसीसी संस्कृति के अनुसार वाइन चीज बागेट के संगे पार्क में पिकनिक होवेला। नदी किनारे भी रोशनी के इस शहर संगीत से गूंज उठेला, नाच गाना होवेला, बहुत प्रभावशाली फूलझड़ी के संगे समारोह के समापन होवेला। फ्रांस के संगे संगे कितने देश में बास्टी डे मनावल जाला। कनाडा के टोरंटो में, केबेक में, यूएसए में 50 से जस्ती शहर ये फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के सम्मान में ई दिन मनावेलन स। जोन सबसे प्रसिद्ध जगह बा उ जगह के वह न्यू ओलियन, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क। लंदन में भी संगीत और मनोरंजन के साथ ई विशेष जगह पर ई दिन मनावल जाला। न्यूजीलैंड में भी फ्रांस के संगे जेकर संबंध बा उ लोग सब कोई ई दिन मनावेलन स। फ्रांस के एक बार फिर अपन बास्टी डे के बहुत बहुत शुभकामना। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, धन्यवाद, नमस्ते।
3: तो चला इसी के साथ किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। और एगो बढ़िया गीत ललिता गजादर के आवाज में रखल एगो भोजपुरी गीत सुनब जा। ये गीत हमने के जोड़ी 9 बजे के समाचारों के संगे। और 9 बजे के समाचारों के बाद सुमिता सरकार आप सबको के साथ दिए जा आज की चर्चा कार्यक्रम में, जेकर सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस और MBC 3 पर तू देखे सकवा। तो चला इसी के साथ हमनी के अब मुलाकात हुई 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको शुभ दिन।

0: 119 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 14 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। लेकर आशिता आ चुकी है। आशिता, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।

0: सुमी श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बास्टिल किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कई समझौतों और पहलों के माध्यम से संचालित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र शामिल हैं। पिछले वर्ष फ्रांस मॉरिशस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक और 5वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। और आज मंगलवार सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय सभा की कार्रवाई शुरू हो रही है। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जाएगा। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियाँ, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूट केस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या जैसे मुद्दे शामिल हैं। मॉरिशस की संसद में आज मंगलवार के सत्र के दौरान ही विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे, जिनमें जल आपूर्ति की सुरक्षा, अवैध पानी कनेक्शन, SSR अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो एक्सप्रेस के संभावित विस्तार, सामी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना जैसे विषय शामिल है। और आपको हम याद दिला देते हैं कि आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो सुर्खियों में है वो है अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार होर्मुज जलमार्ग में ईरान द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने और कुछ जहाज़ों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अमरीका ने हवाई हमलों और समुद्री ड्रोन अभियानों की नई श्रृंखला शुरू की है। वहीं दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने कल सोमवार को होर्मुज जलमार्ग में 2 तेल टैंकरों पर हुए हमले के लिए ईरान पर बेहद दुस्साहिक हमला करने का आरोप लगाया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका होर्मुज जलमार्ग के से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। और अंत में हम आपको याद दिला देते हैं कि इस फ्लैश न्यूज़ के बाद यहाँ पर आपके लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा आज की चर्चा। और इस के अंतर्गत आज अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर चर्चा केंद्रित रहेंगी। और आज जो मुख्य मेहमान हैं वो है नीरज और हर्षा और प्रस्तुतकर्ता हैं सुमी सरकार। सो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 14 जुलाई, हमारे सभी श्रोता और सभी दर्शकों का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ये जो प्रोग्राम है इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं हमारे MBC प्ले ऐप पर भी। आपको ये भी याद दिला दें, इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही दोपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी को बता दें कि इस महीने की 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ होप मनाया गया, एक ऐसा दिन जो अपने आप में बहुत ही गहरा महत्व रखता है। होप, आशा की बात करें तो कहते हैं कि जो दुनिया है आशा पर टिकी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में कोई ना कोई आस होती है, कोई ना कोई उम्मीद होती है जिसके सहारे हम अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। तो इस दिन का क्या महत्व है, क्यों इसे मनाया जाता है और अभी के समय में इस दिन की इतनी आवश्यकता क्यों है, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच जो है मिस हर्षा चाकुरी जी जुड़ चुकी है। ER हॉस्पिटैलिटी से है, सेफ्टी एंड हेल्थ वेलबिंग से जुड़ी हुई है और वेलबिंग में काफ़ी अपना योगदान देते हैं। और साथ ही हमारे बीच अभ्यास से नीरज जी भी जुड़ चुके हैं। सो हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। नमस्कार आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमें बताएं कि ये होप, ये उम्मीद होती क्या है।
2: सबसे पहले तो सुमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अभ्यास को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। उम्मीद की हम बात करते हैं, आपने वहीं से शुरू किया था कि उम्मीद पे ही ये दुनिया टिकी है
1: जी।
2: अगर हम कहें कि ये मानव जो शरीर है यही उम्मीद है, यही अपॉर्चुनिटी है, यही होप है। जब तक ये है, जब तक ये चल रहा है, ये सांसें चल रही हैं, तब तक होप है। अगर ये सांसें छूट गई तो होप भी चला गया, उम्मीद भी चली गई। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जीवन ही उम्मीद है, ये मानव जीवन ही उम्मीद है, उम्मीद है हमारे विकास की, उम्मीद है जहाँ हम रुक गए थे वहाँ से आगे बढ़ने की, उम्मीद है हम जिस बंधन में फंसे हैं उससे छूटने की। तो योग को अगर हम कहें तो ये उम्मीद है हम कैसे इससे बाहर निकल जाएं। तो अभी हमें मान लीजिए कि किसी भी चीज़ के लिए पेन होता है, तो हम कहें कि हम पेन हो रहा है, आर वी कर्स्ड, और दिस इज अ सिम्टम कि हमें बताया जा रहा है कि पेन क्यों हो रहा है, हम कहाँ फंसे हैं
1: जी।
2: तो आगे फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मानव जीवन ही उम्मीद है हमारे विकास की, हमें आगे बढ़ने के लिए।
1: और ये उम्मीद हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि शायद जिस व्यक्ति के जीवन में उम्मीद नहीं होती है उसके भीतर जीने की आशा नहीं होती है ना। जैसे अपने दर्द की बात की, ये दर्द है तो ये दर्द हमें एहसास दिला रहा है कि हम जी रहे हैं। अगर हमें चीज़ें महसूस नहीं होंगी तो शायद जीने का एहसास भी नहीं होगा, तो अपने आप में ये भी एक उम्मीद ही है। चलिए हर्षा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के इस विषय पर आपके क्या विचार हैं।
3: सबसे पहले मैं MBC का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये यहाँ आमंत्रित किया।
1: धन्यवाद,
3: बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं इतनी हाईली फिलोसफिकल नहीं हूँ जैसे कि नीरज बात कर रही है, वो बहुत वाइज हैं। मेरे लिए होप हमारे सपने से, डिज़ायर से जुड़े हुए हैं। और अलाइनमेंट की बात करें तो जैसे मैं नीरज जी के साथ शेयर कर रही थी, जब हमारी ज़िंदगी में अलाइनमेंट नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी, तो होप ही रहेगा
1: जी,
3: एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जब मैं अलाइनमेंट की बात कर रही हूँ और डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ, ये यम, ये नियम और मेडिटेशन, प्राणायामा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। अगर ये हमको अपनाते नहीं है तो होप will be only hope.
1: Exactly. Yeah. बिल्कुल सही कहा
3: And आपने. Our dream will not be realized.
1: बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक होप, एक उम्मीद की बात करते

0: तो एक सपने की तरह होता है ना, जिसे हम देख रहे हैं। लेकिन अगर सपना हम देख रहे थे, उस सपने को पूरी करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है ना। क्योंकि अगर मैं सपना देख रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे उस किस राह पर जाना है अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप या आप मेरे उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, जिम्मेदारी मेरी है। तो नीरज जी कुछ और जोड़ेंगे इस पर?
1: ये बहुत ही मतलब हम उम्मीद की बात करते हैं, हम आशाओं की बात करते हैं, लेकिन इसके दो पहलू हैं एक्चुअली। एक तो जैसे हमने बात की कि ये मानव जीवन ही उम्मीद है, जीवन ही उम्मीद है ना। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये जीवन ही उम्मीद है। लेकिन मैं अगर दूसरे पहलू की बात करूं कि मान लीजिए कि मैं बचपन से बड़ा हुआ, मुझे बताया गया कि देखो नीरज, ये जो चीज़ है ना, ये तुमको प्राप्त हो जाएगी तो यही खुशी है। मान लीजिए मुझे बताया गया, तो मेरी एक सर्टन कंडीशनिंग हुई
0: जी।
1: और इसको दुख कहते हैं
0: जी।
1: है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये दुख है, मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है ना कि मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि वो दुख है। और अब हमें आशा है कि हम इस दुख से बाहर चले जाएं ना, कैसे भी करके बाहर चले जाएं। लेकिन उसके अंदर बहुत जब हम सटल लेवल पे जाएंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि जहां से हमको दुख मिल रहा है वही अपॉर्चुनिटी है उस दुख से ऊपर उठने के लिए
0: जी,
1: है ना। तो उम्मीद जीवन है तो उम्मीद है। अब दुख से हमें ऊपर उठना है तो दुख से हम कैसे ऊपर उठे? उसी चीज को जिससे हमें दुख हो रहा है उससे अभी जो हम उम्मीद सोच रहे हैं, जिसको हम आशा मान रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि हमको वो प्राप्त हो जाएगा, then I will be happy। बट जीवन ये कह रहा है कि देखो वो जिस तरीके से आ रहा है बस उसकी समझ को बदल लो
0: जी।
1: और वो कैसे बदलेगा कि अभी जैसे कि आपने बड़ा अच्छा बोला कि इसी शरीर में हम सब कुछ को फील कर रहे हैं, सुख हो या दुख, चाहे आप अच्छा बोल रही हैं, बुरा बोल रही हैं, या कुछ भी हो रहा है, वेयर वी आर फीलिंग, हम यहीं पर फील कर रहे हैं। तो वहां बदलेगा अभी कहां पर? यहीं पर बदलेगा। तो उम्मीद जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, वो हर एक एक्ट के साथ, हर एक जीवन के अनुभव के साथ जो इस शरीर के माध्यम से हमें मिल रहा है, वो हमको कह रहा है कि हम इससे विकास कर सकते हैं, इससे इवॉल्व हो सकते हैं,
2: प्रोग्रेस ये उम्मीद कर सकते हैं। और इनर वर्क की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी फाउंडेशन को मजबूत न करें तो मुश्किलों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनर वर्क इज रियली
0: बहुत जरूरी है। और अभी के समय में हमारे सामने चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी से कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें, कुछ दशकों पहले की, हमारे माता पिता के जब शुरुआती दौर था तभी जीवन शैली हमारी अलग थी, लाइफस्टाइल अलग थे, चैलेंजेस अलग थे, अपॉर्चुनिटीज अलग थे। अभी जो है हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है।
2: स्पेस वर्ल्ड,
0: हम सब चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं ना। एक उम्मीद, एक इच्छा पूरी नहीं होती है कि उसके ख़त्म होते होते दूसरी इच्छा जाग जाती है। और कहीं ना कहीं यह हमारी परेशानी का कारण भी बन रहा है, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, बस बढ़ते ही जा रही है। इसमें उम्मीद क्या रोल प्ले करता है?
1: देखिए वो उम्मीद क्या रोल प्ले करता है, एक इच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर उम्मीद, जैसे मान लीजिए कि इच्छाएं हैं, इच्छाएं बुरी नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि इच्छाएं बुरी हैं, और इच्छाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर वो इच्छाएं अवेयरनेस के बिना हैं तो फिर वो हमको कहीं भी ढकेल सकती हैं। हम कहेंगे कि आज जितने भी हीनियस क्राइम हो रहे हैं उसके पीछे तो इच्छा ही है, अगर मैं बोलूंगा तो, है ना। लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है उसके पीछे भी इच्छा ही है। सो देयर इज जस्ट टू थिंग्स, मतलब इच्छा ही एक तरफ जो है उसको उम्मीद है, उसको भी उम्मीद ही है जहां पे हीनियस क्राइम हो रहा है कि मैं ऐसा कर लूंगा और मैं इससे बच जाऊंगा, और एक तरफ इच्छा है जो बड़ा कार्य हो रहा है वहां भी इच्छा है। तो अगर इच्छा के पीछे एक व्यापक इंटेंशन नहीं है, एक सोच जो अपने से ऊपर नहीं है, अभी क्या है इच्छा को अगर मैं बोलूं, अगर हम समझने का प्रयास करें, सो वी हैव 5 senses, उसकी पूर्ति ही इच्छा है। आंखों से जो हमको अच्छा लग रहा है हम उसे देखना चाहते हैं, कानों से जो हमको अच्छा लगता है हम सुनना चाहते हैं, टच, एवरीथिंग। सो सेंसेस को ही हम अभी मान रहे हैं कि उसकी पूर्ति ही इच्छा है। और अभी अगर हम बोले कि वी वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर, अ बिलियनेयर मेरी इच्छा है मान लीजिए, उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर हमको ये है कि दुनिया मुझे जो है बहुत अच्छा बोलेगी, और देन दोस केमिकल्स हमारे अंदर, वो केमिकल रिलीज हो रहा है और वही हमको सुख

0: या दुख दे रहा है,
1: जी
0: तो फिर अभी भी हमारा जीवन छोटा है,
1: बिल्कुल
0: इस मानव जीवन के अनुरूप नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बड़ा बहुत इच्छा बहुत बड़ी है, और उसके पीछे क्या है कि एक तो मेरी ये विकास यात्रा, मेरी खुद की विकास यात्रा हो, मतलब व्हेन आई एम, मतलब जब मैं उस पाथ पे हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे कोई मान लीजिए कि बिजनेसमैन बन रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, या कोई किसी कार्य को भी कर रहा है, तो उसके जीवन में अच्छा या बुरा होता है। जैसे हर्षा जी हैं, ये कॉर्पोरेट में काम करती हैं। अब कॉर्पोरेट में कोई कभी कोई पॉलिटिक्स कर दे रहा है, कभी कोई इनके खिलाफ कुछ काम कर दे रहा है, तो या तो हम उसको कर्ज करें कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इस मानव जीवन को समझ लें कि वो हो रहा है तो उससे मैं इवॉल्व हो सकती हूँ, कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग,
1: एग्जैक्टली
0: है ना। तो हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख लें, उम्मीद, या फिर एज अ कर्ज देख लें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें कही, मैं इस पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि यानी कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसे हम किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं ये मायने रखता है ना, कि अच्छे तरीके से या बुरे तरीके
2: या
1: से,
2: बुरे तरीके
1: है ना। चलिए हर्षा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो है उम्मीद दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ होप, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इसे मनाया जाता है?
3: आशा जगाता है, एक दूसरे का सहारा बनना, और मुश्किल समय में भी हिम्मत ना हारना हम उन लोगों को सिखाते हैं, इसलिए हम ये मनाते हैं। और लोगों को मेंटली मजबूत बनाना, इसलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ होप को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी जनरेशन जो है, फ्यूचर जनरेशन है, इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ फैलाते हैं और अपने यंगस्टर्स से बोलते हैं कि वह क्या अच्छी, क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कि ड्रग्स की इश्यू बहुत अलार्मिंग हो चुकी है, और अभ्यास में आई एम वेरी इम्प्रेस बाय अभ्यास कि वो कंस्टेंटली फाइट
1: चलिए। यहाँ पर जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस पर, इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 4028085 है नंबर हमारा। अगर आज के इस विषय पर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बेशक आप हमारा साथ दे सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम उम्मीद की बात करें, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस जो कुछ दिनों पहले मनाया गया, तो समाज पर इस उम्मीद का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑब्वियसली किसी भी एक बात को लेते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो समाज के दृष्टिकोण से इस उम्मीद का जो है क्या नज़रिया हो है, या समाज पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, जब हम उम्मीद की बात करते हैं, जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस नेगेटिव और पॉजिटिव में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है कि जो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। मान लीजिए कि अगर मैं किसी नेगेटिव इमोशन में अभी फंसा हूँ, मान लीजिए, जस्ट उसको समझाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि उस नेगेटिव इमोशन में फंसे रहने के चलते बहुत सारी क्लैरिटी मुझे मिली, है ना। ऑल दो दैट वॉज नेगेटिव जो दुनिया के ग्राउंड पे, बट मेरे लिए तो उससे निकलने की यात्रा ही वही है। तो मैं कह रहा हूँ कि जीवन में जो कुछ जिस तरीके से हमको मिल रहा है और मिल रहा है, वही राह है, वही पथ है, और इस पल में, इस क्षण में ही है वो। अगर मैं अभी आपके साथ हूँ, आप, हम लोग तीनों एक साथ बैठे हैं, तो एक प्रयोजन के साथ बैठे हैं। शायद वो प्रयोजन हमको नहीं पता है, लेकिन देयर इज अ यूनिवर्सल अवेयरनेस, है ना। अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस की हम बात करते हैं, उस यूनिवर्सल अवेयरनेस को पता है कि मेरी विकास यात्रा कैसे होगी। सो दैट्स व्हाई मेरा जीवन एक तरीके से डिजाइन किया गया है, आपका अलग तरीके से किया गया है, इनका अलग तरीके से किया गया है, और एक ही सिचुएशन को मैं जैसे फील करता हूं, आप बिल्कुल अलग तरीके से फील करती हैं, ये बिल्कुल अलग तरीके से फील करती हैं। तो उम्मीद जो है, अगेन हम उम्मीद पे हम आते हैं, उम्मीद यही है कि सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हम अपने आप को पहले ठीक कर लें, सबसे बड़ी उम्मीद। जैसे ही हम उसको करना शुरू करेंगे, तो फिर हमको सोसाइटी में अपने आप ही जो है, मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट है,

0: तो या तो हम उसको आते समय बहुत अच्छा बोल रही थी हर्षा जी कि हम उसको स्टिग्मेटाइज कर लेते हैं ना, उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, लेकिन हाँ जज करते हैं क्योंकि, और जज क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी जज कर रहे हैं, हम भी अच्छे बुरे से अपने आप को जज कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जैसे ही हमने अपने आप को जज करना बंद कर दिया कि अच्छा या बुरा, और जीवन को जैसे आ रहा है वैसे जीना शुरू कर दिया अवेयरनेस के साथ, तो फिर उस व्यक्ति के लिए भी हम एक होप बन जाएंगे। लेकिन जब तक हमने अपने ऊपर काम नहीं किया है तब तक होप इज जस्ट अ वर्ड, उम्मीद जो है एक शब्द है।
1: चलिए एक श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। 4028085 है नंबर हमारा, और जितने भी श्रोता जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे हम मांग करेंगे कि आपके जो विचार है या आप जो कुछ जोड़ना चाहते हैं इसी विषय पर आधारित हो तो अच्छा होगा, धन्यवाद। और चलिए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार सुनी जी।
1: नमस्ते धनी जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और भाई जी जो बोल रहे हैं, और आपके मेहमानों को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। और वो अच्छी तरह से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा एक शब्द है
1: जी,
2: इसमें दिमाग और सोच की कोई जगह है यहाँ? भाई जी ने बोला कि हमारे शरीर ठीक है परंतु दिमाग भी इसमें, दिमाग की जगह है इसमें, दिमाग सोच और दिल। धन्यवाद।
1: धन्यवाद धनी जी। चलिए हम चाहे हम उत्तर हम नीरज जी से ही लेंगे।
0: जी जी बिल्कुल जी। जब हम शरीर की बात करते हैं और जब हम योग में शरीर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अंतःकरण की भी बात करते हैं, है ना? तो जब हम शरीर की बात कर रहे हैं तो एक तो हम जो बात कर रहे हैं एक ग्रॉस बॉडी की बात कर रहे हैं ना, कि जो कि दिख रहा है
1: जी।
0: लेकिन जैसे धनी जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है यह भी हमारे अंग हैं
1: जी,
0: है ना, ये हमारे पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे अलग हैं। अभी हम जैसे कि अभी हम सांस ले रहे हैं लेकिन हम देख तो नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही मन काम कर रहा है लेकिन मन को जानते नहीं है, कितनी अच्छी लेकिन है तो हमारे पार्ट ही है, इट्स पार्ट ऑफ अस। बुद्धि भी हमारा हमारे शरीर का एक अंग है। तो आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये जैसे ये ग्रॉस बॉडी है ऐसे ही सटल बॉडी है। चित्त मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी हमारा पार्ट है और सबके अपने अपने काम है। मन का काम मनन करना है, बुद्धि का काम विवेचन करना है, चित्त का काम चिंतन करना है, और अहंकार का भी अपना काम है। तो इसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये भी जो है, तो इसीलिए हर कुछ एक पार्ट है। मन है तो हम मनन कर पाएंगे, तो मन से हम क्या मनन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे जीवन में कोई घटना घट रही है, अभी उम्मीद की बात हो रही थी, और वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे शरीर में दुख फील हो रहा है ना, हमको फील हो रहा है, वी आर फीलिंग इट। मन तो एक सिर्फ करण है जिसके माध्यम से शरीर जो है फील कर रहा है, मतलब, और शरीर के अंदर मतलब एक चेतन सत्ता है, यू नो, जो फील कर रही है। लेकिन अब या तो हम ऐसा फील करते रहे कि ओ हम बहुत दुखी हैं, हम ही सबसे बुरे इंसान हैं, सबसे खराब हैं, या तो फिर उसी मन का एक सदुपयोग है, एक व्यापक उपयोग है अवेयरनेस के साथ है कि हमारे पास हर समय विचार की एक शक्ति है जिसके माध्यम से चीज तो वही है लेकिन उसकी दृष्टि हमने बदल दी। ये सिर्फ एक मानव के पास ही इसकी शक्ति है, किसी और जीव के पास, किसी योनि के पास नहीं है। और हर बार जब हम उसको अलग अलग दृष्टिकोण से, एक व्यापक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो वो चीज बदलती जा रही है और मेरा बॉडी जो है, माइंड और बॉडी का एक सिंक्रोनाइजेशन होता जा रहा है, और योग तो यही है।
1: यही है। चलिए एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। 4028085 है नंबर हमारा। हेलो, नमस्कार। इंदिरा जी आपका स्वागत है, बताइए आज के इस विषय पर आप क्या जोड़ना चाहती हैं?
3: मैं जिसे को सुनने में बहुत बहुत बहुत पसंद हुई हूँ, क्योंकि डॉक्टर जी और बहन जी ठीक ठीक जवाब दे रहे हैं
1: जी,
3: तो मैं सुनने को थैंक्स कह रही हूँ।
1: अच्छा जी,
3: ओके,
1: बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
1: ओके जी, चलिए अच्छा लगता है जब हमें इस बात का अनुभव होता है कि हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद तो कर रहे हैं, और यही हम उम्मीद करेंगे कि इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ पहुंचे, और कहीं ना कहीं मतलब कैसा होता है ना कि जो कुछ भी होता है

उसमें से कुछ अच्छा अगर हम निकाल कर अपने जीवन में उतार पाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अभी के लिए एक गाने के साथ कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: पहुंचना। उम्मीद का मतलब ये भी होता है कि अपनी समस्याओं में किस तरह से हम समाधान ढूंढ रहे हैं, किस तरह से अपने हालातों से ऊपर कर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभार अभी बातों बातों में हमारी प्रोड्यूसर शीतल जी ने एक बहुत अच्छी बात जोड़ी कि कभी कभार होता है कि जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन जब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं तो निराश हो जाते हैं। तो निराश न होना भी अपने आप में एक उम्मीद की बात होती है। और हमारे साथ हर्षा जी है, हर्षा जी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, हेल्थ और वेलबींग में अपना ये लोग काफ़ी योगदान देते हैं। तो अगर हम खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें जहाँ पर चैलेंजेस है, जहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है, जहाँ पर कभी कभार बहुत से लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स का भी सामना करना पड़ता है, बहुत से जो है बुरी आदतों का शिकार भी हम हो जाते हैं, तो ऐसे में उम्मीद कैसे लिए, किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल साबित होती
1: हम
0: है?
1: हम अपने इंटेंशन से जुड़े रहना चाहिए
0: जी,
1: पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने वायु से स्टिक रहना चाहिए। हम क्या हैं, वी डोंट लेट दिस सिचुएशन डिफाइन अस, यू सी। सो इसलिए हम कंस्टेंटली अपने आप पर काम करना चाहिए
0: जी।
1: जब आप अपने आप पर काम करते हैं तो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और आप जब मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो जैसे नीरज जी ने कहा कि सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट्स टू टेक प्लेस। तब कैसे सिंक्रोनाइजेशन काम करता है, मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब हम कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो जाती है, सो वी आर इजीली ड्रॉन टू थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर अस, वी आर अट्रैक्टेड टू थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर अस। या तो एडिक्शन को ब्रेक करती है, जैसे एक इंसान स्मोक करती है, अडिक्टेड टू ड्रग, अगर आप कंस्टेंटली कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो वो एडिक्शन को तोड़ता रोक सकते हैं। ओके, ये एक टूल है।
0: ओके,
1: या दैट यू कैन यूज यू नो टू फेस योर ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल।
0: ओके, और कॉन्शियस ब्रीदिंग की आपने बात की तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे जीवन का हिस्सा भी बन सकता है, सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही में नहीं, आई बिलीव हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो हम चाहेंगे कि कोई टेक्निक जो है आप हमारे जितने भी श्रोता और दर्शक जुड़े अगर उन्हें बता सकते, क्योंकि आजकल के हमारी लाइफ ऐसी हो गई कि हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है, जहाँ पर हम उम्मीद को सबसे पहले खो देते हैं, है ना, विश्वास को सबसे पहले खो देते हैं। तो कोई ऐसी बेसिक टेक्निक है, ब्रीदिंग हो गया या कोई ऐसे आसन हो गए या कोई ऐसी चीज हो गई जिसे हम रोज अपनी लाइफ में एज अ प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा डेडिकेशन बढ़े लाइफ की ओर, देखने का नजरिया बढ़े, कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हैं आप, हम जोड़ सकते हैं हमारे साथ? तो
1: हाँ, मैंने यम और नियम के बारे में बात की है और प्राणायामा के बारे में बात की है। अपनी I will refer to myself, right? क्योंकि मैं एक डिफ़िकल्टी में गुजर चुकी हूँ, और at the right moment I was introduced to pranayama.
0: Okay.
1: Yeah. Mm-hmm. And then I started practicing pranayama, and it was nearly for 2 years.
0: Okay.
1: And after 2 years I felt the difference.
0: जी.
1: तो जब मैंने ये difference महसूस की तो आत्मविश्वास बनने लगा
0: जी,
1: मोटिवेशन बनने लगा
0: जी,
1: और मेरे ऊपर जो चेंज आना शुरू हुआ तो बहुत पॉजिटिव था
0: जी।
1: तो इसलिए लोगों को एनकरेज करती हूँ कि ये प्राणायामा और कॉन्शियस ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए
0: जी।
1: अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा,
0: बिल्कुल,
1: तो मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए ये टूल्स जो हैं, जैसे अभ्यासिक आते हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए
0: जी। और अपने यम नियम की बात की हमने, अनुशासन डिसिप्लिन की बात की, कहीं ना कहीं जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं एक अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है ना, सुबह उठने का एक समय, रात में सोने का एक समय, खाने पीने का एक समय, ये सारी चीज़ें हमें जो है लाइफ में परफेक्ट पूरी तरह तो नहीं बनाती है, लेकिन एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो हमें लाइफ में बहुत आगे ले जाता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: नीरज जी,
2: मुझे लगता है कि मैं इसके लिए सबसे आखिरी इंसान हूँ इसके बारे में बोलने के लिए, जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है। मैं आते समय हर्षा जी को कह रहा था कि रात्रि में मैं जो है

चलिए आज की चर्चा ये प्रोग्राम एक बार फिर से हमारे सभी श्रोता और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उम्मीद अपने आप में सुनने में बड़ा छोटा लगता है शब्द, लेकिन अपने आप में बहुत ही गहरा महत्व है। उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि कुछ प्राप्त करना या कुछ हासिल करना या अपने लक्ष्य तक

0: ना कल 3 साढ़े 3 4 बजे सोया, इसलिए मेरी नींद नहीं खुल रही थी। तो जी बिल्कुल, मैंने भी सुना है, तो मैं सुनी सुनाई बात कह सकता हूँ,
1: ओके
0: लेकिन मेरे जीवन के अनुभव को मैं यहाँ पे नहीं कह सकता,
1: जी
0: क्योंकि ये बोलना जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उसके लिए एक तरह से आई एम चीटिंग ऑन देम, यू नो, मतलब तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता इस डिसिप्लिन की बात। हाँ, लेकिन मैंने देखा है लोगों को आसपास, मेरे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हर्षा जी हैं, ऐसे ही मेरे टीम में एक आला जी हैं जो यूक्रेन से हैं,
1: जी
0: जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जीती हैं।
1: जी
0: मेरे जीवन, मेरे आसपास में जो लोग जिनसे मैं
1: जी
0: घिरा
1: जी
0: हूँ,
1: हाँ
0: तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही अपने जीवन में डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन
1: का
0: में रहते
1: पालन
0: हैं,
1: करते हैं।
0: करते हैं।
1: चलिए एक और श्रोता है,
0: जी
1: उनसे हम मिलते हैं और देखते हैं लाइन पर कौन है। 4020808585 है नंबर हमारा। हेलो नमस्कार,
2: नमस्ते सुमित जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्ति जी आप
2: आपके
1: कैसे हैं?
2: मेहमान को भी, मैं ठीक हूँ, को भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार
2: जी, आप लोग उम्मीद के बारे में बात कर रहे हैं।
1: जी
2: मैंने हमेशा सुना है मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा।
1: जी बिल्कुल
2: तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है
1: जी
2: जीवन में।
1: जी
2: तो अगर ये ठान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: बहुत
1: स्वस्ति जी
2: धन्यवाद
1: आपके
2: आपका।
1: विचारों के लिए। बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा उम्मीदें ही हमें निराशा की ओर ले जाती है ना।
2: जी
1: एक कहावत है ना कि जितनी चादर हो पैर उतना ही फैलाना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक और बात है जो इसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि सपने तो आप बड़े बड़े देख ही सकते हैं, और अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो विश्वास है, तो उन सपनों को आप पूरा भी कर सकते हैं। मतलब कि देखने का नज़रिया दोनों तरफ से है, किस तरह से और किस तरह के आपके जीवन की जो आपकी फाउंडेशन है, आप किस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर उम्मीद अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, उम्मीद की अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने युवाओं की बात की, कॉर्पोरेट लेवल पर बात की, आजकल जैसे कि हमारे मॉरिशन समाज में हमारे जो है बड़े बुज़ुर्गों की संख्या ज़्यादा है। न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण बहुत से बड़े बुज़ुर्ग जो है अलग रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जीवन में एक अलग राह पकड़ लेते हैं। तो बड़े बुज़ुर्गों के बीच उम्मीद का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऐसा होता है कि बीमार पड़ने से एक व्यक्ति अपने आप में ऐसे ही निराशा में गिर जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो। और वहीं पर जब बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको निराशा ज़्यादा घेरती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, उनको क्या जो है बताना चाहेंगे?
0: बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि अभी मैं उस जीवन की उस जीवन के अनुभव में नहीं हूँ। फिर भी मेरे घर में भी मेरे बूढ़े माता पिता हैं जो अकेले रहते
1: जी
0: हैं, वो झारखंड में, भारत में रहते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर अभी जैसे मेरे पिता बीमार हो गए थे और मतलब उनके पैर से भी चलने में थोड़ी दिक्कत है और वो गाड़ी भी नहीं चलाते हैं,
1: जी जी
0: तो ऐसे समय में बड़ी मुश्किलात बढ़ जाती
1: बिल्कुल
0: है। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उनको फिर जब देखता हूँ तो चूंकि बहुत शुरू से मैंने देखा है कि वो हमारे जो अभ्यास और सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज से जुड़े हुए हैं,
1: जी
0: और हमेशा चाहे जीवन की किसी कैसी भी परिस्थिति हो, उसको वो अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। और उसमें जो है उन्होंने, हमारे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने एक स्वरवेद नामक एक सदग्रंथ की संरचना की है, उसका वो नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, नित्य प्रतिदिन, है ना, क्योंकि वो हमारे जीवन के उद्देश्य से हमको जोड़ता है ना। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, तो मान लीजिए कि ऊपर नीचे तो होता ही है जीवन में, है ना, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उनके जीवन में बहुत ऊपर नीचे होता है और अभी भी हो रहा है, बहुत बीमार चल रहे हैं, लेकिन तब भी जब एक चीज़ वो कहते हैं कि जब तक सांस है ना, तो अभी जब हम आशा की बात कर रहे हैं, तो जब तक सांस है तभी तक हमारे जीवन में हमारे विकास की, हमारे आध्यात्मिक विकास की, अब जो है जो कि जो एक तरह से बोला जाए कि आशा है,
1: उम्मीद कायम
0: उम्मीद
1: है
0: कायम है।
1: जी।
0: और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगेन, जैसे एक तो चीज़ हम बोलते हैं कि हमने कुछ प्राप्त किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सबका ना एक जीवन एक रूप से दिया गया है। तो मान लीजिए कि बुढ़ापे में भी अगर हमें किसी तरह के अनुभव मिल रहे हैं जो कि अच्छे नहीं है, मान लीजिए, या अच्छे भी हैं, तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारे अंदर एक अनुभव प्राप्त हो कि जब हम जवान थे, फॉर एग्जाम्पल,

0: जब हमारे शरीर में बल था तो हमें क्या करना चाहिए था, वो हमें बुढ़ापा बताता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी फिजूल का हो रहा है, हर कुछ एक प्रयोजन से, एक व्यापक प्रयोजन से हो रहा है ना। वो बुढ़ापे का कष्ट भी एक प्रयोजन से है कि कैसे, चूंकि हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, है ना, मतलब कर्म के अनुसार जन्म की बात करते हैं, तो फिर जब जन्म हमारा होगा तो आत्मा उस ज्ञान को कभी भूलेगी नहीं, उसके अंदर वो ज्ञान जो है स्थापित हो जाएगा कि अच्छा बुढ़ापा आता है और कष्ट होता है और उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अपॉर्चुनिटी तभी है जब मेरा शरीर स्वस्थ है ना, जब मेरा शरीर जवान है।
1: यानी कि हमें अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करना भी अपने आप में एक उम्मीद है
2: जी,
1: है ना। और कहीं ना कहीं हमारे जो है विचारों को बदलना, समय के साथ चीज़ें बदलती है, हम वहीं अटके रह जाएंगे जहां पर हम कुछ साल पहले थे तो शायद आज के जीवन में जीवन को जीना कठिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा बदलाव अच्छा होता है, लेकिन जो भी बदलाव हो वो सकारात्मक हो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है, है ना। तो चलिए, यहाँ पर आज की चर्चा, ये कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हाईली हम सबको इन्फ्लुएंस करती है, फिर चाहे हर उम्र के लोग क्यों ना हो। और कभी कभार सोशल मीडिया की चीज़ें कुछ हमें इस तरह से असर करती हैं, हम पर इम्पैक्ट करती हैं कि हम निराशा से घिर जाते हैं, जबकि वो शायद हमसे डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं है। तो किस तरह से इस वेब से हम अपने आप को निकाल पाए? I believe हर्षा जी इसका जवाब दे पाएंगे।
3: मीडिया से मैंने जैसे कि कॉन्शियस ब्रीथिंग में बात की है और जो मैंने एक्सपीरियंस की है और अल्लाह जी से सीखा है मैंने, और जब आप कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी बुरी आदतें
1: उस पर आप कंट्रोल पाते हैं।
3: जी बिल्कुल। तो जब मैंने शुरू की थी कॉन्शियस ब्रीथिंग, then I had a conversation with Allah and I told Allah, I've stopped scrolling in social media.
1: Okay.
3: Because your parasympathetic nerve is getting activated there. So that's why I stopped scrolling. Or aisi bhi buri aadatein meri jo which was within me, I started getting rid of it.
1: Okay.
3: gradually.
1: Mm-hmm.
3: So awareness logo ko ye sab batana
1: ji,
3: aware karna logo ko, aware karna ye bahut zaruri hai,
1: bilkul,
3: kyunki ye jo practice hai, ye conscious breathing hai, jo pranayama jo karte hain, is often overlooked. You see, and it is not taken into consideration. क्योंकि हम practice नहीं करते हैं, तो ये एक weapon है, एक tool है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बुरी आदतों से निकलने के लिए। तो इसे हम अपनी ज़िंदगी में apply करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए।
1: ओके, थैंक यू हर्षा जी। अभ्यास जो है कहीं ना कहीं काफ़ी जो है स्थानीय संस्थाओं के साथ जुड़कर काफ़ी सेंसिटाइजेशन प्रोग्रामों में भाग लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद डे के उपलक्ष्य में आपने जो कार्यक्रम किया, थोड़ी देर पहले आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े जो बच्चे हैं, जो थोड़े से जो है उनके साथ किस तरह से अपने कार्य किया और किस तरह से उनके लिए जो है ये उम्मीद दिवस सकारात्मक साबित हुआ, हम चाहेंगे थोड़ा सा उदाहरण देकर आप इस पर बात करें, क्योंकि आजकल बच्चों में उम्मीद जगाना बहुत ज़रूरी है।
0: जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर निराशा माता पिता में है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा बच्चों में।
1: बिल्कुल।
0: तो कहीं ना कहीं जब हम वो सिर्फ एक मिरर है
1: जी।
0: जो हमारा जीवन है, जैसा मान लीजिए कि मैं पिता हूँ और मेरे जीवन में एक निराशा है, तो वो मेरा बच्चा जो है मिरर है सिर्फ उसका, वो सिर्फ हमको रिफ्लेक्ट, वो हमको बता रहा है कि देखिए पिताजी आपका जीवन ऐसा है। अगर वो निराशा में जा रहा है तो वो ये नहीं बता रहा है कि मैं निराश हूँ, वो बता रहा है कि आप ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसा हूँ, है ना। एक तो एक पहलू वो है। तो और हाँ, अभ्यास जो है, हमारे इंस्ट्रक्टर हैं रूमी घोष और इश्मीत हैं और निवेदित

0: अनीता हैं, रिचर्ड हैं, सभी लोग जाते हैं स्पेशल नीड्स स्कूल में. ADSP है, चिल्ड्रन फाउंडेशन है जिनके साथ हम काम करते हैं, ट्रॉशेटिया करके एक स्कूल है रोज हिल में, वहाँ पे भी हम जाते हैं. इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ जो है, मतलब जो जेल प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, तो ओपन जेल है उसमें विमेन जेल है और मेन जेल है उसमें रूमी और रिचर्ड जो है रेगुलर सेशंस लेते हैं और उससे बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव उन पे भी पड़ रहा है. उनके जीवन में जो है वो एक उम्मीद की किरण जो है, मान लीजिए कि मैंने जीवन में, जैसे कि बच्चों की बात हो रही थी, तो बच्चों के लिए तो है ही कि जब वो बहुत कम उम्र में मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ जाते हैं जो उनको एक सकारात्मक जीवन की तरफ, एक जीवन जहाँ पर आशाएं हैं, और आशाएं जो हैं वो ज्ञान के साथ हैं, आशाएं जो हैं वो अज्ञानता के साथ नहीं है, है ना. तो हमारी जो शुरू में बात हुई थी कि आशा जो है वो ज्ञान के साथ है और आशा जो है एक अज्ञानता के साथ भी है, और उस अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है, और उसकी भी मतलब, और मैं ये नहीं कहूँगा और वो सीमा नहीं है, हो सकता है कि मैं एक हीनियस क्राइम को कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से, जब तक जीवन है मुझे फिर से जीव उठने की उम्मीद है. तो अगर कोई जेल में पहुंच भी गया, उसने कुछ कर भी दिया,
1: तो इससे उम्मीद नहीं करना चाहिए,
0: तो फिर से उसको उठने की उम्मीद है. और योग जो है उसको फिर से वो उम्मीद देता है.
2: बिल्कुल. और कहीं ना कहीं ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए. जैसे आपने जजमेंट की बात की, हम आसानी से लोगों को आजकल जज करते हैं, है ना? और सुनी सुनी बातों पर ज़्यादा हम गौर करते हैं, जबकि मेरा और आपका जो पर्सनल रिश्ता है वो दिखाता है कि मेरा आपके प्रति क्या विचार है, मेरे आपके प्रति क्या भाव है. हम औरों की बातें सुनकर कभी कभार हम अपने रिश्तों को बिगाड़ देते हैं. जैसे आपने जेल की बात की, जैसे कि भले ही उन्होंने कोई बुरा काम किया है, लेकिन एक अवसर उन्हें भी मिलना चाहिए अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का. तो कहीं ना कहीं उम्मीद इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. और देखते ही देखते हमारे कार्यक्रम का जो समय है ये भी समाप्त होने को चला. ये एक ऐसा विषय है, शायद एक प्रोग्राम में इसे समाप्त करना मुश्किल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीवन के समान है ना, जीवन से जुड़ा है. जितनी बातें होंगी उम्मीद उसके साथ जुड़ते जाएगी. तो हर्षा जी, आज के इस विषय को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे?
3: Stigmatize people and all. Yoga, what is really yoga? Is like aap apni mind aur yog apni mind aur body se ko control karna chahte hai. To asanas kyun karte hai? Agar aap asanas karte hai to aap apni body par control rakh paate hai. To जब आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल रख पाते हैं तो अपनी माइंड पर
2: रख पाते हैं.
3: तो इसलिए जब आसनास करते हैं तो मीनिंगफुली करना चाहिए. आसनास इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस, यस, देयर इज समथिंग डीपर टू इट. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू एसेंस ऑफ योग. एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी कैन हैव कंट्रोल ऑन आवर माइंड. तो ये मेरी मैसेज है.
2: बहुत धन्यवाद हर्षा जी. नीरज जी, जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता और दर्शकों को जो इस समय हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं?
0: मैंने तो बहुत कुछ बोलता ही रहा आज, और हर्षा जी ने अपने जीवन में उसको उतारा है. अभ्यास, जो आपने एक बात कही थी बुजुर्गों को लेके भी, तो अभ्यास जो है वो योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से भी. हमारा एक ऋषि लोग, एक हमारे पूरे सिस्टम का एक पार्ट है ऋषि लोग जो है, जो आयुर्वेद की बात करता है. हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका नाम जो है डॉक्टर रघु है. और वो आए भी हैं MBC में, कभी कभी आते भी हैं. और तो मैं कह सकता, मैं ये कहना चाहूँगा बुज़ुर्गों के लिए खासकर कि, और सभी लोग जुड़े, ऐसे तो बुज़ुर्ग भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ूँ, बच्चे भी जुड़े हैं. योग और आयुर्वेद दोनों से हम जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन जो है, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो वो कहीं ना कहीं हम उस पर एक मतलब उसको स्टेबलाइज कर पाएंगे योग और आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि दोनों अभिन्न अंग हैं. क्योंकि योग और आयुर्वेद जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीवन की हर एक अंग जो है, चाहे वो भोजन है, चाहे हम कैसे वॉक कर रहे हैं, सब जो है योग और आयुर्वेद का पार्ट है. तो अगर हम उसको अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारे

0: बुजुर्ग भी स्वस्थ हो जाएंगे और मेरा जीवन भी आगे चल के अच्छा होगा और जो हमारे बच्चे हैं उनका जीवन भी अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, तो चलिए
2: पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, अपने परिवार और दोस्तों से बात करना चाहिए और छोटी लक्ष्य बनाना चाहिए और वी शुड ट्राई न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ।
1: बिल्कुल,
2: दिस इज द वे फॉरवर्ड।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी और नीरज जी, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। और अंत में यही हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस जो है ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में उम्मीद कितनी ज़रूरी है। जीवन में किसी भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उम्मीद रखते हैं तो आपकी आधी परेशानियाँ वहीं समाप्त हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर आपको अपनी सभी समस्याओं का हल मिलने लगता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे अभ्यास को, जिनसे जुड़कर हमें आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला और जो है आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और आज के इस विषय पर इतनी सारी जानकारियाँ दी। आशा करते हैं जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े आज के इस कार्यक्रम से आपने भी लाभ उठाया होगा। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को, प्रोड्यूसर हमारी शीतल जी आपको धन्यवाद, हमारे कादे और उरुषा का भी सहयोग मिला, आप दोनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी और बस अपनी उम्मीद को मत खोने दीजिए, उम्मीद को बनाए रखिए और देखिए जीवन में किस तरह से जो है सब कुछ अच्छा होने लगता है। नमस्कार आप सभी को, शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 10 बजे है। आइए जुड़ते हैं 10 बजे के समाचारों के साथ।
2: विकास श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। आज फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और उत्सवों से आगे बढ़कर फ्रांस आज भी अनेक मॉरिशनों के लिए अवसरों की धरती बना हुआ है। पढ़ाई, करियर या विवाह के बाद फ्रांस का रुख करने वाले कई मॉरिशन आज वहाँ अपनी नई पहचान और जीवन शैली बना चुके हैं। इसके बावजूद उनका अपनी मातृभूमि मॉरिशस से गहरा भावनात्मक जुड़ाव आज भी बरकरार है। उनकी जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि फ्रांस ने उन्हें रेस्टोरेंट व्यवसाय

0: संस्कृति, मीडिया और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने और नई संभावनाओं को साकार करने का अवसर दिया है। मॉरिशस की राष्ट्रसभा के बारे में बात करें, आज मंगलवार सुबह 11:30 बजे राष्ट्रसभा के कार्य शुरू हो रहे हैं। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किए जाएंगे। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूटकेस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके दौरान सांसद अरविंद बाबाजी एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच से जुड़ा सवाल उठाकर सत्र की शुरुआत करेंगे। और मॉरिशस की संसद में आज मंगलवार के सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता देते हैं कि सांसद जोआना बेरांजे ऊर्जा मंत्री पत्रिक सियावादेन से सरकार की जल सुरक्षा रणनीति के बारे में जानकारी मांगेंगी। वह ये जानना चाहेंगी कि क्या समुद्री जल के डिसलिनाइजेशन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर जल वितरण नेटवर्क में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसी सत्र के से जुड़े एक अन्य सवाल में मंत्री से जनवरी 2025 से अब तक सामने आए अवैध पानी कनेक्शनों की जानकारी मांगी जाएगी। सांसद कुशल लुबिन और अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई और वसूले गए जुर्माने से प्राप्त आय का विवरण जानना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सरकार महिला आरक्षण की समय सीमा को वर्ष 2029 तक आगे बढ़ाने से संबंधित नए संविधान संशोधन विधेयक के साथ साथ लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए डिलिमिटेशन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। ये दोनों विधेयक अप्रैल में आयोजित विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पारित नहीं हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार सरकार आगामी मानसून सत्र में ये संविधान संशोधन विधेयक तभी पेश करेगी जब उसे इसके पारित होने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत का पूरा भरोसा होगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे अभी शोक समाचार। रायरुड़ पुत्रदो विलाज में 82 साल के 82 years old के श्री मोहनलाल दीनू जिन्हें मोहनलाल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी चंद्रिका दीनू के घर पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: भक्ति धारा कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। ये कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर प्रसारित हो रहा है। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे और इस यात्रा में भक्तिमय भजनों के साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हम प्राप्त करेंगे वेद सुधा कार्यक्रम के माध्यम से। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुदेश बद्री जी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का गणेश भजन द्वारा।

किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले जब हम भगवान श्री गणेश का नाम ले लेते हैं तो सभी कार्य बहुत ही

सुंदर रूप से समाप्त होते हैं। और चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, हमारे पास इस जीवन में सबसे बड़ा धन क्या हो सकता है? हमारे द्वारा कमाया हुआ धन, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये धन हमारे प्राणों की रक्षा तो कभी नहीं करने वाला। सबसे बड़ा धन हमारा शरीर और हमारा स्वस्थ मन है। शरीर बाहर और भीतर दोनों ही से मजबूत होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, और हमारा जो मन है वो पूरी तरह से शांत होना चाहिए। बलिष्ठ शरीर और शांत मन को ही हम आदि योगी शिव की पहचान मानते हैं। ऐसा शरीर और मन पा लेने पर पैसे या धन और नाम कमाने जैसी कोई वस्तु कि किसी को चिंता करने की फिर आवश्यकता ही नहीं होती। आज के समय में अगर आपका शरीर और आपका मन स्वस्थ है तो सभी रूप से आप सबसे अधिक धनी हैं।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक मधुर भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ से। ओम शंपदम अघम रईषिणे न काम व्रतो हिनोति न स्पृश्द्रयिम्। जो उपासक मोक्षरूप दिव्य आनंद की अभिलाषा रखते हैं उन्हें चाहिए कि वे व्रती बने, उसको पाने के लिए दृढ़ संकल्प वाले बने। यदि वे ऐसे नहीं बनेंगे तो ब्रह्म को पाना तो दूर की बात रही, वे तो उसका ज्ञान की दृष्टि से स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे। ओम अयावाजम देवहितम सनेमा मदेम शमत्थिमा आसुवीराः। उपासकों को चाहिए कि वे अपने उत्तम आचरण और स्तवन द्वारा परम देव परमात्मा से जो अन्न मिले, अन्न से जो बल मिले, उस बल पर संयम करने से जो वेग और ओज मिले, वे उससे आदर्श उत्तम संतानों वाले होकर दीर्घ आयु को प्राप्त कर आनंद से रहें। ओम स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधारया इंद्राय पातवे सुतः। हे भक्ति रूपी सोमरस, आप इस उपासक की रक्षा के लिए तैयार किया गया है, अतः तू अत्यंत स्वादिष्ट और मदिष्ट पावन धारा के रूप में प्रवाहित होता हुआ मुझ उपासक को पवित्र कर। ओम यस्ते मदो वरण्यस्तेना पवस्वान्धसा देवा वीरघसंहसा। प्रभु भक्ति का रस अत्यंत वर्णीय होता है, वह हमारे हृदय में दिव्य भावनाओं का जनक होता है, दिव्य भावनाओं का रक्षक होता है, दिव्य भावनाओं को खूब बढ़ाने वाला होता है, दिव्य भावनाओं को चहुं ओर से चमकाने वाला होता है, उनको अभिव्याप्त करने वाला होता है, पापों को भस्म कर देने वाला होता है। ऐसे महान जगदीश्वर की उपासना कीजिए। ओम शांति शांति शांति।

स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। श्रोताओ, वैदिक वाङ्मय संपूर्ण मानव सभ्यता का आदि ज्ञान है। वेदों में वर्णित प्रत्येक मंत्र केवल किसी धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा पद्धति का अंग नहीं है, अपितु वह जीवन दर्शन, ब्रह्म विद्या, विज्ञान, नैतिकता तथा मानव कल्याण का शाश्वत संदेश है। वेदों का प्रत्येक मंत्र मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप, उसके कर्तव्यों तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का बोध कराता है। पठित मंत्र भी ऐसा ही एक अत्यंत गंभीर दार्शनिक मंत्र है, जिसमें परमात्मा के स्वरूप, उसके गुणों तथा जीवात्मा के साथ उसके संबंध का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। श्रोताओं, मंत्र में परमात्मा को बंधु, जनिता तथा विधाता कहा गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि वही समस्त लोकों, समस्त धामों तथा संपूर्ण सृष्टि का पूर्ण ज्ञान रखने वाला है। जहाँ सत्य, अमृतत्व और दिव्यता का प्रकाश विद्यमान है, वहीं आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। यह मंत्र मनुष्य को ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आत्मविश्वास, कर्तव्य

परायणता, नैतिक जीवन तथा सार्वभौमिक बंधुत्व की प्रेरणा प्रदान करता है। श्रोतागण, वेदों में ईश्वर को किसी विशेष संप्रदाय अथवा राष्ट्र का देवता नहीं माना गया, अपितु संपूर्ण सृष्टि का नियंता, पालक तथा उपकारी बताया गया है। यही कारण है कि वैदिक धर्म संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानता है। इस मंत्र का प्रथम शब्द सह इसी सार्वभौमिक परमात्मा की ओर संकेत करता है। मंत्र का आरंभ स नो बंधु से होता है। यहाँ बंधु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य अर्थ में बंधु वह होता है जो सुख दुख के साथ दे, संकट में सहायता करे तथा बिना किसी स्वार्थ के हित चाहे। संसार के अधिकांश संबंध परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। माता पिता, मित्र, संबंधी अथवा समाज किसी सीमा तक मनुष्य की सहायता कर सकते हैं, किंतु परमात्मा का संबंध प्रत्येक जीव के नित्य एवं अविनाशी है। वही जन्म से पूर्व भी जीव का हितैषी है, जीवन भर उसका संरक्षक है तथा मृत्यु के उपरांत भी कर्मानुसार न्याय करने वाला होता है। श्रोताओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने वेद भाष्य में परमात्मा को समस्त जीवों का परम हितैषी बताया है। ईश्वर किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, वह सबको समान रूप से वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, बुद्धि तथा कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यही वास्तविक बंधुत्व है। आज के युग में मनुष्य अत्यधिक अकेलापन, मानसिक तनाव तथा असुरक्षा का अनुभव करता है। अनेक लोग धन, पद अथवा संबंधों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, किंतु जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही संबंध टूट जाते हैं। वैदिक दृष्टि कहती है कि यदि मनुष्य परमात्मा को अपना वास्तविक बंधु मान ले तो उसके भीतर अद्भुत आत्मबल उत्पन्न होता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। श्रोताओं, इसके पश्चात मंत्र में परमात्मा को जनिता कहा गया है। जनिता अर्थात उत्पन्न करने वाला। वैदिक सिद्धांत के अनुसार परमात्मा संपूर्ण जगत का निमित्त कारण है। वही अपनी सर्वज्ञ शक्ति से प्रकृति को व्यवस्थित करके सृष्टि की रचना करता है। जीवात्माएं नित्य हैं, प्रकृति भी अनादि है तथा परमात्मा भी अनादि है, किंतु सृष्टि की रचना, व्यवस्था एवं संचालन परमात्मा के द्वारा होता है। यजुर्वेद में कहा गया है सपर्यगा छुक्र मकायम व्रणम, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, निराकार तथा पूर्ण पवित्र है। वही संपूर्ण सृष्टि का नियंता है। श्रोताओं, यहां समझना चाहिए कि वैदिक दर्शन में परमात्मा संसार का निर्माता है, किंतु वह स्वयं कभी जन्म नहीं लेता। वह अपने शाश्वत नियमों द्वारा संपूर्ण जगत का संचालन करता है। यही वैदिक सिद्धांत है। मंत्र का अगला शब्द विधाता है। यह शब्द केवल सृष्टिकर्ता का ही बोध नहीं कराता, बल्कि उस परम सत्ता की ओर संकेत करता है जो संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को नियम पूर्वक संचालित करती है। यदि सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, यदि ऋतुएं नियमित रूप से आती हैं, यदि ग्रह नक्षत्र निश्चित गति से चलते हैं, यदि प्रकृति के नियम स्थिर हैं, तो यह सब किसी असीम बुद्धिमत्ता के कारण संभव है। वही परमात्मा विधाता है। आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अत्यंत सूक्ष्म नियमों पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊर्जा, जीव विज्ञान तथा गणितीय नियमों की अद्भुत व्यवस्था इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि सृष्टि अराजक नहीं अपितु सुव्यवस्थित है। वेद हजारों वर्ष पूर्व इसी सत्य की घोषणा कर

कहते हैं। धामानि वेद भुवनानि, यह मंत्र का अत्यंत दार्शनिक भाग है। इसका तात्पर्य कि परमात्मा समस्त धामों अर्थात अस्तित्व के सभी स्तरों तथा संपूर्ण लोकों का पूर्ण ज्ञान रखता है। उसके लिए कोई वस्तु अज्ञात नहीं है। श्रोताओं,

उसका ज्ञान नित्य स्वतः सिद्ध एवं अनंत है। श्रोताओं, मनुष्य का ज्ञान सीमित है। आज जो वैज्ञानिक सत्य माना जाता है वह कल संशोधित हो सकता है, किंतु परमात्मा का ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता। यही कारण है कि वेदों को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है। मंत्र का अगला भाग कहते हैं, यत्र देवा अमृतमान शानाः। वैदिक साहित्य में देव शब्द का अर्थ सदैव प्रकाशमान, विद्वान, गुणवान अथवा दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति होता है। इसका अर्थ किसी अलौकिक देवता से नहीं है, जो सत्य, ज्ञान, तप, यज्ञ, सेवा तथा सदाचार से युक्त है, वही देव है। ऐसे महान ऋषि, विद्वान तथा श्रेष्ठ पुरुष अमृत का आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ अमृत का अर्थ किसी द्रव्य विशेष से नहीं है। अमृत का तात्पर्य है आध्यात्मिक आनंद, सत्य ज्ञान तथा मोक्ष की दिशा में अग्रसर जीवन। जो मनुष्य सत्य, धर्म और वेद मार्ग का अनुसरण करता है वह जीवन में स्थायी सुख प्राप्त करता है, यही अमृत है। श्रोताओ, मंत्र में तृतीये धामन शब्द अत्यंत गूढ़ है। वैदिक व्याख्या के अनुसार इसका संकेत परमात्मा के दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना अथवा उस उच्च आध्यात्मिक अवस्था की ओर है जहां जीव सत्य का साक्षात्कार करता है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की उच्च अवस्था है। श्रोताओ, मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त करना नहीं है। यदि धन, पद, प्रतिष्ठा और वैभव ही जीवन की सफलता के मापदंड होते तो संसार के सभी संपन्न व्यक्ति पूर्णतः सुखी और संतुष्ट होते। तो मंत्र का अगला भाग कहते हैं, तृतीय धामन शब्द अर्थात अत्यंत गंभीर दार्शनिक अर्थ को प्रकट करता है। श्रोतागण, इस मंत्र में वेदों का आदर्श केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं बताया गया है बल्कि समस्त विश्व का कल्याण बताया गया है। इसीलिए ऋग्वेद में संगच्छध्वम संवदध्वम तथा यजुर्वेद में मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम जैसे मंत्र संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम, सहयोग और समानता का संदेश देते हैं, पठित मंत्र भी उसी सार्वभौमिक बंधुत्व की घोषणा करता है कि परमात्मा सभी का समान बंधु है। इसलिए मनुष्य को भी समस्त मानवता के साथ बंधुत्व का व्यवहार करना चाहिए। अंततः कहा जा सकता है कि यह मंत्र वैदिक दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें परमात्मा के बंधुत्व, सृष्टि, कर्तृत्व, सर्वज्ञता तथा विश्व व्यवस्था के सिद्धांत का अत्यंत गंभीर प्रतिपादन किया गया है। यह मनुष्य को आत्मिक उन्नति, नैतिक जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक आदर्श, राष्ट्रीय चरित्र तथा विश्व बंधुत्व की प्रेरणा प्रदान करता है। इसका अध्ययन केवल आध्यात्मिक साधना के लिए ही नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षा, नैतिक विकास, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण तथा वैश्विक शांति के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इसलिए यह मंत्र केवल वैदिक युग की धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करता है वह स्वयं भी उन्नति करता है और समाज को भी उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। यही इस मंत्र का शाश्वत संदेश है। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी।
इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्रीमती अंजू जी का विशेष धन्यवाद है।

0: आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

श्रोताओं, जीवन में हमें भगवत गीता जीवन के जीने का उद्देश्य देती है। जो आपको समझे उसे कभी जाने मत दो, जो आपको ना समझे उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करो। ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। कहते हैं समय सभी को बदल देता है, और इसीलिए किसी पर अधिक घमंड ना करें और स्वयं को कभी कम ना समझें। शांत रहना बहुत ही आवश्यक है। जीवन में धैर्य धारण करें। आइए, मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान का गुणगान करते हैं।

श्रोताओं, हम सदा ईश्वर के सामने नतमस्तक तो होते हैं, पर सदा कुछ ना कुछ मांगने की आशा से, कुछ ना कुछ उनसे हम आस लगाए बैठते हैं। अगर आशीर्वाद मांगना ही है तो सदा इस बात के आशीर्वाद लें ईश्वर से कि हमारा मन सदा साफ रहे, विचार हमारे सदा उच्च रहें और जीवन में कोई भी हमें जीवन में जो भी परिस्थिति आए, बस वे सदा हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सही राह दिखाए, सही समय पर सही निर्णय लेने का हमें बल दे, हमें हिम्मत दे, हमें ज्ञान दे। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे आज के हनुमान चालीसा के साथ। और भगवान श्री हनुमान बल बुद्धि के देवता हैं, तो सभी का कल्याण हो, इन्हीं शुभकामनाएं के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर हम विराम देंगे। पुनः भेंट करेंगे आपसे दोपहर के 2 बजे रेडियो मनोरंजन पर। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: चलिए वक्त ने इशारा कर दिया है कि हम बड़े अब संक्षिप्त समाचारों की ओर। 14th of July, Tuesday का दिन, टाइम चेक एग्जैक्टली 11 AM। मिलते हैं अश्विता से, जानते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट, संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले के मौके पर उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया है। पोर्ट लुइस की सड़कों पर मॉरिशस के समर्थकों और पर्यटकों ने इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का पूरे जुनून के साथ आनंद लिया। खुशी, निराशा और जीत को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग रही। कुछ लोगों ने स्पेन की जीत का स्वागत किया है, जबकि कुछ अन्य चाहते हैं कि फ्रांस फाइनल में अपनी जगह बनाए। तो देखेंगे कि फाइनल में जो दो दिग्गज पहुंचेंगे वो कौन सी टीमें होंगी। अन्य खबरों में, मेबग में एक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस दल रॉयल रोड मेबग के एक मकान पहुंचा, जहां 47 वर्षीय वासुदेव ओकाराज कमरे में बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े मिले। उनकी सांस नहीं चल रही थी, नाड़ी नहीं थी और शरीर ठंडा पड़ चुका था। मौके पर CPR का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई सचिदानंद ओकाजा ने आरोप लगाया कि उनके दूसरे भाई अश्विन ओकाजा ने लकड़ी से हमला किया था। सूचना मिलने पर सामूहिक चिकित्सकीय टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बाद में मेबग CID की टीम ने आरोपी अश्विन ओकाजा को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जाँच जारी है। आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक

0: सिख बस्ती किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कई समझौतों और पहलों के माध्यम से संचालित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र शामिल है। पिछले वर्ष फ्रांस मॉरिशस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक और पांचवा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। इसके अलावा 200 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां मॉरिशस में स्थापित हैं। वहीं फ्रांस मॉरिशस में आने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत भी है, जहां कुल पर्यटक आगमन उसका हिस्सा लगभग 25% है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्सवैगन ग्रुप समूह ने पुष्टि की है कि वह लागत में कटौती के तहत 1,00,000 तक नौकरियां समाप्त करने की योजना पर विचार कर रही है। ये संख्या पहले घोषित 50,000 नौकरियों की तुलना में दुगनी है। वोल्सवैगन ग्रुप, जिसमें पोर्श, ऑडी, स्कोडा और VW ब्रांड शामिल हैं, ने इससे पहले वर्ष 2030 तक जर्मनी में लगभग 50,000 पद समाप्त करने की योजना की घोषणा की थी। कंपनी को पिछले वर्ष मुनाफे में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। इसकी प्रमुख वजह प्रमुख बाजारों में बिक्री में कमी और यूरोपीय बाजार में चीनी वाहन कंपनियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा बताई जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रायरोड सर्जरियन दुद्मो में 73 साल की 73 years old की श्रीमती आनंदी रामा, श्रीमती आनंदी रामा पैदाश्राम रामा और जिन्हें मीरा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके पति जानू रामा के घर सर्जरियन दुद्मो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉनिमास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। रेलवे रोड लॉन्ग माउंटेन में 56 साल की 56 years old की श्रीमती दुलारी जिलाल पैदाश्रम नंदन और जिन्हें बेबी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 उनके पति चेंद्रादित्य जिलाल के घर लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बे शोक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ट्यूटियर 3:30 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 11:04 हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर आइए नजर डालते हैं। मोबलॉन शामुनी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल मंगलवार 15 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी और गियोंबेल सुरीनाम और साथ ही साथ मौसल मौदन पथ सेंट लीस स्वयं गियोंबेल के निवासियों को भी सूचित किया जाता है कि गुरुवार 16 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्तियाँ जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम उर्दू भाषा में पेशकश रहेगी सैयदा सुबाई की।
3: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन बातों पर, जी हाँ, जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मिट्टी तले सो जाते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ले खुदा खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू

नशरियात शम्मे फरोज़ान रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक हम्द नातु सलाम और आपके पैगामात। ताख़ीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह तौहा की तिलावत से। आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

0: इफ्तरा।
1: तो फिरौन लौट गया और अपने सामान जमा करके फिर आया। मूसा ने उन जादूगरों से कहा कि ये तुम्हारी बर्बादी होगी, अल्लाह पर झूठ न बांधो, वो तुम्हें अजाब से फना कर देगा, और जिसने झूठ बांधा वो नामुराद।

तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने और चुपके चुपके सरगोशी करने लगे। कहने लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को नाबूद कर दें। तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कितार बांध कराओ। आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ।

जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो यकायक उनकी रस्सियां और लाठियां मूसा के ख्याल में ऐसी आने लगीं कि वो मैदान में इधर उधर दौड़ रही हैं। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा, खौफ न करो, बिला शुबा तुम ही गालिब रहोगे, और जो चीज यानी लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो कि जो कुछ उन्होंने बनाया है उसको वो निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों के हथकंडे हैं, और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं होगा।

इस पर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन बोला कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए, बेशक ये तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो मैं तुम्हारे हाथ

और पांव मुखालिफ समत से कटवा दूंगा और तुमको खजूरों के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा और तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है।

उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को मुआफ करे और उसे भी जो आपने हमसे जबरदस्ती जादू कराया, और अल्लाह सबसे अच्छा है और हमेशा बाकी रहने वाला है।

0: जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न वो मरेगा न जिएगा, और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं हमेशा उनमें रहेंगे, और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ।
1: वला

और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए समंदर में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको न फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा और न गर्क होने का डर।

फिर फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका ताकुब किया तो समंदर की मौजों ने उन पर चढ़कर उन्हें ढांक लिया यानी डुबो दिया, और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न डाला।

ऐ आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे तूर की दाहिनी जानिब मुकर्रर की और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया।

और हुक्म दिया कि जो पाकीजा चीजें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और उसमें हद से ना निकलना, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो हलाक हो गया। और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल

वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपसे वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन हम उन लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया। तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी एक बेजान जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। तो क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है।

और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगो, इसके जरिए तुम्हें फितने में डाल दिया गया है, और तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान ही है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए, हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे।

0: मौज़ सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:28 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, जुलाई की 14 तारीख है और इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की आज 28 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251700005। जी हाँ, 5251700005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي علي صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه بارك وسلم عزيزان محترم پچھلے دو بیانات آپ نے صبر کے تعلق سے سماعت فرمایا قرآن حکیم نے پہلے صبر کے لیے حکم دیا कि उसके ज़रिए मदद चाहो इस्तईनु बिस्सब्र व सलात और दूसरा हुक्म नमाज नमाज के ज़रिए अल्लाह से इस्तआनत यानी मदद चाहो। दुनिया का बेहतरीन एक फार्मूला है कि इंसान अगर इंसान से मदद चाहता है तो उसके पास जाता है, उसकी तारीफ़ और उसकी तौसीफ़ बयान करता है, खूबियां बयान करता है, उस इंसान का दिल नरम हो जाता है, फिर वो अपना मुद्दा बयान करता है। जैसे फ़कीर किसी के दरवाज़े पर आता है तो फौरन नहीं कहता मुझे रोटी दो या मुझे कुछ दो, अल्लाह तुम्हारे घर को सलामत रखे, तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। जो नहायत महज़्ज़ब फ़कीर होता है, अल्लाह ताला अपने नबी का सदक़ा, नबी के आल, नबी के असहाब का सदक़ा,

वो दुआएं देता रहता है और साहिब मकान का दिल उधर पिघलता रहता है। वो तारीफ करता रहता है इतने में कि ला के उसकी झोली में कुछ डाल दिया जाता है। पहले चाहे 2 रुपया देने की नियत रही हो, लेकिन जब आपने सुना कि आपके बाल बच्चों की तारीफ़ो तौसीफ़ कर रहा है, उनकी हिफाजत की दुआ अल्लाह से कर रहा है,

अरे इनाम तो लेकर जाओ। क्या तुम अपनी कंपनी में काम करने के बाद फौरन भाग लेते हो, अपना इनाम नहीं लोगे? तो इनाम क्या है, हाथ उठा के रब से सवाल करो। बहुत जल्दी अगर तुम्हें निकलना है कि काम में देरी ना हो जाए, तो एक जामे दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरत हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। कम अज़ कम ये दुआ तो पढ़ लिया करो दीन और दुनिया की भलाई के लिए। लेकिन जब भी तुमने काम करोगे तो वहाँ शैतान ज़रूर दखल डालेगा। चलो इसने नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन रब से मांगने नहीं दूंगा, इसको उठा दूंगा, चलो निकलो जल्दी से। तो मोमिनो, नमाज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इबादत है कि नमाज के ज़रिए अल्लाह से क़ुर्ब हासिल होता है। और किसी अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, नमाज में बंदा अल्लाह से बात करता है, बंदा अल्लाह से बात करता है, नहीं बंदा अल्लाह से बात करता है। और जब कुरान पढ़ते हो तो रब अल्लाह तबारक तआला बंदे से बात करता है। अल्लाहु अकबर। यानी तुम रब से बात करना है तो नमाज पढ़ो, रब तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। ये दोनों चीज़ें हमें अंबिया अकराम की ज़िंदगी, बिलखसूस सैयदुल मुरसलीन सल्लम की ज़िंदगी से मिल रही हैं। और यही नमाज का पैगाम आप असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले बैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी देखें। यही वो नमाज है जो करबला की सरज़मीन पर इमाम अली मकाम ने नहीं छोड़ी। यही वो नमाज है जो हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा की नमाज असर क़ज़ा होने वाली थी, नमाज की मोहब्बत में आंसू टपके तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लम ने डूबे हुए सूरज को वापस लाया और कहा है सूरज वापस आ। तारीख़ ये न लिखे कि मोहब्बत रसूल में नमाज क़ज़ा करना अली की सुन्नत है। मोहब्बत रसूल भी बरकरार है और मोहब्बत नमाज भी। और जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तारीख़ के औराक, हिस्ट्री इस बात पर शाहिद है, गवाह है, करबला की सरज़मीन पर इमाम अली मकाम की कोई नमाज नहीं कसा। अहले बैत तहार का तिलावत कुरान नहीं कसा, ज़िक्र अज़कार नहीं कसा, और दुआएं उनकी नहीं कसा हैं। जब उनकी दुआएं नहीं कसा हैं, नमाज नहीं कसा हैं, मालिक व मौला या रब क्या तेरा बेहतरीन फ़ैसला है कि वो भूखे प्यासे रहकर नमाज को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ने उनका ज़िक्र नमाज के अंदर ही रख दिया। यानी दरूद इब्राहीम में उनका अहले बैत का ज़िक्र मौजूद है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, नमाज इमाम अली मकाम 72 ज़ख्म खाने के बाद भी नमाज को नहीं छोड़ा, सर सजदे में रखा। अब कुछ ना आक़िबत अंदेश, कुछ आलिम मुफ्ती का लिबास पहनकर वो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में नमाज पढ़ी, जिस्म खून से तर था तो वज़ू कहाँ? ऐसे जाहिलों को मेरा जवाब है, वज़ू उसका होता है जिसका वज़ू फासिद हो, वो तो तैयबो ताहिर हैं। क़ुरान ने सूरह अल-अहज़ाब में बयान फरमाया, वह तो हरुकुम ततहीरा कहा, तो वो पाको साफ हैं, वो बातहारत हैं, बावजू हैं। ए जाहिल मौलवी, जो तू ये कह रहा है कि हुसैन का वजू फासिद खून बहने

पर, तो वो तुम्हारा और आम इंसानों का खून है, वो खून रसूल है जो हर हाल में पाक है। इमाम अली मकाम ने सर सजदे में रखा, नमाज को नहीं छोड़ा, और यही वो नमाज हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, करबला में सारा काफिला लुट गया, लेकिन करीब के गांव गाजरिया से जब अजान की आवाज़ सुनाई दी, या जहां से उन्हें नमाज का वक्त मालूम पड़ा, ना आपने अजान छोड़ी ना आपने नमाज छोड़ी, कुछ भी नहीं है, खेमा जला दिया गया, लेकिन नमाज अदा की। रास्ते में तकलीफें दी गईं, नमाज पढ़ने का वक्त हुआ तो इन जालिमों ने ऊँटों से उतरने नहीं दिया। मेरे आका जानते थे ऐसा दौर आएगा, इसलिए मसला है कि आप पर नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं, चाहे बिस्तर पे हो, चाहे सवारी पर हो, जहाँ कहीं हो नमाज का वक्त आया, नमाज अदा करना है। तो करबला में करबला वालों ने, अहले बैत अतहार ने भूखे प्यासे रहकर भी नमाज को नहीं छोड़ा, सफ़र में नमाज को नहीं छोड़ा, और जालिम यजीद मलऊन खबीस काफिर के सामने भी नमाज नहीं छोड़ा। जब दमिश्क की जामा मस्जिद में अजान हुई, भूखे प्यासे थे, नमाज का वक्त आया, आपने नमाज अदा की, रास्ते में रहे, आप नमाज नहीं छोड़ी। अज़ान मोहतरम, तो ये वो नमाज है और सब्र से क़ुरान फरमाता है कि नमाज के ज़रिए और सब के ज़रिए मदद चाहो, तो अल्लाह ने ऐसी मदद की कि अहले बैत का ज़िक्र क़ुरान में है, हदीस में है, मोमिनीन की ज़बान पर है और दिल में है, और ये ज़िक्र था, है और रहेगा। मोमिनों, ज़िक्र हुसैन से, ज़िक्र अहले बैत से अपने दिल को रोशन करो, मुनाफिक ना बनो, नासिबी ना बनो कि ज़रूरत पड़े तो हुसैन का ज़िक्र कर लो और बाकी उनको छोड़ दो, नहीं। ज़िक्र हुसैन भी एक इबादत का हिस्सा है, इसमें भी सवाब है, इनकी तारीख पढ़ने में भी सवाब है, तारीख सुनकर अमल करने में भी सवाब है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें नमाज का पाबंद फरमा दे। यही वो नमाज है जिसे उनके अहले बैत अतहार के घर वालों ने करबला के बाद भी जारी रखा, और मोमिनीन आज भी पढ़ते क़यामत तक नमाज पढ़ते रहेंगे। अज़ान मोहतरम, इन्हीं दिनों में उर्स सैयदना मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सेमनानी कछोचे की सरजमीन पर है। मखदूम पाक की ज़िंदगी आप पढ़ें, अल्लाह अकबर, आप सफ़र हज़र में कोई नमाज आपकी कज़ा नहीं है। और मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सेमनानी, ये निस्बतन हसनी हुसैनी दोनों हैं, इनकी रूहानी औलादें आज भी मॉरिशस में जलवागर हैं, आती रहती हैं, कभी शेख़ तरीक़त से नईम अशरफ की शक्ल में आई, और आज मौलाना सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला की शक्ल में, और मुजाहिद इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सलमान अशरफ सज्जादा नशीन मरकज़ी खानका जायस शरीफ की शक्ल में मखदूम पाक की औलादें यहाँ आती हैं। और इस मुल्क की बड़ी खुश नसीबी है कि यहाँ बहुत सी खानकाहें हैं, करीब करीब हर खानका हर वली का ज़िक्र और उनके नाम की महफिल रखती है, और जिसे अल जमीतुल अशरफिया है वो भी उर्स मखदूम बड़े मोहब्बत एहतराम से, खानकाह अशरफिया गरीब नवाज हाइलैंड्स में है, वहाँ भी बड़े एहतराम के साथ उर्स मखदूम मनाया जाता है, और भी मुख्तलिफ जगहों पर है, और भी आशिकाने अहले बैत, आशिकाने मखदूम अशरफ, आशिकाने औलियाए कामलीन अपने घरों में इन तारीखों में, यानी 25 मुहर्रम से लेकर 29 मुहर्रम तक आपके नाम की न्याजें होती हैं, फातिहा

0: या होते हैं, इसलिए कि इस नाम की बरकतें मिलती हैं। अल्लाह तबारक ताला उर्स मखदूम का फैज़ान मुल्क हिंदुस्तान, मॉरिशस, आलम इस्लाम, पूरी दुनिया में अता फरमाए और हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाइलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा।

मौजूदा सामीन, आई ए सी के साथ चंद पैगाम की जानिब बढ़ते हैं। क्यूपिप से फरानाज जुम्मन अपने मामू अली हुसैन इमाम खान के लिए, जिनकी आज पहली बरसी है, उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके मामू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा वो तमाम मरहूमीन के लिए भी दुआएं भेज रही हैं। और हमेशा की तरह न्यू गोव की फ़ातिमा हमारा साथ दे रही हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ किताबजी फ़कीहा अपने चाचा अब्दुल कादिर के लिए कलाम की फरमाइश कर रहे हैं और इसाले सवाब की गुजारिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा लावेनिया से हाफिज़ बाबा साहेब ने एक कलाम की फरमाइश की थी। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। पाक परवरदिगार हमें हर वो नेमत अता फरमा जिसमें हमारे लिए दुनिया व आखिरत की भलाई हो, सेहत व तंदरुस्ती हो, खैर व बरकत हो, खुशहाली हो, सुकून हो और इज्जत व राहत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా

0: 该回家了吧。
1: 听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

曾经真的以为人生就这样了，平静的心拒绝再有浪潮，斩了千次的情丝却断不了，百转千

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। चलिए इस समय आपके लिए हम प्रसारित करने जा रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद प्यारे प्यारे गीत जो है आप ही के अनुरोध पे हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम 4028085 हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है वह है 5251705। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत। हमारे साथ सरिता जी है, गुडलैंड्स की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो उनका ये मनपसंद गीत, जी हाँ उनका ये मनपसंद गीत जो है जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए। और ख़ास ये गीत जो है हम चलाने वाले हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों के नाम जो है ये खूबसूरत सा गीत जाने वाला है। और ख़ास जो है ये गीत जाने वाला है, जी हाँ ये गीत जाने वाला है सुरेखा जी के लिए जो कि दिपिने की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चलाएंगे आप सभी सुनने वालों के नाम। हमारे साथ जो है राधा जी है पेचीवेरजे की रहने वाली, वो भी हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये गीत जो है जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए भी।

0: तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में एक सागीरा गीत हम चलाने वाले हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और सुरेखा जी है ब्रह्मस्थान की रहने वाली और उनकी बेस्ट फ्रेंड है स्वती। उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं होंगे पति दया की तरफ से, तीन बेटियों की तरफ से, विन्नी है, वर्निशा वर्षा है और सभी परिवारों की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ जो है अनिता जी फिकौफला की रहने वाली है। ये अगला गीत जो है जाने वाला है वेडिंग एनिवर्सरी जो है अंतिश, उनकी बहू है मनीषा, तो शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से भी। तो चलिए बहुत ही बढ़िया सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। फिल्म बहुत ही पॉपुलर है और ये प्यारा सा गीत जसपाल सिंह और साथियों की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।
1: वॉलंटियर करो अपने आप को और गाना गाओ, और नहीं गाओगे तो जनरल गाना।
2: थोड़ा थोड़ा बहाने मत बनाओ, गा दो ना मेरी खातिर भी, नहीं प्लीज।

तो चलिए श्रोताओं, काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोराबे की अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में है उनकी सहेली माला परमेश्वरी। फिल्म जो है हम मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लिया गया गीत इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, ये गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ एक और श्रोता जो है हमेशा जुड़ी रहती है और आप हैं अनिता जी, जो कि पिचिवेरे सैंपिया की रहने वाली है। उनकी तीन बेटियों हैं, काजल, शीतल और दीक्षा। उनके दामाद है वितिश और उनके समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत जाने वाला है और साथ में उनके पति पालदेव जी। तो इन सभी परिवारों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम चलाने वाले हैं और

ये गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ केश जी का, वो उनकी रहने वाली है, उनकी दो बेटियों हैं नेहा नितिशा है और उनके दामाद है एलविन, उनके पति है आनंद जी। त्रिवेणी जी हैं गुलेंस की रहने वाली, साथ में है उनके पति है अनिल और उनके सभी मोहन परिवार के लिए भी।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय विश्वानी डुमेन जी है, वाकवा की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ये गीत जो है जाने वाला है उनके समस्त परिवारों के लिए, और ये गीत जाएगा उनकी बहनों के लिए। इंदिरा शारदा है साथ में, उनकी सहेलियां नीला, प्रतिभा, शोभा है, गीता गजाधर है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चला रहे हैं।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। राष्ट्रसभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय बजट में हालिया घोषित कदमों में लाए गए बदलावों के संदर्भ में रहा। विपक्ष नेता ने जानना चाहा कि क्यों इस कदम पर बदलाव लाया जा रहा है। अपने जवाब में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि 500 घोषित कदमों में से सिर्फ एक पर दोबारा गौर किया जा रहा है, यानी स्टेट एज पेंशन के लिए मींस टेस्ट का रद्द किया जाना। उन्होंने इस फैसले के सिलसिले में कई समितियों के क्याम का भी ऐलान किया है। कई दशकों से निजी कॉलेज मॉरिशस में शिक्षा के विकास में सक्रिय तरीके से योगदान दे रहे हैं। इस साल कई इदारों ने अपने वजूद का 60वीं वर्षगांठ मनाई है। यूनिवर्सल कॉलेज उनमें से एक है जो इस साल अपनी 65वीं सालगिरह मना रहा है। 14 जुलाई की तारीख फ्रांस के लिए बेहद ही अहम। वो अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है। उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी, मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी विरासतें जिंदा हैं। इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी है। विदेश में गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलने वाला है। यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई ताकि गजापति में पुनः निर्माण कार्य किए जा सकें। 1 मिलियन वासी तंबुओं में अभी तक रह रहे हैं क्योंकि इसराइल और हमास के बीच लड़ाइयों की वजह से काफ़ी तोड़फोड़ और नुकसान हुए। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रामदुनी लेन बॉडी जामुगत में 89 साल की 89 years old श्रीमती आलूपी रामदुनी पैदाइशी नाम सिबरन, जो लयका चाची के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनके बेटे मनोज रामदुनी के घर रामदुनी लेन बॉडी जामुगत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: श्रोताओं,
3: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। विलाज डे शातो बेनारेस के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 15 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में

कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्साइज बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्साइज बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। समाचारों से पहले एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम चला रहे थे, तो चलिए गीत पूरा नहीं सुन पाए तो गीत को हम पूरा सुनेंगे अब।

चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय बसंती जी है, बवासा की रहने वाली, साथ में है योगेश। तो इन लोगों की पसंद पे छोटी सी बात फिल्म से लिया गया ये सदाबहार गीत, यह सुजास की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे, ये प्रोग्राम रोज़ की भांति आपके नाम हम चलाते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700005। हमारा फ़ोन नंबर है 4028085। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है चलते चलते। ये प्यारा सा गीत जो है आज भी बहुत ही प्यार के साथ लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे और ये गीत समस्त बंधु परिवार त्रियोले के रहने वाले।

0: स्टूडियो की घड़ी में सपहर के 3:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय जो है विष्णुदेव जी है, गांवे के रहने वाले। तो ये गीत जाएगा, अगला गीत जो है जाएगा उनके समस्त परिवारों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो है उनकी फरमाइश पे हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और वैसे बहुत ही प्यारा सा गीत है हम शामिल कर रहे हैं उनकी फरमाइश पे। तो मैं चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद इस समय से लेकर शाम
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए प्यारा सा गीत है मुकेश की आवाज़ में हम ये गीत सुन पाएंगे और इसी गीत पे हम नाम जोड़ेंगे। हमारे साथ माँ गायत्री जी है, न्यू वेल्फ हाउस की रहने वाली, उनकी बेटी है अजय।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय, जी हाँ, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप जी, जो कि कोंगोमा के रहने वाले हैं। उनका ये मनपसंद गीत फिल्म क्रांति से लिया गया। ये गीत जो है जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए, और ये गीत जो है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लोकप्रिय गीत है। फिल्म क्रांति से लिया गया, वैसे फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर है, तो इस फिल्म से लिया गया गीत दिलीप जी की पसंद पे जाएगा उनके समस्त परिवारों के लिए। ये गीत है जाएगा संगीता के लिए, योगेश है, कविता, दानन, मनीषा, इंदिरा, तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम करने वाले हैं।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद का रिकाब, आप हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम जो है हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक। चलिए अगली फरमाइश की ओर हम बढ़ने वाले। अगली फरमाइश में ये प्यारा सा गीत हमारे साथ आफिज जी है, लावेनिया की रहने वाली। ये गीत जाएगा उनके भाई है अफजल उसैम बख्स, उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएँ। उनकी बेगम है फ़तिमा, दो बेटों की तरफ से उनकी बहू भी हैं, साथ में सभी बाबा साहेब परिवार उसैम बख्स परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ये प्यारा सा गीत आफिज जी की पसंद पे हम चला रहे हैं इस कार्यक्रम में।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में ये अगला गीत है जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय खांगोप की सुनीता जी हैं, तो उनका ये मनपसंद गीत फिल्म तेजाब से लिया गया। उनकी बहन है विमला, साथ में है विनी, और साथ में है उनकी बहन वीना गुडलैंड की रहने वाली, और अमृता है, साथ में है गीता भी। तो चलिए, इन लोगों के नाम जो है ये अगला गीत फिल्म तेजाब से लिया गया।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है जाने वाला है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो है जाने वाला है। हमारे साथ भाई हरी जी हैं, बोबासा के रहने वाले, और उनका ये मनपसंद गीत जो है, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। तो चलिए, इस फिल्म से लिया गया ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस कार्यक्रम में शामिल कर रही है।
1: Hi, so we meet again. अजीब इत्तेफाक है। I mean, if I'm not mistaken, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। But I haven't seen you around, Anyways, it was nice to meet you.
2: कौन है आप?
1: इस कनीस को, मेरा मतलब है इस नाचीस को, राज चोपड़ा कहते हैं।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में पिचकित के रहने वाली माला जेरी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी बेटी है रीमा का जन्मदिन, तो बधाइयां हैं समस्त परिवारों की तरफ से, शुभकामनाएं हैं पापा ईश्वर की तरफ से, साथ में है भाई दीपक, साथ में है समस्त जरी परिवार है, सभी दोस्तों सगे संबंधियों की तरफ से, एमएसए की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रीमा के नाम। तो चलिए ये अंतिम नजरा आप सभी सुनने वालों के नाम, जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, एमएसए की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और तमिल भाषा में कार्यक्रम कलाईवाणी के साथ सुन पाएंगे। हमारी तरफ से आप सभी को हम कहेंगे शुभ संध्या। जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। विलाज डे शातो बेनारस के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 15 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भूले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर।

शाम के 5 बज चुके हैं श्रोताओं, नमस्कार आप सबको। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज मंगलवार 14 जुलाई 2024। जी हाँ, और आज का दिन इस समय आप सुनते हैं भोले बिसरे गीत प्रोग्राम और इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर आज की इस हसीन महफिल में आप सभी का दिल से स्वागत है। कहते हैं पुराना ज़माना सिर्फ गुजर चुका वक्त नहीं होता बल्कि वो एहसासों का ख़जाना होता है। उस दौर में रिश्तों की मिठास थी, अल्फाजों में तहजीब थी और गीतों में दिल की सच्चाई। लोग घड़ी देख कर नहीं एक दूसरे का इंतज़ार करके जीते थे। वो दौर हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी की असली दौलत ना धन है ना शौहरत है बल्कि अपनों का साथ, ईमानदारी और दिल से निभाए गए रिश्ते हैं। आज की शाम हम उसी सुनहरे दौर की यादों को फिर से महसूस करेंगे। हर गीत एक कहानी सुनाएगा और सुर किसी भूली हुई याद को फिर से जिंदा करेगा। चलिए आज का पहला गाना सुनते हैं लता जी की आवाज़ में।

5:15 बज चुके हैं श्रोताओं, और आज आपने सुना पहला गाना लता जी की आवाज़ में और दूसरे गाने आशा जी की। दो बहनों हैं और दो बहनें हैं और आज की इस सुरीली महफिल में बात करते हैं दो ऐसी बहनों की जिन्होंने सिर्फ गीत ही नहीं गाए बल्कि हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास को अपनी आवाज़ों से अमर बना दिया। लता जी और आशा जी, बहुत कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि इन दोनों महान गायिकाओं ने उनकी पहचान कभी एक जैसे सुरों से नहीं बल्कि अपनी अपनी अलग पहचान से बनी। लता जी ने अपनी कोमल, पवित्र और भावनाओं से भरी आवाज़ से हर दिल को छुरा लिया, जबकि आशा जी ने अपनी बहुरंगी गायक के जज्बात और हर अंदाज को अपनी आवाज़ में उतारने की अनोखी कला से दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे खास बात यह है कि दोनों बहनें एक ही घर से निकली लेकिन दोनों ने अपना अलग आसमान खुद तैयार किया। यह हमें सिखाता है कि एक ही परिवार के दो सितारे भी अपनी अलग रोशनी से चमक सकते हैं।

दोस्तों, इंसान छोटा हो या बड़ा, मशहूर या साधारण, जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी यादें और उसके लिए उसके किए हुए अच्छा काम लोगों के दिलों में ज़िंदा रहती है। कुछ लोग अपनी आवाज़ से याद आते हैं, कुछ अपनी मुस्कान से और कुछ अपनी इंसानियत से। वक्त गुजरता ज़रूर है दोस्तों, लेकिन सच्चे लोग कभी पुराने नहीं होते। उनकी बातें, उनकी सोच और उनका अंदाज़ हर दौर में दिल को छू जाता है।

लेकिन हम जाएंगे कहाँ, अभी तो जाने का समय नहीं आया है और 5:33 हुए हैं। आज एक ऐसे फिल्म के बारे में बात करेंगे 1969 में प्रदर्शित फिल्म वापस का, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक सत्यन बोस ने किया था। इस फिल्म का संगीत था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतों को अपने अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी ने। और फिल्म की स्टार कास्ट में अजय वेरकार, अलका मास्टर सत्यजीत पुरी, अजरा, लीला मिश्रा, शेखर पुरोहित, जकिन दास और प्रवीण पॉल जैसे कलाकारों ने अपनी यादगार भूमिकाएं निभाई। और इस फिल्म का एक और अनमोल पहलू था इसका संगीत, लता जी और रफ़ी साहब ने और साथ मिलकर उषा जी की मधुर आवाज़ों ने गीतों को और भी दिलकश बना दिया। सुर, बोल और भावनाओं का ऐसा संगम उस दौर की फिल्मों की पहचान हुआ करता था। तो चलिए यहाँ पर सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

0: नींद आती पाकिट और एक कान बना ना मेरी जान।
1: पाकिट में फूटी कौड़ी नहीं।
2: 5:52 हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, चलिए सुनते हैं CID फिल्म से लिया गया ये गाना आशा जी और शमशाद बेगम, दो ऐसी महान कलाकारों की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ दीजिए हमेशा, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।
0: अरे पाकिट तो एकदम नया, और मान लिए बोतल शबाब की और गोली खांसी की। अजीब अजीब, कौन मजाक करता है यार? क्या ओ हवलदार, तुम क्या
3: करिए? पुलिस थाने
0: तुम?
3: मैं उधर बताऊंगा।
0: अठन्नी लो और यही बताओ ना।
3: मैं उधर बताऊंगा।
1: तुम पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? रोज रोज थाने जाना पड़ता।
0: मेरी जान, पुलिस में भर्ती हो गया तो पुलिस की भर्ती बंद हो जाएगी। वो इसलिए कि जब चोर नहीं होंगे तो चोरी नहीं होगी, और जब चोरी नहीं होगी तो पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे। क्यों हल्ला खामखा तुम्हारे पेट पे? नहीं नहीं,
3: बताएगा नहीं।
0: मगर पाकिट तो बिल्कुल खाली था हवलदार, क्यों चलूं?
4: तुम्हें किसी पटवे के लिए नहीं बुलाया।
0: तो फिर किस लिए? अरे तुम कहीं कहीं खून के लिए तो नहीं? मगर हवलदार, इंस्पेक्टर शेखर को मालूम है कि खून मैंने नहीं किया है।
4: इंस्पेक्टर शेखर भी वही है, उनसे बात करो और मेरे साथ।
0: अच्छा मेरी जान, एक बार इस गर्दन को हाथ लगा दो, मालूम होता है ये सुराहीदार गर्दन मर्तबान बनने वाली है। लगाओ मेरी जान, लगाओ।
4: मास्टर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें खूनी की पहचान के लिए बुलाया।
0: खूनी पकड़ा गया है क्या? ऐसा? चलो चलो ठहरो। वो खूनी को अच्छी तरह बांध रखा है ना? ऐसा नहीं कि मैं उससे डरता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं कैंची चलाने वाला आदमी, जरा चाकू वाले से चमकता हूँ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार और आदाब, शाम के ठीक बज चुके हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार है क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता। विपक्ष नेता केपीएनक्यू के जवाब में प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं। प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 38 किस्म की पैदावारों के लिए लागू। इनमें शिशुओं के खाने पीने की चीजें, तेल, दूध वाली पैदावारें शामिल। राष्ट्रसभा में पीएमक्यूटी के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया। संसदीय प्रश्नों के सत्र के दौरान विपक्ष सांसद जोआना बेहोंजे ने मुरशस में जल सुरक्षा के सिलसिले में सवाल किया। मंत्री पात्री कासियाबादे ने ऐलान किया कि देश के उत्तर में एक डिसैलिनेशन इकाई स्थापित की जाएगी। और गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलेगा। ईयू के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। नमस्कार और आदाब। सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार है क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता। विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे पर बगैर गौर करते हुए। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 6 कदमों के बारे में भी बात की जिन्हें अमल में लाया जा चुका है ताकि इस सुधार के अतिरिक्त दाम और सार्वजनिक कर्ज के घाटे को कम किया जा सके। राष्ट्रसभा में ही प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर बातचीत यानी एक सत्र के दौरान प्लास्टिक प्रधानमंत्री ने कहा कि शिशुओं के खाने पीने की चीज़ें, तेल, दूध वाली पैदावारें प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी के उन 38 किस्म की पैदावारों में शामिल हैं जो लागू हैं। राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड में 2.5 बिलियन रुपए लगाएगी ताकि जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित रहने के लिए परियोजनाएं चलाई जा सके। माधवी चाकोना, गीता सुनारान।
2: प्रधानमंत्री ने सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी 38 श्रेणियों के उत्पादों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इसका आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है और फिलहाल इनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
3: The House may wish to note that there's already a climate and sustainability fund to support national initiatives to protect, manage and invest and as well restore our natural ecosystems and combat the effects of climate change. For the financial year 2026-2027, government will transfer 2.5 billion rupees from the consolidated fund to the climate and sustainability fund. There is presently a scheme operated by the Mauritius Revenue Authority which provides for a financial incentive to be granted to exporters and local recyclers of waste PET bottles to encourage the removal of waste plastic bottles from the waste stream. Under this scheme, exporters of waste PET bottles are refunded an amount of 15 rupees per kilogram of waste PET bottles exported and local recyclers an amount of 30 rupees per kilogram of waste PET bottle which are recycled locally. Given that the excise duty will be extended to cover plastic bottles, the refund scheme will also be extended to cover waste public plastic bottles to be exported or recycled, whether they are subject to excise duty or not.
2: सांसद दोहयाउन ने नफरत भरी भाषणों की निगरानी और रोकथाम, विशेष रूप से ऑनलाइन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। प्रधानमंत्री ने इस विरासत को संरक्षित करने और लागू कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

0: Yeah.
1: In a bid to oppress the previous government, close access to social media and slowed internet debt, internet debit. When we came to power, we vowed that never, never again should we allow our shared peace to be corroded by totalitarian minds. We condemned any attempt to muffle expression. This is an imperative in a multicultural and pluralistic democratic society. Madam Speaker, I shall be ruthless against anyone, and I repeat, against anyone who jeopardizes national unity and social cohesion. Government remains resolute in its determination to preserve the unity of our nation and to assure that Mauritius continues to be peaceful, inclusive, and a harmonious society. Any new measure must remain proportionate and consistent with the constitutional protection for freedom of expression.
0: सांसद जमन का प्रश्न फरवरी 2025 में तेहूज में 114 मिलियन रुपए की बरामदगी की जांच से संबंधित था। प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारियों का घटनाक्रम प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी भी शामिल है।
2: Can the Honorable Prime Minister inform the House whether the FCC is enough equipped, has a required technical expertise and manpower to carry such cases, as there is a long list of cases pending at the level of the FCC?
1: That is actually the case, and I think I must accept what the Honourable Member is saying, that we need experts to deal with all those things. They're not trained enough for that. That is why we have people from former Scotland Yard officers who are actually helping them, assisting them in the inquiry.
0: डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने सांसद काजैन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान 6 नई विदेशी एयरलाइनों ने मॉरिशस के लिए कमर्शियल उड़ानें संचालित करने हेतु आवेदन किया है।
1: गवर्नमेंट इज पर्सुइंग ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ एयर एक्सेस थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स। दिस अप्रोच एम्स टू एनहांस एयर कनेक्टिविटी व्हाइल एंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंटिन्यूड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ of our national carrier, that is Air Mauritius Limited. Madam Speaker, air connectivity is extremely important for the development of our country. Any decision for opening up our airspace to any airline would be taken after a thorough assessment has been made as to the benefits that may accrue to Mauritius from such an agreement.
0: सांसद अंकुचिल का प्रश्न ट्रियानो के सबवे में कैमरे लगाने के बारे में था। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि सेफ सिटी प्रणाली के कैमरे सबवे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए मॉरिशस टेलीकॉम नई तकनीकी विशिष्टताओं पर काम कर रहा है।
3: संसदीय प्रश्नों के सत्र के दौरान विपक्ष सांसद जोआना बिरोंजे ने मॉरिशस में जल सुरक्षा के सिलसिले में सवाल किया। मंत्री पैट्रिक असियावादे ने ऐलान किया कि देश के उत्तर में एक डिसैलिनेशन इकाई स्थापित की जाएगी जो सौर्य ऊर्जा से कार्यरत होगी। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस इकाई के जरिए रोजाना 10,000 से 50,000 वर्ग मीटर जल का उत्पादन किया जाएगा ताकि घरों, खेतों, व्यापारों और पर्यटन गतिविधियों की मांगों को पूरा किया जा सके। मंत्री पैट्रिक असियावादे को सुनते हैं।
4: Le gouvernement étudie la mise en place d'une unité de dessalement alimentée par l'énergie solaire dans la région du Nord. Une expression of interest a été lancée en septembre 2025, l'année dernière, pour la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur la mise en place d'une usine de dessalement de grande capacité, comprise en 10 000 et 50 000 mètres cubes par jour, dans le nord du pays. Monsieur le Vice-président, 4 candidats présélectionnés ont été invités à soumettre leurs offres dans le cadre d'un appel d'offres lancé en mai 2026, cette année-ci. Les propositions doivent être reçues au plus tard le 24 juillet de cette année-ci, donc dans quelques jours. Donc le contrat sera attribué et l'étude est prévue d'ici septembre 2026 et va durer autour de 8 à 10 mois.
3: बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बता रहे थे, सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार है क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता। विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे पर बगैर गौर करते हुए। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने 6 कदमों के बारे में भी बात की जिन्हें अमल में लाया जा चुका है ताकि इस सुधार के अतिरिक्त दाम और सार्वजनिक कर्ज के घाटे को कम किया जा सके। दासापाला स्वामी विधि मासीपुरन।
5: or policy reversals in relation to the measures
0: अपने प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के माध्यम से विपक्ष नेता ने पूछा कि क्या बजट में किए गए परिवर्तनों के बाद एक संशोधित व्यापक आर्थिक और बजटीय ढांचा प्रस्तुत किया जाएगा।

0: किया। प्रधानमंत्री के अनुसार लगभग 500 कदमों में से केवल एक की समीक्षा की गई है, पेंशन के लिए मींस टेस्ट को हटाना। डॉक्टर नवीन रामगुलाम का कहना है कि बजटीय प्रक्रिया में इस तरह की स्थिति के लिए पहले से ही प्रावधान है।
1: With the removal of the means test, it is estimated
0: मीन्स टेस्ट को हटाने के साथ जनवरी से जून 2027 की अवधि के लिए स्टेट एज पेंशन के तहत अतिरिक्त व्यय का अनुमान 6.2 बिलियन रुपए है, जो कि जीडीपी का 0.7% है। पूरे एक वर्ष की अवधि में यदि पहले से लागू किए गए मिटिगेशन कदमों को शामिल नहीं किया जाता तो इसका प्रभाव जीडीपी के 1.5% से अधिक हो जाता। जहाँ तक संशोधित व्यापक आर्थिक और बजटीय ढांचे को प्रस्तुत करने का प्रश्न है, मैं ये दोहराना चाहता हूँ की बजटीय प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष के अंत में बजटरी एग्जीक्यूशन का मूल्यांकन पहले से ही शामिल है, जो इस तरह की स्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में रखता है। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि अप्रोप्रिएशन एक्ट 2027 को 232.4 बिलियन रुपए के कुल बजट के साथ अपनाया गया है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट एस्टीमेट्स 2026-2027 के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओपी के भुगतान हेतु 30.1 बिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। जनवरी से जून 2027 की अवधि के लिए स्टेट एज पेंशन के भुगतान हेतु 20.5 बिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। मीन्स टेस्ट को हटाने के कारण स्टेट एज पेंशन को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक सटीक राशि अभी ज्ञात नहीं है, क्योंकि सरकार को अभी उन भावी पेंशन भोगियों की सही संख्या नहीं पता है जो 60 वर्ष की आयु से ही अपना पेंशन लेना चुनेंगी। बजटीय प्रक्रिया में संविधान की धारा 105 के अनुसार यदि आवश्यक हो तो किसी भी संबंधित व्यय मद के लिए सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत करने का प्रावधान भी है, इसलिए अप्रोप्रिएशन एक्ट की कुल राशि को बदलने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नेता का कहना है कि मीन्स टेस्ट को हटाने और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली अतिरिक्त लागत के बाद सरकार ने बजटीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए पहले ही 6 कदम लागू कर दिए हैं।
1: These include first
0: इन कदमों में शामिल है, पहला, निवेश परियोजनाओं की प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरा, वित्त मंत्रालय के एक अतिरिक्त वित्तीय सचिव की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई गई है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक मंत्रालय के खर्चों की जाँच करना और डायरेक्टर ऑफ ऑडिट की रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करना है। इसके संबंध में कई बैठकें हो चुकी हैं और खर्चों को तर्कसंगत बनाने के रास्ते तलाश दिए गए हैं। तीसरा, मैं व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता पर एक स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता करूंगा, जिसका उद्देश्य दोहराव, अक्षमताओं और फिजूल खर्ची की पहचान करना है। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करनी होगी। चौथा, वित्त मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसे कर प्रणाली की गहन समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि उसकी निष्पक्षता, दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके। टैक्स विशेषज्ञों से गठित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ साथ डॉक्टर फिलिप बेकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा समर्थित ये समिति अगले महीने अपना काम शुरू करेगी। इस समीक्षा को पूरा होते ही कदम लागू किए जाएंगे, जिनसे सरकारी राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पांचवा, वित्त मंत्रालय कुछ गैर रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री और साथ ही कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहा है, ताकि इन परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ाया जा सके और राज्य की हिस्सेदारी को लाभदायक बनाया जा सके। छठा, CSG अंशदान के संबंध में सरकार एक सुचारू संक्रमण की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को स्थायी रूप से समाप्त करने से पहले सीमित अवधि के लिए इन अंशदानों का एक हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड में जमा करना जारी रखने पर विचार कर रही है।
1: टू क्रेडिट पार्ट ऑफ द CSG कंट्रीब्यूशंस टू द कंसोलिडेटेड फंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड बिफोर दिस प्रैक्टिस इज फेज्ड आउट एंटायरली।
0: जोली रोंगा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या बजट में शागस समझौते से मिलने वाली अपेक्षित राजस्व को शामिल किया गया है।
1: एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद द यूके टू रिमाइंड यू एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड दे हैवंट गोन थ्रू द प्रोसेस इन द यूके। We are very confident, Madam Speaker, that this will happen.
0: विपक्ष नेता का एक और प्रश्न, क्या सरकार पेंशन सुधारों पर वापस विचार करने का इरादा रखती है?
2: Will government backpedal completely?

0: completely on the pension reforms altogether?
1: No question of doing that. Madam Speaker, we all know, and they know, that the basic retirement pension is unsustainable in its actual form. Now they're promising, if ever they come back, they will continue on the same path of unsustainability, which brought the country in the financial abyss we find ourselves today.
2: यूनियनों द्वारा घोषित आम हड़ताल की स्थिति में अंत में जो लेशोंगा ने पूछा कि क्या सरकार पूरे फाइनेंस बिल को स्थगित करने का इरादा रखती है?
0: Will the Honourable Prime Minister consider suspending the finance bill first and engage in genuine tripartite social dialogue, or is he prepared, Madam Speaker, to plunge the country into economic paralysis?
1: First of all, I did not hear the union say that they want to suspend the finance bill. You were saying that. I didn't hear the union say that. And secondly, there will be no change from what I have said. And that's it.
3: राष्ट्रसभा में आज मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहस की गई। भूमि और आवास मंत्री ने इस विधेयक को पेश किया जिसके तहत मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सेवाएं शुरू की जाएंगी। इस इकाई से देश क्षेत्रीय जल के बारे में जानने और सच्चाई प्रकाशित करने का मौका मिल रहा है देश को। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि ये बिल एक छोटे टापू देश की प्रभुसत्ता की भी बुनियाद है। उन्होंने इस विधेयक के तीन पहलू आम किए, कानूनी जिम्मेदारी और जियोग्राफिकल हकीकत, शागुस द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता तथा आर्थिक पहलू और क्षेत्रीय जल का विकास शामिल है। मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल को आज पेश किया गया। अन्य खबरों में एपिलेप्सी के खिलाफ प्रेस्क्राइब प्रिगाबालिन दवा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रगनोश लोग इसका अलग तरीके से सेवन कर रहे हैं। एफसीसी ने इस दवा की सप्लाई के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय की फार्मास्यूटिकल सेवाओं में कई खामियों का उल्लेख किया। इसके जवाब में आयात की प्रणालियों और प्रक्रियाओं के एक जायजे से पता चला है कि फार्मास्यूटिकल सेवा जिम्मेदार ने कहा कि कानूनी ढांचा पुराना हो गया है और इसे फार्मासी क्षेत्र से जुड़े कानूनों पर दोबारा गौर करने की उम्मीद है। इस 14 जुलाई को पुलिस ने एक थंडर स्ट्राइक कार्रवाई चलाई। नॉर्दर्न डिवीजन और मेट्रो नॉर्थ के सहयोग से रात के 3 बजे से सुबह 10 बजे के बीच ये कार्रवाई चलाई गई। मुख्तलिफ जुर्मों के लिए 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें घरेलू हिंसा और बुजुर्गों के प्रति हिंसा तथा गैर कानूनी तरीके से मॉरिशस में रहने के अपराध शामिल हैं। इथियोपियन एयरलाइंस की पहली मॉरिशस उड़ान के 2 दिन बाद कूटनीतिक और आर्थिक नतीजे सामने आ रहे हैं। इथियोपिया के राष्ट्र विदेश मंत्री हादिरा अदमासू और डेलीगेशन ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग पोटली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तिजारती, पर्यटन और निवेश को मजबूत करने की बातचीत हुई, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब इथियोपिया दुनिया में सबसे गतिशील अर्थनीतियों में से एक है। अब्दुल बुराकी की रिपोर्ट पर यह विवरण।
4: इथियोपियन एयरलाइंस की पिछले रविवार को प्लेजांस के लिए पहली उड़ान न केवल एक नए हवाई संपर्क की शुरुआत है बल्कि ये मॉरिशस और इथियोपिया के बीच आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय भी खोलती है। इस मंगलवार विदेश राज्य मंत्री आदिरा अदमासू के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल जिसमें इथियोपियन एयरलाइंस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर लेमा गुतेता भी शामिल थे का पोटली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम द्वारा स्वागत किया गया। बातचीत का मुख्य केंद्र हवाई संपर्क को मजबूत करना और मॉरिशस तथा अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक के बीच व्यापारिक आदान प्रदान का विकास करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इथियोपिया 2026 में 9.2% की दर के साथ अफ्रीका में सबसे तेज आर्थिक विकास दर्ज करने की उम्मीद है जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और सेवाओं में बड़े निवेश से प्रेरित है। मॉरिशस के लिए ट्रेजरी बिल्डिंग में हुई ये बैठक अफ्रीकी महाद्वीप के एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी के साथ साझेदारी को गहरा करने की साझा इच्छा को दर्शाती है।
5: अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म, मॉरिशस इज नोन फॉर इट्स फाइनेंशियल सेंटर।
4: पर्यटन के अलावा मॉरिशस अपने वित्तीय केंद्र और चीनी उद्योग के विकास के लिए जाना जाता है, अतः कई अनुभव और विशेषज्ञता पाई जाती है जो मॉरिशस इथियोपिया के साथ साझा कर सकता है। दूसरी ओर इथियोपिया एक औद्योगिक तथा कृषि केंद्र है जो विकसित हो रहा है। उसका कृषि खाद्य तेजी से बढ़ रहा है। उद्देश्य है दोनों देशों की जानकारियों को

0: साझा करना ताकि दोनों देशों को लाभ हो। 130 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ इथियोपिया आज अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये उच्च क्षमता वाला बाजार मॉरिशस की कंपनियों के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र AfCFTA के ढांचे के भीतर।
1: आज 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। फ्रांस और मॉरिशस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है, उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी। मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी प्रतीक और विरासतें जिंदा है। इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी है। और अब विदेश की खबरें। गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलेगा। यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसका ऐलान किया गया ताकि गजापति में पुनर्निर्माण कार्य किए जा सकें। 1 मिलियन वासी तंबुओं में रह रहे हैं क्योंकि इसराइल और हमास के बीच हुई लड़ाइयों में बहुत नुकसान हुए हैं। ईरानी ताकतों ने अबनाए हुरमूज में UAE के 2 टैंकरों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात को हमले किए। ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सहूलतों पर हमले किए हैं। और अब फुटबॉल की बात। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज रात फ्रांस और स्पेन की टीमें मैदान में उतरेंगी। ठीक 11 बजे ये मैच प्रसारित किया जाएगा और कल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला होगा।
2: पिछले 2-3 सालों में ये दो टीमें 2 बार आमने सामने आई हैं और दोनों बार स्पेन की जीत हुई है। एक यूरो 2024 के सेमीफाइनल में, दूसरा 2025 के यूरोपियन नेशंस कप के सेमीफाइनल में। फ्रांस पासा पलटना चाहेगा। सेमीफाइनल में बदले की खुशबू मिल रही है, पर स्पेन के मैनेजर लुइस दे ला फुएंते सीना ठोंक कर कह रहा है कि फ्रांस को 2 बार लगातार हराने वाली टीम स्पेन ही है। ये एक चेतावनी है फ्रांस के लिए। मैदान में 2 अलग अलग खेल का अंदाज होगा। स्पेन गेंद को ज्यादा अपने साथ रखता है और उनकी ताकत चट्टान जैसा डिफेंस है। इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन रक्षा पंक्ति अब तक स्पेन के गोलकीपर पर केवल 1 गोल स्कोर किया गया है। 650 मिनट तक गोलकीपर उनई एस्साइमन पर गोल नहीं बना है, ये एक रिकॉर्ड है। सामने है फ्रांस की धुआंधार जानलेवा अटैक, ऐसे खिलाड़ी जो किसी भी डिफेंस को चीर फार सकते हैं। मोरक्को को आराम से हराकर इनमें आत्मविश्वास आया है। दिमागी खेल बहुत होगा दोनों मैनेजर के बीच। जिजे देशों खिलाड़ी और मैनेजर के रूप में वर्ल्ड चैंपियन बना है, ऐसे मौकों से वो गुजर चुका है। दे ला फुएंते बीच मैच में अपनी टीम को बदलना जानता है। आज दाव पे है न्यूयॉर्क का एक टिकट। मौका है फ्रांस को अपना बदला पूरा करने के लिए और 14 जुलाई के दिन स्पेन से लगातार हार से छुटकारा पाने के लिए। मैदान में स्पेन फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उस पर कोई तरस या रहम नहीं दिखाएगा। फ्रांस के जश्न पर पानी फिरने का काम कर सकता है।
1: और बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, पूर्व दक्षिण और पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों तथा हवाई ढलानों पर हल्की वर्षाएं होंगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 20 से 22। साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:46 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए थोड़ी देर।

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Quand Carole Kenyame Sattar Salke, 70 years old, Shri Haridat Bisuni, Shri Haridat Bisuni, जो राज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थे कल दो बजे इनके बेटे हरीश बिसुनी के घर कोंकागोल केनिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंकागोल केनिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM. कोंकावाल क्यूपिप में 86 साल की 86 years old श्रीमती सानवंती सिहरी पैदाइशी नाम रामधनी जो शांति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. आली डिजा कासिया बुवालूमी 61 साल के 61 years old श्री गासेन नियासीमुलू जो बाओलैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल दिन के 10 बजे इनके घर आली डिजा कासिया बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. टैगोर रोड गोंगकोक में 17 साल के 17 years old माइनर जय आर्या गबू जो आयुष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 11 बजे इनके पिता जगराज गबू के घर टैगोर रोड गोंगकोक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोंगकोक की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. रॉयल रोड लावोंचुया में 89 साल की 89 years old श्रीमती जयमंती रामफल पैदाइशी नाम चमन जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल एक बजे इनके बेटे विजन रामफल के घर रॉयल रोड लावोंचुया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. वन वे स्ट्रीट शिमेग्रोनी में 64 साल की 64 years old श्रीमती बिंता रंगासामी पैदाइशी नाम तिहा जो सुरेखा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल दो बजे इनके पति सादा रंगासामी के घर वन वे स्ट्रीट शिमेग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM. एवेन्यू सिमोनेट कानोट में 75 साल के 75 years old श्री बलराम कुडनी जो ब्लोका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल 10 बजे इनके घर एवेन्यू सिमोनेट कानोट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताज साहब या बॉम्बू की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 10 AM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.

सीबीए अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 15 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मोंट ब्लांक, शामुनी और आसपास के इलाकों में, और बुधवार 15 जुलाई को रियांबेल, सुरीनाम, मोसलमान, दनपत और सांली स्योमे रियांबेल में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और बुधवार 15 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शातो बेनारेस और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय आम जनता को सूचित करता है कि गुरुवार 16 जुलाई 2026 को दिन के 10 से शाम 4:30 बजे तक स अनिरुद्ध जगन्नाथ हॉस्पिटल फ्लैक में सीबी द्वारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के चलते बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इसके चलते हॉस्पिटल की रेडियोलॉजी और लैबोरेटरी सेवा सिर्फ इमरजेंसी के लिए कार्यरत रहेगी।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Welcome to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर

सादर प्रणाम श्रोताओं, मैं हूं देविना और आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस पर। चलिए एक साथ भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मिक शांति के मधुर सफर पर निकल पड़ते हैं। यह समय है मन को शांत करने का, ईश्वर का स्मरण करने का तथा अपने भीतर नई ऊर्जा जगाने का। आइए अपने मन की सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं।

श्रोताओं, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है वहां सुख शांति तथा प्रेम स्वयं अपना निवास बना लेते हैं। जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं श्रोताओं, परंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य तथा मुस्कान के साथ करता है। चलते हैं अगले भजन की ओर।

0: जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी।
1: राम नाम रट छोड़ खटपट तेरे खट जाएंगे संकट झटपट तेरे।

जहाँ श्रोताओं आप सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम, इसमें हम आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन करते हैं। वैसे भगवान हमसे कभी यह नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी। वे हमें इतनी शक्ति अवश्य देते हैं कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। इसलिए विश्वास बनाए रखें तथा कर्म करते रहें। अब प्रस्तुत है अगली मधुर भक्ति रचना।

श्रोताओं, जब मन बेचैन हो तो कुछ पल मौन होकर ईश्वर का नाम लीजिए। मन को जो शांति उस नाम से मिलती है, वह संसार की किसी वस्तु में नहीं मिल सकती। वैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती, बल्कि अच्छा मन भी होना चाहिए, साथ ही किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाने से भी होती है। प्रेम, सेवा तथा करुणा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है श्रोताओं।

श्रोतागण, अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे प्रभु के और अधिक निकट ले आती है। आइए हम अपने जीवन में नम्रता, प्रेम, सत्य तथा सेवा को अपनाएं। आज का यह आध्यात्मिक मिलन यही समाप्त होता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य तथा सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रभु का नाम केवल होठ

होठों से नहीं बल्कि हृदय से लीजिएगा। वही नाम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, जय श्री राम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिन बुजुर्गों के फैज़े क़ुदूम से शमरे इस्लाम फरोज़ा हुई, उन मुकद्दस हस्तियों में से एक गौसुल आलम मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाही की ज़ात बाबरकत हैं। माह मुहर्रमुल हराम की 28 तारीख को आप रहमतुल्लाही का उर्स मुबारक मनाया जाता है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाही का मज़ार पुरनवार की चौचा शरीफ में मरजाए खलाइक हैं। हर साल उनके उर्स के मौके पर दुनिया के कोने कोने से उनके अकीदतमंद उनके मज़ार में शिरकत करते हैं। बिलयकीन ये आस्ताना उस फ़कीर बादशाह का है जहां मांगने वालों की झोलियां मुरादों से भर जाती हैं।

कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सामईन कराम, अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है इस मुख्तसर खैराज अकीदत को आपने पसंद फरमाया होगा। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। अगले मंगल को फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, शब बख़ैर।

0: संगत्या लोक घरीच मिळाला हे बघत रात के ठीक 9 बजे तू सुनत रेडिओ मॉरिशस और रेडिओ मनोरंजन
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Mauritius.
2: Continuous music.
3: RM3. Ek se ek joli Bhojpuri ki Pratap Singh ke sange MBC Radio. मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
4: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
0: सब संगत चालों की ओर से प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और साथ में हमने की प्रसारण चलाता रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी सब श्रोता लोग हमने स्वागत करते हैं जहाँ सब भाई बहन लोग के स्वागत बा। और रात के 9:02 अभी से लेके रात के 11 बजे तो लोग के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुन के नंबर वा घुमैया का जगह देव जगह विचैक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर SMS करिए

और अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत सुनिया जा। ई भेल का गाना जोड़ी छोकरी से प्यार कर कुणाल हीलाल रोशन भाई है तोहर खातिर लिंस मोहयाल कांडा से सुनतवन सुमन भाई देवरानी सोनू है गीतर नाम संगीता सुकारी कृष्णी रेशमा और माला नायकन है गीतर नाम प्रतिमा दुखित राम शामिला रोशनी केडू सदना जगदयाल सबीना मेघना आयन शिका मिस्टर मायू दया इंद्रा क्लेरामा उबियम के साथ ओथोन पाकिटो बिंदास राकेश रीना दुखी नताशा ये सब संगतिया लोग हमने के संग जुआ रहा जा और अशोक भाई भी हमने के साथ बा याद प्रिंस एंजल हेलो नमस्ते सुस्वागतम। तो जितना कोई हमने की रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुना था जितना कोई हमने की टिकटॉक पेज पर दिखा था है गीत और नाम जोड़ी छोकरी से प्यार करी जा।

और हमने के चना हमेशा अपन ने कह लो कि हमेशा बतलाए के घर के काम काज करेगी, वो चाहे छोकरा हो या छोकरी हो, दोनों के चना जाने के घर के काम कैसे करेगी। कहे कि एक दिन जब हम नहीं रहा सा तो हम के लड़का लोग सकी दे बुए करे हों कि नहीं। और लड़का लोग के चेहरा बताए कि कैसे बर्तन धोए के, लुगा धोए के, घर बहारे के, अपन लसाम सफा करे के, हर काम छना बताए कि कहे कि कार के जब तोहर लड़का बड़ा हुई तो ऐडे पौधा हो, जब जाए दूसर देश में पढ़ाई करे तो बेशक उ सकी अपन गोर पर खड़ा हो हाँ कि नहीं। तो हमने माँ बाप के दे वह लड़का लोग के बताए कि कैसे घर के काम काज करके, घर के काम काज करके शर्म नहीं बाए, सब कोई के चहला जेंडर बेस काम नहीं है, सब कोई सकी घर के काम सीखे। अगला गीत कच्चू भाजी पानी कविता गीत वा गई हवन और है गीत हमें चलावते ही सर फरीजा महादू के नाम। हेलो फरीजा वाह धै गीत हो खातिर क्रिश्चियनो है गीत तोहर नाम। और फिर यही गाना चलाव सर रीता खातिर केशव है गीत तोहरो नाम, दिनेश मातो, वीरेन कुमारी है गीत तोहरो नाम, कल्याणी लुदात, राजेंद्र नाथ बा नर्मदा, गीता है गीत तोहर सब लड़का लोग के नाम, योवाश, योनीश, याश्विनी, नानी गीता हवन थोले से, शिवा है गीत तोहरो खातिर, लक्ष्मी चिन्ह है गीत तोहरो नाम, और वंशिका भोला है गीत तोहर खातिर, साथ में अरविना गुलप, देवी जेष्णा, सतीश गुड़िया, पद्मिनी कौदन, माला, ललिता गिरिधर, नूश, मिमी, नदानी जगरू, नदानी जगरू बहुत प्यार से हमने देखा तो मन, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इब्राहिम साहब हवन, रेहाना हसनानी फिनिक्स हवन है गीत तोहरो नाम, कच्चू भाजी पानी चल एक साथ सुने गीतवा।

और बेशक हमी चुल के साथ देवते रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर रात के 11 बजे रे संगतिया लोग आगे जब बीफे आवे तो सब कोई बीफे के रात का तान कतर ये कब एमबीसी टीवी पर फिल्म आए और हिंदुस्तानी फिल्म चला था खाली जेजी के रात के बहुत साल पहले बोलते हैं ये हो गले गोविंद सिंह कौन तो जब पहलका टीवी रहा एमबीसी टीवी तो जेजी के रात के फिल्म देखा था रिचा रात 11 बजे एफोमाशों के बाद तो सब कोई बैठ के एक साथ फिल्म देखा था रिचा माता जी लोग पिस्ता बुई करे मकई बुई करे और सब कोई बैठ के फिल्म देखा था रिचा और बचा था रिचा। आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से बदल गए बा आजकल सब कोई अपन पोताब में फिल्म देखेला हाँ कि नहीं तो समय के साथ सब कुछ बदलेला पर एगो चीज़ नहीं बदल बा हमने तो लोग के दोस्ती हमने तो लोग के प्यार ऐसे में सुनम जग लगाना अच्छा लगेरा बड़ा मजा लगेरा है गीतवा गैले हवन सुरेश किस्तो और गीत चलाओ जा अनिता पर तोप खतीर बहुत बहुत प्यार के साथ रोशनी वाला जो है गीत और नाम अंजू और दानी जगरू गुडलैंड से और मामजल जान से भी और आती शम के साथ हो इंदिरा नन को है गीत और नाम दया जी नमस्ते और यशना राम प्रसन्न अनिता लाल जी नमस्ते है गीत और नाम और है गीत चलाओ अब जा अंचल प्रमिला पूर्वी और अयाज मसी है गीत और नाम संजय शिवजन है गीत और खातिर और नकुल है गीत और नाम फजाना सुमल हेमा हेमा हेमा कनाई नमस्ते सब कनाई परिवार यूनियन पार्क से है गीत और नाम युधिश सिहुदा है गीत और नाम चल एक साथ सुने गीतवा

अच्छा लगेला, मजा लगेला, हाँ अपन घर में रह के अच्छा लगेला। कितना दिन सास के घर में रहा, बोले तो अपन घर तो अपने घर रह रहा। हम नहीं बोलते सास के नहीं जाएगी, चाहे ना चाहती घूमे जाएगी, पर अपन घर तो अपने घर रह रहा। संगतिया लोग अब हम तोरा बोलब जा कि अनार के कौन महत्व है। अनार ए पोम पोमेग्रेनेट देखे बोले सर, और अनार एगो अत्यंत पौष्टिक फल है। एक में विटामिन सी बा, विटामिन का बा, फोलेट बा, पोटाशियम बा, फाइबर बा और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बा। ये शरीर के जो है इम्यून सिस्टम के कमजोरी करेला, और अनार खैबत ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला। और जो विटामिन सी है ये थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम से बचे ले रही। हृदय के लाभदायक है, जिन व्यक्ति लोग के हार्ट डिजीज रहेला अगर तू अनार खैबा तो अच्छा स्वास्थ्य खातिर। डाइजेशन में तोहरा मदद करेला, पाचन में सहायक, और खून हमके खून पतला करेला। तो बेशक मौका मिली जेबा बाजार तो अनार जरूर खरीद। हमके त्वचा, हमके जो स्किन है, हमके लापो है, ओकर खातिर भी बहुत अच्छा है, और मस्तिष्क स्वास्थ्य खातिर भी बहुत उपयोगी है अनार। अब अनार कैसे खा जाला, अनार सकब स्नो खाई ऐसे बिया बिया रहेला लाल लाल टके सकब खाई, बिना चीनी के सकब खाई जैसा मीठा रहेला, और अनार स्वादिष्ट रहेला, और साथ साथ हमने के जो है शरीर के स्वस्थ रखेला। ठीक बा, तो संगतिया लोग अनार ज़रूर खाइया जा, और अगर एगो बाजार में नहीं मिले तो दूसरे बाजार में खोजिया जा। अगला गीत चली अनपर न रहिए, विश्वानी जी पा गीत वगैरह वन है गीत हमने चलावत ऐसा हेमा जी के नाम, रोहन बत्तू और दीना गनवा है गीत हो खातिर, ललिता पुनीत हमने के साथ देवत वन, दानुष सिंह पूर्वी है गीत हो नाम, युधीश शिवदागी है गीत हो खातिर भी, और है गीत हमने चलावत है इस विजय गुप्ता खातिर और लीना स्वरूप खातिर। है गीत चली साइलेंट के उसे कर्मा रीता और उकर पत्नी रानी, बेटी परी और उकर बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम है गीत चराव से। हिरीश नारायण रहेलन मिडलैंड्स, और इबकत हम जिखने से ढेर माना जगह में पानी करता था, पानी पानी बरसा था, तो जितना कोई अभी है पानी के मौसम में ड्राइव करते हुए तो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी और हम के साथ देते रहिए। रोशन देवी है गीत थोड़ो नाम अनपर ना रही है, चले एक साथ सुनम जागी तो

गुरु जी के पास जाके आ कर गया। देखिए हर प्रोग्राम हर गीत मांगे थे, नो पर्सनल क्वेश्चन ऑन टिकटॉक पेज, गीत मांगा। अपने पूछा कि कंची करा था हुआ कि प्रोफेसर की कोची, ये सब नहीं, प्रोग्राम में गीत मांगे के गीत मांगे जा प्लीज़। और प्रोग्राम में भोजपुरी तड़का, और अब हमने थोड़ा सुना जाएगा कहानी, बहू और सास के कहानी। एक गांव में शांति देवी नाम के एगो सास रहल और उकर बहू के नाम रहल नेहा। दोनों अच्छी तरह से जियत रहन से, पर कभी कभी छोटा छोटा बात में नोकझोंक हो जाता हल, और कभी कभी वातावरण टेंस हो जाता है, कहे कि सास बहू में कभी कभी नोकझोंक हो जाता है। तो एक दिन बहू बहुत दुखी होकर गांव के एगो बुजुर्ग ज्ञानी के पास गल और जाके बोललक, बाबा हमके हमार सास जो है छोटा छोटा बात में कभी कभी हमके नीचा दिखावेला, हम कौन सी करब। तो बाबा मुस्कुरा के बोललक, हम थोड़ा एगो उपाय बताब, हर फजीर रोज़ फजीर के अपन सास से मुस्कुरा के बात करिया, ओकर हाथ बटैया और ओकर सेवा करिया और ओकर सही प्रशंसा करिया। देखिए थोड़ा सास थोड़ा बड़ी खुशी रही। तो नेहा वैसे ही करलक और सास के मदद करे सब काम में, ओकर सम्मान करे और बेशक ओकर मनपसंद खाना बनाए। धीरे धीरे घर में वातावरण जो है बदलल और सास बहू में प्यार और बढ़ गल। एक महीना बाद नेहा फिर से बाबा लग गल और बाबा से बोलक, बाबा अब हमके कोनो उपाय नहीं छेला, हमार सास हमके बहुत चाहेला, हमने दोनों जना में बहुत प्यार बा, अब हम तनको झगड़ा नहीं करी ना सर। तब बाबा मुस्कुरा के बोलक, बेटी सबसे बड़ा दवा है प्रेम, धैर्य और सम्मान। जब हमने

अपनापन दिखावे ला सा और एक दूसरे के समान करी रहा सा तो सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जा रहा। तो कहानी के जो मोगाल है शिक्षा है कि घर में खुशी प्रेम और सम्मान धैर्य जुन है आवेला तो हमने के जीवन सवारे रहा। जब एक हमने जब एक परिवार में हर एक सदस्य के मान सम्मान करी प्रशंसा करी और सेवा करी तो घर में घर परिवार में हमेशा सुख शांति रहेगा। तो ऐसे में बर्फ जागला गीत की ओर मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान है गीत यश नाराम प्रसान खाजी चाव सर स्वीति है गीत तोरो नाम यश साहब तोहर नाम यश नाराम प्रसान और सायरा दाहू है गीत तोहर खातिर अब्दुल और सायरा बानू खातिर यश और होलर है ये गीत तोहर खातिर और है गीत हमने चरावप स्वीति के नाम सब रामपरसन परिवार के लिए और जो रहेलन गोब वीरेन साहब अवंजा संजय बिहारी हम के साथ वन हाय संजय गीत और खातिर और सब बिहारी परिवार के नाम चले साथ सुने मजा कर ले मेरी जान फिर से न होगा जवान।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Continuous music. RM3.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

संगत्या लोग आज की दुनिया में केकर पर सकल जरा भरोसा करे केकर पर नहीं ई थोड़ा बोले के मुश्किल बा। काहे कि जेकर पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर बा कबो वही तोहर विश्वास तोड़ देवेला। तो हम तो बोला कोई पर भरोसा नहीं करिए, केवल अपन गोर हाथ पर भरोसा करिए, पर माँ बाप पर भरोसा करिए। काहे कि भरोसा जब टूटेला तो नहीं अच्छा बा, हो कि नहीं। तो दुनिया जैसे जाता है तो सेकंड पुली जैसे जीएलएन से पर्सनल कोई पर नहीं सब भरोसा करे। अभी जहाँ चला भाई दुनिया, ये दुनिया ही इसे बैकरे कलयुग बोला सा, हाँ कि नहीं। और अगला गीत कहाँ जाइबे अशोक कुमार भवानी गीतवा गए वन और है गीतवा हमने चलाव थे साफेज खातिर राफेज वन सैम के ऐसे अनिता लाल जी मौदाल बे ऐसे बहुत बहुत प्यार के साथ और अनिता अफ्रीका फ्लाग से हवन जा है गीत और खाती इंदिरा लावतन हवन दक्षिण में और शोभा वाकवा प्रेमिला काटबोन में हवन जा और राज मन्ना जी बहुत प्यार से उनके सवे लॉन्ग चिबुग राजा स्टीव माना और प्रवीण भैरव श्याम मंगल सुदेश जसवा कर्मा राजकुमारी और सब सब परिवार के नाम और जिमी दुखिया सवन दुखिया भी हम साथ देवत हवन हेलो और निशांत सिंह चुबा हवन लिस्कारी से गीत और थाबुचिक से गीत और सब परिवार के नाम उमा जगनायक हयु गीत और खातिर खास हम खास साथ में है गीत चाहते स प्रतिमा दीना मिस्टर सौजू मिस्टर गंगू धर्म फिर वीरापेन अपाया रुसाई रुसाल खातिर और जितना हमने के संगत्या लोग हमने के सुना तो नभी रात के समय है गीत लोग के नाम चाचा आत्माराम हवन चाची प्रभावती लोल और चाची ललिता कुशल त्रियोले से सबका कटिया परिवार जिराखंड परिवार महाराणा प्रताप ने त्रियोलित को विश के हर को परिवार खातिर भी गीत चली कहाँ जाइबे चले एक साथ है गीत सुने

जब दोहरा कोई को तोहफा दे तो तोहफा ज़रूर स्वीकार करिए। वो नहीं बोलिया कि कादोवा छोटा बा या बड़ा बा, सता बा या महंगा बा, कहे कि जब कोई कोई की कादो देवेला तो अपन पूरा भावना के साथ, सोचों के साथ, इमोशनों के साथ कादो देवेला तो कोई के तोहफा के अपमान ना करिया। वो चाहे कोई भी हो, संगत्या हो, परिवार हो, जब तोहर जन्मदिन बा या कोनो खास मौका बा, कोई कादो दे तो बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ना कि बोलिए हैं हाँ कादो दे रहे हो वे, कोई के अपमान नहीं करे के हैं, कोई कादो दे तो निर्जन बा के रूप में भगवान तोहर सामने चल बा। हाँ कि नहीं, रात के 9:53 अगला

गीत 20 बरिस के छोकरा और एक गीतवा हमने चलाओ अब सा वाकवा के भाई आबू के नाम कैसे भाई आबू अच्छा हुआ ना गीतवार कहते तो घर वाली तोहर लेकर सब आबू परिवार के नाम लाखोजा के संगीता मिरन गीत तोहर खातिर राफिक मोहित भाई हवन तयाग से मेहजबीन पोटविस से इब्राहिम पोटविस से कमला जी न्यू मोहतावा से गीत आरोही खातिर रीता की ओर से गीत चरियो दुगो बहिन रेणुका और अमृता खातिर चित्रा और ज्ञान विश्राम हवन मोदालबे से बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत तुल के नाम चलावा थी सर 20 बरिस के छोकरा

20 बरिस के छोकरा शादी मांगेला, काम नहीं करेला, खाली शराब पिएला। तो 20 बरिस के छोकरा का दिखलक बा दुनिया में, भय खोजा शादी करे के। है जेंचनों के का बोलबा, तो शादी करे के एगो उम्र है लगो माचो, इतने हुई प्रौढ़ता है तोहर में, तब शादी करिय। अब तोहर काम धाम नहीं बा तो के तोहरा अपन बेची दे बोला था। हाँ कोई अपन बेची नहीं दे, एगो छोकरा के चाहे पढ़ा लिखा रह के, ओके छा अपन एगो काम करे के, घर रह के, तब न छोकरी में शादी करे के। अब 20 बरस

छोकरा जब शादी मांगा था तो कोई शादी अपन बेटी की नहीं दी। तू सोचेला कब कब कि दुनिया में सब कोई तोहर से प्यार कर रहा, थोड़ा खुशी रहेला। ना ऐसा बात नहीं बा, कोनो कोनो व्यक्ति तोहरा चाहेला, पर कोनो कोनो व्यक्ति तोहरा नफरत भी करेला। जरा संभल के रहिए जा, ढेर कोई तोहरा सकेला जालू भी करे, कहे कि तू काम करे तो तोहर परिवार अच्छी तरह से जाता। तो जोन व्यक्ति तोहरा जालू करेला, ये सब टॉक्सिक पीपल से हमेशा दूर रहिए जा। और बेशक अगला गीत नरम नरम प्रवेश सहाय रंभा राम तोहर गई जवन है कि तो हमने चलाओ थे शिवांश का तीर, फरजाना रघु सरिका, देवी जो ओतवर, रोशनी केदू, अमृता अवतर, तेज सुनातन, श्रीना, विदिशा, शर्मिला, सुनीता, दिनेश रौधे, शामिला, प्रिश्नी, इंद्राणी, निष्ठा प्रसन्न, पोल मॉविन और धनवंती कुंज, विश्वराज है गीत रजीब बुधा के नाम, व्यास बामा, मिस्टर बलराम, अनिष्टु, रीना, पुपू, मानिन पांड्या और है गीत चलाओ वी अनिश और इस सब संगतिया के नाम हेमा जावरी है गीत थोड़ो खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ दान लक्ष्मी प्रीति आशा सिबना अमृता अमृत गति रितु रितु रिया रोबर्ट है गीत थोड़ो खातिर अहमद सफीक नीता सुकुना माफ करिए और अहमद साफिक है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ ईश्वरी किस्तु देवीन बीन साधेवन ईश्वर सुबन हवन है गीत तोरो खातिर तोर बेटा पतो बेटी दामाद जोन भारवन विदेश में साथ में तोहर पत्नी युधिष से उधारी है गीत तोरो खातिर ग्रेस एंड लेस है गीत तोरो नाम और समीरा है गीत तोहर खातिर नरम नरम चलक साथ सुने गीतवा की

0: RM3 Radio.
1: कमर, कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट, जलसा, हंगामा।

0: गया।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशियस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: रात के 10:23 हुआ था तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े लगा रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़, रेडियो मनोरंजन 94.95 और 98.2 MHz पर हमें की प्रसारण चला था लाइव MBC मोका से। और बहुत बहुत धन्यवाद हमें के साथ देखा तेरा बेशक। और टेलीफोन करे के नंबर का जगोदेव 4028085 बोला सा कि अपन दिल की बात सब कोई के नए सकब बताई है, जगह पर भरोसा करब, जिके तू चाहेला, जिके तू मानेला, तो अकर से अपन दिल की बात बताइए, कहे कि अपन दिल की बात सब कोई से नहीं बोल जाला, जुन तुहर क्लोज बात और अपन बात ओकर से जरूर बोलिए अपन दिल की बात। और अगला गीत पैसा के पीछे न भाग हो चंदा देव जी बोधन गीत हमने चलावते इस कनाडा में दीपा तिवारी दुखित कहती है पति केविन नौकर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम अजय और पूनम चिंताराम होवन ऑस्ट्रेलिया में गीत तोहर खातिर इंदिरा चिंताराम मॉरिशस में माता जी गीत तोहर खातिर चंदन बेटा बेटा चंदन बहुप्रिया सलोनी और सब परिवार के नाम रंभा होवन स्विट्जरलैंड में और जानकी परिवार जो नौकर गुडलैंड में होंजा वो लोग खातिर बस के प्रीतम राज मिला के नाम अगला गीत उदय धनी राम थोर सब परिवार खातिर अश्विन बच्चन सब बच्चन परिवार के नाम और अभिलक जी हाँ अभिलक साहब हमने के साथ देव थन बहुत बहुत धन्यवाद गीत थोरो नाम और जितना कोई की नींद नहीं लगता गीत तो लोग खातिर और जितना कोई पैसा खुशिया दे कोई खुशिया अलग पति बने के करोड़पति बने के मिलियनेयर बने के तह गीत तो लोग के नाम पैसा के पीछे न भागो चंद्रदेव जी बोधन की आवाज़ में

चले जाए तो कहावत बा मुँह में राम बगल में छुरी, तो जन व्यक्ति ढेर चिकनावेला ओकर चिकनाए पर नहीं जाइए, कहा कि ओकर दिल में कौन सी बाबू नहीं सके राज जाने। तो ढेर कोई बाई से मुँह के सामने बोलन से ए ता तू कितना निमन आदमी हव, ऐसा अच्छा लगे से बात करके, पर तोर पीठ के पीछे वो छुरी भौंकता। तो ऐसा व्यक्ति से जहाँ दूर रह के जो मुँह में राम बगल में छोरी लेके घूमेला। रात के 10 बज का था हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद हमके साथ देख खातिर का जगह देवी जगह विद सैंक का जगह देवी जगह विद सैंक पर सब बजा टेलीफोन करे मिडलैंड के शिमला के साथ देवतवन। बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ देख खातिर और व्रतवन प्रताप जी प्रोग्राम एकदम बढ़िया बा। अगला गीत सुंदर परी, हाँ गिरीश रूपचंद गीत सुंदर परी चली और गीत सब नाचिश में जितना कोई काम करा था अभी होटल में मेटीरियल सर्विसेज में पुलिस स्टेशन में क्लिनिक में अस्पताल में जहाँ कहीं भी काम होता रात के समय गीत तो लोग के नाम सुंदर परी साथ में शास्त्री बनुमारी हवन और कर सब परिवार कर जितना पास से लोग अभी वन में जाता कहूँ या वन में कहूँ से आवत हो तो गीत लोग के नाम सुंदर परी चल एक साथ सुनेंगी जो

तुरेरे तुरेरे दिल को मेरा तुरेरे। रात के 10:50 हुआ था। तू सुन तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन भोजपुरी दर का प्रोग्राम रात के 11 बजे रे। और बोली जा सकी हमने के देश सुन बरिये जोरी बा बरिये सुंदर बा। और हमने के देश के देखे खातिर विदेश से पर्यटक लोग आवेला द सन सन एंड सी। जी हाँ ये सब देखे खातिर मॉरिशस आवेलन सर। और हमने के देश के मॉक ट्वेन बोले रहल कि मॉरिशस इज ए पैराडाइज। अच्छा के हमने के देश बरिये जोरी बा हमने के टापू हमने के समुद्र तट हमने के हरियाली हमने के बहुजातीय देश हमने जन भाषा बोला सा और हमने के जन भाषा की जोरी भाषा साथ में भोजपुरी और हर भाषा बोला सा हिंदी भोजपुरी तमिल तेलुगु मराठी सब कहते भाषा बोला सा। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इतना जोरी बाई देश के का बोल भैया जे भी अवेला बोला ई उपेला भी जोरी जो मोरी सेक्स खास जोरी सच के हमने के देश बड़ी जोरी बा। हमने के देश खाई नहीं हम जोरी हाँ कि नहीं। और हमने के जोरी देश जो है इसे ही प्रगति करती रही आगे बढ़ती रही। संजय हरिचंद के गीत हमें चाहते ललिता जी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। और गीत वीना के नाम वीना के उसको दुगो बेटा और सब परिवार के नाम है गीत चलाव से मिन मिनी के नाम मिन मिनी रहेलन वाकवा डॉक्टर अंजु गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ। और है गीत चली नलिनी के नाम हाय नलिनी है गीत तोहर खातिर तो सब परिवार के नाम। और है गीत उस सब संगतिया लोग खातिर जो कोशिश तो करता पर लाइन नाम ही रहता है गीत तोहरों नाम मोरिसवा बरिये जोरीबा।

संगचरोग रंभा राम तोहर के गावल गीत शहर से आवे एगो बुरवा हई गीतवा के संगी भोजपीटर का प्रोग्राम ये परी समाप्त होता रात के 9 बजे से अभी हम के साथ दिला जा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर साथ में रेडियो मॉरिशस की टिकटॉक पेज पर हमने की देख रहा बहुत बहुत धन्यवाद जितना कोई प्रोग्राम देख लग जितना कोई प्रोग्राम सुन लग सबको की धन्यवाद तो लोग एस एम एस और फोन कॉल्स का भी शुक्रिया रात के 11 बजे सुन बजा सुन रेपल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से कल फजीर के 6 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तरानी सुन बजा हमें की तरह की मुलाकात हो कल बुधवार के रात के इसी तरह रात के 9 से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दे और जी प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल नमस्ते।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं। सुनहरे पल कार्यक्रम एक बार फिर लौट चले हैं उसी युग में, उसी दुनिया में जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं, द 50s। खास तौर से इतने सारे गायक रहे हैं जैसे कि गीता दत्त, शमशाद बेगम, रफ़ी साहब, मुकेश, लता जी तो थी ही, आशा भोसले, पर ऐसे ऐसे और भी गायक गायिकाएं रही हैं। चले उनकी दुनिया में आज सैर कराते हैं।

1950s का दौर बॉलीवुड संगीत का सुनहरा युग माना जाता है। ये वो समय था जब गाने सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं थे, बल्कि दिल की गहराइयों को छू जाने वाले एहसास हुआ करते थे। इस युग ने हमें दिए कुछ ऐसे अमर गायक और गायिकाएं जिनके सुरों ने पूरी फिल्मी दुनिया का दौर बदल दिया। नाम आता है गीता दत्त। अपनी मधुर, सुलझी और जज्बात से भरी आवाज के लिए मशहूर, उनके गाने जैसे बाबूजी धीरे चलना या फिर मेरा नाम चिन चिन चू, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, इनमें उन्होंने अपनी आवाज से एक नया रंग भर दिया। उनकी आवाज में नाजुक सी उदासी और खुशबू भरी मस्ती दोनों थी।

शमशाद बेगम क्या आवाज थी। उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। उनकी आवाज में एक देसी मिट्टी की खुशबू थी। कभी यार कभी पार, सैया दिल में आना रे, या फिर लेके पहला पहला प्यार जैसे गाने उनके दम पे अमर हो गए। शमशाद बेगम ने फिल्मी संगीत को एक पहचान दी जिसमें आवाज की ताकत और साफ रंग दिखाई देता था।

1950s का दौर क्या दौर था। इतने अच्छे अच्छे गाने, संगीतकार तो जबरदस्त थे ही, लेकिन जो गायक भी रहे जैसे कि तलत महमूद, उनका जिक्र आए बिना 50s का संगीत अधूरा है। उनकी आवाज जैसे रेशम की तरह नर्म और उनका अंदाज पूरी शराफत और जज्बात से भरा हुआ था। जलते हैं जिसके लिए, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल, जैसे गीत उनके दिल के सुकून और दर्द दोनों का इजहार करते थे और उनके गाने दिल के लम्हों से बातें करते थे।

शामिल है आज के इस लिस्ट में एक प्यारी सी लेकिन दमदार आवाज सुरैया, जो एक कमाल की एक्ट्रेस भी थी। उन्होंने अपनी आवाज से भी लोगों के दिल जीते। उनके गीत जैसे तेरे नैनों ने चोरी किया और मन मोर हुआ मतवाला वगैरह वगैरह आज भी सुनने वालों के दिल में एक नशा जगाते हैं। सुरैया के सुर मीठे दर्द और कोमलता दोनों लेकर आते थे।

इनका जिक्र किए बिना तो हम रह भी नहीं पाते मुकेश जी, चाहे वो 60s हो, लेट 40s, 70s, एक दो 80s के गाने भी रहे। मुकेश लता के भाई जैसे रिश्ता ऑडियंस के दिल से बन गया था। उनकी आवाज एक आम इंसान के जज्बात की आवाज थी, साफ, मासूम और दर्द भरी। आवारा हूँ कभी कभी मेरे दिल में, या फिर कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जैसे गीत उन्हें अमर बनाते हैं। मुकेश के गीत इंसानियत के जज्बात से जुड़े हुए थे।

भाई की बात चल पड़ी है तो बहना की भी बात होती है। लता मंगेशकर भारत की सुर सम्रागी, उन्होंने 50s से लेकर आज तक अपनी आवाज से हर पीढ़ी को छू लिया। आएगा आने वाला, राजा की आएगी बारात और गाने तो अनगिनत है ही। उनके गाने सिर्फ सुर नहीं, एक भावना है। लता जी ने हर हीरोइन को अपनी आवाज दी और हर दिल को अपना बना लिया। जबकि किशोर कुमार एक अनोखा फनकार जिनके सुर में मजाक, मस्ती और दर्द सब कुछ था। जीवन के सफर में राही इना मीना डिका जैसे गाने देकर अपना अलग स्टाइल बना लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी जिंदगी थी, कभी हंसाती कभी रुलाती। किशोर कुमार एक पूरी दुनिया अपने सुरों में जीने वाले कलाकार थे।

और 1950s के सुनहरे दौर की बात हो और मोहम्मद रफी का जिक्र ना हो, वो तो कहानी अधूरी ही रह जाती है। रफी साहब वो नाम है जिन्होंने अपनी आवाज से जज्बात का हर रंग जिया। खुशी, दर्द, इश्क, जुनून, वफादारी और देशभक्ति सब कुछ उन सुरों में समाया था। उनकी आवाज में एक रूहानी नरमी और इंसानी गर्मी थी। जब वो गाते थे तो लगता था जैसे दिल से निकला हर लफ्ज आसमान तक पहुंच रहा हो। रफी साहब एक ऐसे कलाकार थे जो सिर्फ गाते ही नहीं थे बल्कि जीते थे अपने हर गाने।

श्रोताओं, ये सभी कलाकार सिर्फ सिंगर्स ही नहीं थे, वे अपने दौर के जज्बात के आईना थे। उन्होंने संगीत को रूह से जोड़ा, हर सुर में एक कहानी लिखी और हर लफ्ज में मोहब्बत का एहसास भर दिया। 1950s के इन गायकों और गायिकाओं ने बुनियाद रखी, उसी पर आज का बॉलीवुड संगीत खड़ा है। उनके सुरों की महक आज भी हर दिल में घूमती है, जैसे पुरानी तस्वीरों में बसी यादें जो कभी पुरानी नहीं होती। शुभ रात्रि, प्रणाम।

0: मैं कुछ भी कर लूं,
1: तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती,
0: और तुम
1: कुछ भी कर लो
0: मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: वाह।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो